0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी है। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र में राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। श्रीमती मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्मा कुमारी के विश्व नवीनीकरण के लिए

आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअली पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ब्रह्मा कुमारी नडियाड के विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। साथ ही डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी करेंगे। यात्रा के दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन न्याय विभाग आज गोवा में दिशा 2.0 योजना के अंतर्गत एक कार्यशाला का आयोजन करने जा रहा है। इस कार्यशाला का उद्देश्य प्रौद्योगिकी सक्षम कानूनी सेवाओं, कानूनी जागरूकता और निशुल्क कानूनी सहायता के माध्यम से जमीनी स्तर पर न्याय की पहुंच को मजबूत करना है। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में गोवा के राज्यपाल पुसापति अशोक गजपति राजू शामिल होंगे। उनके साथ विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा का शरदकालीन सत्र आज श्रीनगर में शुरू होगा। 10 दिवसीय यह सत्र 30 सितंबर तक चलेगा और इसमें 7 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान सरकार द्वारा जीएसटी, नगरपालिका प्रशासन और व्यापार सुगमता से संबंधित उपायों सहित कई विधायी प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने कल वाराणसी में झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीएस के प्रमुख ब्रिजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रिजेश गंझू करीब 2 दशक से फरार था। उसकी गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और एनआईए ने 30 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, आगजनी, आपराधिक साजिश और सरकारी कर्मचारियों पर हमले सहित 50 से अधिक मामले दर्ज थे। नागालैंड के फिल्म निर्माता तेजा रियो की निर्देशित फिल्म अंग ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्लेटफॉर्म प्राइज 2026 जीता है। अंग उन 12 फिल्मों में से एक थी जिन्हें इस साल के प्लेटफॉर्म प्रोग्राम के लिए चुना गया था, जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का एकमात्र प्रतिस्पर्धात्मक श्रेणी है। जापान के आइची नागोया में एशियाई खेलों के पहले दिन शूटिंग में 2 रजत पदक जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ी आज भी पदकों पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। एलावेनिल वलारेवन, विदर्शा विनोद और सोनम मस्कर ने महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ठीक 8 वाजता आपण ऐकू शकता दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होणाऱ्या हिंदी बातम्या, 8:15 इंग्रजी बातम्या आणि 8:30 पुणे केंद्रावरून प्रसारित होणाऱ्या मराठी बातम्या आपण ऐकू शकता.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी. राष्ट्रपति कल केवड़िया के एकता नगर में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध को लेकर अमेरिका फैसले की स्थिति में, निकट भविष्य में हो सकते हैं बड़े घटनाक्रम. सऊदी अरब में हौसी हमलों के बाद अमेरिका ने वहां अपने नागरिकों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया. मौसम विभाग का आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान. और भारतीय ग्रैंड मास्टर्स ने समरकंद शतरंज ओलंपियाड में हॉलैंड पर 3-1 से शानदार जीत दर्ज की. अब समाचार विस्तार से. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी. हमारी संवाददाता ने बताया है कि वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी.
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों या सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं. 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी. इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों, फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है. साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल है. फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, अभिनय, सिनेमाटोग्राफी, संगीत निर्देशन और कॉस्ट्यूम डिजाइन जैसे पुरस्कार शामिल हैं. नॉन फीचर फिल्म श्रेणी में डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्में, एनिमेशन, कला, संस्कृति पर फिल्में, नरेशन या वॉइस ओवर और स्क्रिप्ट शामिल हैं. सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन श्रेणी में सिनेमा पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ किताब और सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक को सम्मानित किया जाता है. दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए एक अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें जानी मानी फिल्म हस्तियों की एक विशेष समिति पुरस्कार पाने वाले का नाम तय करती है. समाचार कक्ष से जया भारती.
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी. वे ब्रह्मा कुमारीज के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी. इस अवसर पर राष्ट्रपति ब्रह्मा कुमारीज

0: नडियाद के विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी नवीनतम तकनीकों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉक्टर जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
1: संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का विषय है विश्वास बहाल करना, बदलाव का प्रबंधन करना। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने देशों की प्राथमिकताओं और रुख को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने विश्व नेताओं से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए और बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@airnews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में आज प्रस्तुत है पीएम किसान योजना पर एक रिपोर्ट।
3: मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ बड़ी संख्या में किसानों को मिल रहा है। योजना के तहत पात्र किसानों को हर वर्ष 6000 रुपए की सहायता 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है। यह राशि किसानों के लिए खाद, बीज और खेती से जुड़ी अन्य जरूरतों में उपयोगी साबित हो रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि सरकार लगातार किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है।
4: हमारी सरकार छोटे किसानों की जरूरतों, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी काम कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि से ऐसे करोड़ों छोटे किसानों की मदद हो रही है।
3: साल 2019 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 23 किस्तों में 4,47,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों को दी जा चुकी है। केंद्र सरकार ने अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से बढ़ाकर 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। छिंदवाड़ा जिले के किसान बसंत पटेल ने कहा कि सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना को 5 वर्ष के लिए बढ़ाया है, जिससे किसान बहुत खुश हैं।
5: किसान सम्मान निधि के 5 साल जो बढ़ाई गई है, किसानों को काफी खुशी है। ये योजना बहुत लाभदायक है।
3: योजना के तहत महिला किसानों को भी लाभ मिल रहा है। अब तक महिला किसानों को 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के बठिंडा जिले के तलवंडी साबो से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के 4th चरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। ये यात्रा पंजाब में 3 प्रमुख चुनौतियों, बढ़ती नशे की समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्तावित कल्याणी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य कोलकाता एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करना और दक्षिण बंगाल में हवाई संपर्क का विस्तार करना है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कल घोषणा की कि राज्य सरकार 28 सितंबर को क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के अंतर्गत 4 हवाई अड्डों के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा दिशा 2.0

0: योजना के तहत आज दक्षिण गोवा स्थित इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च के यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में कार्यशाला आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: कार्यशाला में प्रौद्योगिकी आधारित कानूनी सेवाओं, कानूनी जागरूकता और निशुल्क कानूनी सहायता के माध्यम से न्याय तक लोगों की पहुंच मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा। इस अवसर पर न्याय प्रबोध अवेकनिंग टू जस्टिस नो योर राइट्स इन 90 सेकंड्स अभियान के तहत तैयार की गई सर्वश्रेष्ठ रील्स प्रदर्शित की जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान न्याय प्रबोध स्लोगन प्रतियोगिता का भी आरंभ किया जाएगा। एक अन्य सत्र में न्याय बंधु निशुल्क कानूनी सेवा कार्यक्रम पर चर्चा होगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: सदियों के इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण से भगवान राम की नगरी अयोध्या में विकास के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। अयोध्या नगरी अब धार्मिक पर्यटन और विकास के वैश्विक पटल पर प्रमुखता से उभरी है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वैश्विक मंच पर अयोध्या नगरी धार्मिक पर्यटन और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और विकास कार्यों का पर्याय बनने लगी। इसी राम की नगरी पर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि अगर देश को 2047 तक विकसित बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जागृत करना होगा।
3: राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना हो।
2: अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप बड़ा परिवर्तन हुआ है।
4: अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है, वह चाहे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखिए, सामाजिक दृष्टिकोण से देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए। सामान्य रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की भी आय 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई।
2: पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही राम नगरी आधुनिक सुविधाओं से युक्त हुई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध को लेकर फैसले की स्थिति में है और निकट भविष्य में बहुत बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं। एक टीवी चैनल को साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने युद्ध को लेकर 3 विकल्पों पर चर्चा की। उन्होंने ईरान को पूरी तरह से खत्म करने या उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की बात कही या फिर समझौते का भी विकल्प दिया। दूसरी तरफ ईरान ने भी युद्ध समाप्त करने और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के सामने 7 शर्तें रखी हैं। इस बीच अमेरिका ने सऊदी अरब में सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। सऊदी अरब में कार्यरत अमेरिकी कर्मचारियों को ताइफ और यानबू शहरों की यात्रा के लिए विशेष अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम यमन के हौसी विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब की राजधानी रियाद सहित कई शहरों पर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल और हवाई हमलों के बाद उठाया गया है। हालांकि सऊदी सुरक्षा बलों के अनुसार इन हमलों को नाकाम कर दिया गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों के दौरान राजस्थान के कुछ और हिस्सों तथा पंजाब, सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने कल से ओडिशा में बारिश तेज होने का भी अनुमान व्यक्त किया है। 3 से 4 दिन में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 5वें दौर में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए हॉलैंड को 3-1 से हरा दिया है। हालांकि भारतीय महिला टीम को पोलैंड से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय पुरुष टीम लगातार 5 मैच जीतकर अंक तालिका में उज्बेकिस्तान और जर्मनी के साथ शीर्ष पर बनी हुई है। उधर जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों में भारत के पदकों का खाता खुल गया है। भारतीय निशानेबाजों ने कल 2 रजत पदक जीते। एलावेनिल वलारिवन, विदर्शा विनोद और सोनम मस्कर की तिकड़ी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता। भारतीय खिलाड़ी आज भी पदकों पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज।
5: धन्यवाद विशाल। सिर्फ केंद्र के दम पर विकसित नहीं हो सकता भारत, दैनिक जागरण की सुर्खी है। वित्त मंत्रियों की बैठक में केंद्र ने राज्यों से इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर खर्च बढ़ाने को कहा। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां बनाए राज्य। अस्पतालों में

0: मनमानी कीमत पर लगाम की तैयारी, केंद्र ने मांगी रिपोर्ट। राजस्थान पत्रिका के अनुसार निजी अस्पतालों में इलाज के दौरान इस्तेमाल होने वाले मेडिकल उपकरणों की खरीद कीमत और मरीजों से ली जाने वाली कीमत में भारी अंतर पर सरकार सख्त कीमतों की होगी समीक्षा। गर्भपात कराना या नहीं, अंतिम निर्णय महिला का। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ का अहम फैसला दैनिक भास्कर में है। न्यायालय ने दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग को 28 सप्ताह के गर्भ समाप्त करने की दी अनुमति। बहुप्रतीक्षित एनपीएस स्वास्थ्य योजना में 30 लाख रुपए तक का मिलेगा बीमा, हिंदुस्तान की खबर है। राष्ट्रीय पेंशन योजना में बड़ा बदलाव, मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। पेंशन फंड नियामक ने जारी किए दिशा निर्देश, अगले महीने लागू करने की तैयारी।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल केवड़िया के एकता नगर में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध को लेकर अमरीका फैसले की स्थिति में, निकट भविष्य में हो सकते हैं बड़े घटनाक्रम। सऊदी अरब में हौसी हमलों के बाद अमरीका ने वहां अपने नागरिकों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। President Draupadi Murmu to embark on a 3-day visit to Gujarat beginning today to preside over National Film Awards presentation ceremony at Ekta Nagar in Kevadia tomorrow. External Affairs Minister S. Jaishankar to lead Indian delegation at the 81st session of UN General Assembly in New York. US President Donald Trump in deciding mode on Iran war says very big things going to happen soon. US issues security alert for its citizens and staffers in Saudi Arabia amid Houthi attacks. IMD forecasts heavy rain in Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Puducherry, Karnataka and Madhya Maharashtra today. And Indian men score emphatic 3-1 victory over Holland at the Chess Olympiad in Samarkand. President Draupadi Murmu will be on a 3-day visit to Gujarat beginning today. She will preside over the presentation ceremony of the 72nd National Film Awards at Ekta Nagar, Kevadia tomorrow. We have more from a correspondent.
3: National Film Awards, recognizing achievements in Indian cinema for the year 2024, will be presented by the President tomorrow. Instituted in 1954, the National Film Awards are among the country's highest honors for excellence in cinema. Presented annually by the Ministry of Information and Broadcasting, the awards recognize creative and technical achievements across feature films, non-feature films and writing on cinema. The winners of the 72nd edition were announced on July 18, 2026 by the chairpersons of the three juries. The awards are divided into three main sections: feature films, non-feature films and best writing on cinema. Along with the Dada Saheb Phalke Award, the highest honor in Indian cinema. Esika Shaw from Akashvani News.
2: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will lead the Indian delegation for the high-level week at the 81st session of the United Nations General Assembly UNGA in New York, USA. The External Affairs Minister is scheduled to address the high-level session of the 81st UNGA on the 26th of this month. During the visit, Dr. Jaishankar will also attend various multilateral and bilateral meetings. We have more from a correspondent.
4: Dr. Jaishankar's visit to New York comes as world leaders prepare to gather at the UN headquarters for the annual high-level general debate, scheduled from September 22 to 28. The 81st session of the UN General Assembly is being held under the theme Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all. The General Assembly will bring together presidents, prime ministers and senior representatives from all 193 UN member states, who will outline their priorities and positions on major international issues. UN Secretary General Antonio Guterres has called on world leaders to strengthen international cooperation as they gather in New York for the General Assembly. In a video message, Guterres said,

0: Swali FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: गुड मॉर्निंग मुंबई, स्वागत है आप सभी का और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मिस्कली ओर्स। सुबह के 8:40 हो गए हैं दोस्तों और मस्त मुंबई कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूँ आपका अपना दोस्त आरजे रेहान।

0: मुकेश की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत गीत फिल्म मधुमति से आपने सुना। सलिलदा का संगीत और शैलेंद्र के लिखे बोल थे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हैं।
1: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
2: ब्याज दर सामान्य जमाकर्ता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
1: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है। शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।

सुबह के 8 बज कर 51 मिनट और मैं हूँ आपके साथ आपका आरजे दोस्त रेहान। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल, मैं उसके लिए ओर्स। दोस्तों आज है सोमवार 21 सितंबर 2026 और आज के दिन हम मुंबई के मस्ताने में बात करेंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की, दिन विशेष की और सोशल मीडिया अपडेट्स की। तो सबसे पहले बात आज ही के दिन घटित हुई कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की। आज के दिन अगर हम बात करें 21 सितंबर 1857, आज ही के दिन जो है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था और बाद में उन पर मुकदमा चलाया गया और उसके बाद रंगून उन्हें निर्वासित कर दिया जहां पर उन्होंने आखिरी सांस ली थी। तो आज ही के दिन इतिहास में ये बड़ी घटना घटित हुई थी।

फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। उदित नारायण की आवाज़ में इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। इस फिल्म का ये टाइटल ट्रैक मस्त मुंबई कार्यक्रम चल रहा है और बातें हो रही हैं कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की। आज ही के दिन दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के मशहूर पर्वतारोही अंगरीता शेरपा ये थे। और आज ही के दिन शेरपा ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। इन्होंने रिकॉर्ड 10 बार जो है माउंट एवरेस्ट के शिखर पर जो है चढ़ने वाले पर्वतारोही जो है के रूप में अपनी ख्याति हासिल की थी। जगदीश सिंह की आवाज़ में ये खूबसूरत गज़ल।

0: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
1: ब्याज दर सामान्य जमा करता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
0: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है। शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।

सुबह के 9:08 और मस्त मुंबई कार्यक्रम चल रहा है। आप इंजॉय कर रहे हैं आरजे रेहान के साथ सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज पर। मिस्कली यॉर्स, बात हो रही है आज के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की। और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की अगर हम बात करें तो आज ही के दिन 1883 को अमेरिका और ब्राज़ील के बीच टेलीग्राफ सेवा जो है शुरू हुई थी। और आज ही के दिन 1921 में

जर्मनी और ओपू में एक केमिकल प्लांट में जो है धमाका हुआ था, जिसमें 800 से ज़्यादा लोगों की दुखद मौत हो गई थी। और आज ही के दिन 1949 में चीन में कम्युनिस्ट नेताओं ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पार्टी की घोषणा की थी। और आज ही के दिन 1964 में माल्टा ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता हासिल की थी। और आज ही के दिन 1991 में आर्मेनिया को सोवियत संघ से भी स्वतंत्रता मिली थी। तो सुबह के 9:10 होने को हैं और आप इंजॉय कर रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का फ्रॉम ब्रेन वो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, म्यूजिकली योर्स।

कुमार सानू की खूबसूरत आवाज़ में ये गीत अभी आपने सुना फिल्म दिल क्या क्या कसूर से। नवाब अर्जुन ने इसे लिखा था और धुन तैयार की थी नदीम शर्मन ने। 9:23 हो गए हैं दोस्तों और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का फिल्म रेनबो चैनल। मैं हूं आपके साथ आपका आरजे दोस्त रेहान और कार्यक्रम चल रहा है मस्त मुंबई में, मुंबई के मस्ताने। बातें कर रहे हैं हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की जो आज ही के दिन घटित हुई। और अब हम बात करते हैं 21 सितंबर को यानी आज ही के दिन मनाए जाने वाले कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस की। तो सबसे पहले बात विश्व आभार दिवस की। हर साल 21 सितंबर को विश्व आभार दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें आभार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है और ये दिन व्यक्तिगत स्तर पर जो है कृतज्ञता की भावना को मजबूत करता है और एकता के साथ साथ सकारात्मकता को बढ़ावा देता है। आभार प्रकट करने के लिए मनुष्य के अंदर आत्मबल आता है और आभार की भावना तनाव कम करने, मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने और रिश्तों को मजबूत बनाने में सहायक होती है। इसकी शुरुआत सबसे पहले साल

1965 में हवाई यानी कि अमेरिका में हुई थी, और पहली बार आभार दिवस जो है वो 21 सितंबर 1966 को मनाया गया था।

0: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
1: ब्याज दर सामान्य जमा करता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
0: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है। शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: Hello and a very warm welcome to the live coverage of the Asian Games happening in Aichi, Nagoya, Japan 2026 that we are bringing to you live on Akashvani. I am Sakshi Mandwal and joining me here this morning is my dear friend and co-commentator for the day with me, Abhinav Punshi. And the best news to our dear listeners today as we start this day today is that India started their note on a winning momentum today in shooting, getting the silver in the men's 10-meter air rifle team event where India just finished behind China. Rudraksh Patil and Himanshu Dhillon led India's challenge while Parth Mane contributed as India secured the second place, thereby winning the silver while China took away the gold and South Korea claimed the bronze. This is also the best news that comes in way for all the Chinese shooters as China made a world record today with a score of 1899 while India was a close second with the score of 1890.1 in the men's 10-meter air rifle team event. For Rudraksh Balasaheb Patil, who was born in December 2003, on 16 December should I say, it is the moment that he was to be taking pride for. Coming from Thane, Maharashtra, specializing in the 10-meter air rifle event, one of India's finest rifle shooters, he rose to international prominence after winning the gold medal in the men's 10-meter air rifle at the 2022 ISSF World Championships in Cairo. And from there, everything was history for this young man. Himanshu Dhillon, another coveted star in the Indian shooting team event, is another name that we shall be remembering for forever. He enjoyed a breakthrough season in 2025, winning 2 gold medals and 1 bronze medal at the ISSF Junior World Cup in New Delhi and Seoul. He continued his impressive form in 2026. And the final nail in the coffin that brought us that coveted silver would be Parth Rakesh Mane, who announced himself on the world stage in 2024 by winning the gold medal in the 10-meter air rifle men's junior event at the ISSF Junior World Championship in Lima, Peru. And that is what we say, a perfect team, Abhinav, a perfect combination to start the day on a sweet note for India.
2: जी हाँ, बेहतरीन शुरुआत इंडिया के लिए एंड वो बेहतरीन शुरुआत एमएमए में भी हमें मिली है क्योंकि एक और मेडल आया है एमएमए से। ऑफिशियली वी हैव अ ब्रॉन्ज मेडल। सुचिका तरियाल फॉट रियली हार्ड टियो हुई हुन अगेंस्ट सिंगापुर एंड तक शी वाज इन द कॉन्टेस्ट बट अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट दैट बाउट 2-0। सुचिका वॉज हार्ट ब्रोकन, विजिबली अपसेट एंड इमोशनल, बट सुचिका बक अप, लॉन्ग वे टू गो एंड यू हैव गिवन इंडिया अ लॉट ऑफ प्राइड एंड something which really bodes well for the future. So an official bronze there for India after the outstanding silver in shooting. And also Sakshi, good news aa rahi hai table tennis se.
1: हाँ जी, गुड न्यूज आ रही है अभिनव, आपने अच्छा बोला टेबल टेनिस की दुनिया से, बिकॉज इंडिया कंप्लीटेड अ 3-0 विन ओवर पाकिस्तान इन द वुमेन्स टीम टेबल टेनिस टाई। जी हाँ, श्रीजा अकुला सील्ड द विक्ट्री विद अ स्ट्रेट गेम्स विन ओवर फातिमा खान 11-4, 11-4, 11-5 एंड thereby इंडिया फिनिश्ड एज ग्रुप एफ विनर्स एंड एडवांस टू द क्वार्टर फाइनल्स। एक बहुत जरूरी कॉन्ट्रीब्यूशन, एक ऐसा नाम यहाँ पर मैं लेना चाहूंगी दोस्तों जिसको हम बिल्कुल भी भूल नहीं सकते हैं क्योंकि उनका योगदान इस भारतीय जीत में बहुत अहम किरदार निभा गया। मैं बात कर रही हूं सिंड्रेला दास की, हु वाज ऑन हर एशियन गेम्स डेब्यू एंड शी बीट कलुसुम खान 11-6, 11-7, 11-5 इन अ कंफर्टेबल स्ट्रेट गेम्स विक्ट्री, thereby हेल्पिंग इंडिया गेन एन अर्ली एडवांटेज ऑफ अ 2-0 अर्लियर विन ओवर पाकिस्तान। एंड फाइनली भारत ने पाकिस्तान को 3-0 से हराकर यह जीत अपने नाम तय कर ही ली।

0: ऑफकोर्स जीत हमें मिली है सॉफ्ट टेनिस में भी. आध्या तिवारी एंड जे मीना, तीन मैचेस थे आज. मंगोलिया को हराया, कंबोडिया को हराया, बट साउथ कोरिया से हारने के बावजूद भी इंडिया हैज फिनिश्ड सेकंड इन द ग्रुप एंड दे हैव एडवांस्ड टू द राउंड ऑफ 16. सो सॉफ्ट टेनिस इज समथिंग व्हिच द इंडियंस कुड गेट अ मेडल इन द फ्यूचर.
1: जी, और अब थोड़ी सी यहाँ पर निराशाजनक खबर आपको दूंगी स्विमिंग की दुनिया से, बिकॉज धनुष सुरेश मिस्ड आउट ऑन द मेंस 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक फाइनल, फिनिशिंग 22nd ओवरऑल विद द टाइम ऑफ 1:03.46. दैट लीव्स श्रीहरि नटराज एज इंडियाज ओनली स्विमर इन द फाइनल टुडे विद द मेंस 50 मीटर बैक स्ट्रोक फाइनल स्टिल टू कम. एंड देर आर मेनी मोर, as we say, swimming events lined up for the day, but as we say, the day has just started and we are hoping this is going to turn out to be one of the best days in the early start of the Asian Games 2026. With that, for me right now, Abhinav aur mujhe Sakshi ko dijiye ijazat. Hum aapke liye live updates laate rahenge with the next update coming at 10:30 a.m. on Akashvani.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: 9:36 मिनट हो गए हैं दोस्तों, और अभी आपने एशियन गेम्स को लेकर अपडेट्स सुना, और छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कार्यक्रम मस्त मुंबई लेकर। मैं हाजिर हूं एक बार फिर से, और मस्त मुंबई में आज सोमवार है और आज का विषय है मुंबई के मस्ताने।

लकी अली और साथियों की आवाज़ों में कहो ना प्यार है। इस फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना, राजेश रोशन के संगीत से सजा हुआ और इब्राहिम अश्क ने इसे लिखा। हम बात कर रहे हैं आज ही के दिन जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस की, जो आज के दिन मनाया जाता है और इन्हीं में से एक है राष्ट्रीय चाय दिवस। यह दिन चाय प्रेमियों को एकजुट करता है और उन्हें अपनी पसंदीदा चाय के स्वादिष्ट प्यालों का आनंद लेने का अवसर प्रदान करता है। चाय एक मीठा भारतीय पेय है जिसका सेवन अब विश्व स्तर पर किया जाता है और चाय दिवस का विशेष महत्व है क्योंकि यह चाय की सबसे स्वादिष्ट किस्मों का जश्न मनाता है और इस पेय में विभिन्न एंटी ऑक्सीडेंट और पोषक तत्व मौजूद होते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें वैश्विक स्तर पर तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है 21 मई को मनाया जाता है, लेकिन अगर राष्ट्रीय चाय दिवस की बात करें तो वो 21 सितंबर को भारत में जो है मनाया जाता है।

0: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
1: ब्याज दर सामान्य जमाकर्ता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
0: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है। शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।
2: नौ बजकर 45 मिनट और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप मस्त मुंबई आरजे रेहान के साथ, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो चैनल पर 107.1 MHz। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडिया वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। हम बात कर रहे हैं आज जो मनाया जाता है यानी 21 सितंबर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाए जाते हैं, और आज ही के दिन 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस भी मनाया जाता है। यह दिन विश्व भर में शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे पहली बार 1981 में स्थापित किया था और इसका उद्देश्य समाजों के बीच संघर्षों को रोकना और शांति के संदेश का प्रचार करना है। और इसके अलावा आज ही के दिन यानी 21 सितंबर को विश्व अल जमाइर दिवस भी मनाया जाता है। यह दिन डिमेंशिया यानी कि भूलने की बीमारी और अल जमाई मर के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है, ताकि इस बीमारी से पीड़ित लोगों की मदद और देखभाल के प्रति समझ जो है वो बढ़ाई जा सके।

केके की खूबसूरत आवाज में ये गैंगस्टर फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मस्त मुंबई आरजे रेहान के साथ। आज श्री नारायण गुरु समाधि दिवस विशेषकर केरल और दक्षिण भारत में समाज सुधारक और आध्यात्मिक गुरु श्री नारायण गुरु की पुण्यतिथि के रूप में समाधि दिवस के रूप में मनाई जाती है 21 सितंबर को। इसके अलावा अगर सोशल मीडिया अपडेट्स की बात करें तो सितंबर 2026 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई बड़े अपडेट्स और फीचर लॉन्च किए गए हैं। पहला, मेटा ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के लिए मेटा वन सब्सक्रिप्शन सर्विस जो है लॉन्च की है, और दूसरा, व्यक्तिगत क्रिएटर और बिजनेस मंडल जो है प्लान्स में AI टूल्स का दायरा जो है बढ़ाया गया है, और तीसरा, इंस्टाग्राम पर रील के लिए फर्स्ट ड्राफ्ट टूल आया है जो AI की मदद से वीडियो ट्रिम और एडिट भी कर सकता है। तो आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल, मोहम्मद अजीज और साथियों की आवाजों में सौगंध फिल्म का ये गीत।

तो दोस्तों, मस्त मुंबई के कार्यक्रम में आज बस इतना ही। सुबह के 10 बजने वाले हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मिस्क लियोर्स। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रमुख समाचार।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: सुबह के 10 बज चुके हैं, आगे बढ़ें इससे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नज़र डाल लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सेमिनार के समापन सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि हाल ही के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। मुंबई के काला चौकी इलाके में गणेशोत्सव मंडल के पास कल बिजली का करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने मामले में स्टॉल चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। नागा फिल्मकार तेजा रियो के निर्देशन में बनी फिल्म अंग ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल TIFF में प्लेटफॉर्म प्राइज 2026 जीतकर इतिहास रच दिया है। पुरस्कार की घोषणा करते हुए जूरी अध्यक्ष पाब्लो ट्रेपेरो ने कहा कि फिल्म अंग की ताजा दृष्टि, सशक्त फिल्म निर्माण और दुनिया के प्रभावशाली चित्रण की उन्होंने जमकर सराहना की। जापान के नागोया में जारी एशियाई खेलों में भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतकर शूटिंग में अपना तीसरा पदक हासिल किया है। भारतीय निशानेबाज रुद्राक्ष पाटिल ने और हिमांशु ढिल्लो ने व्यक्तिगत फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। ये थे अब तक के प्रमुख समाचार।

0: Aswani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: 10:02 और कार्यक्रम जो है लेकर मैं हाजिर हूँ जिसका नाम है नमस्ते भारत। और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल 107.1 MHz पर म्यूजिकली योर्स। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत ट्रैक के साथ।

10:14 और कार्यक्रम नमस्ते भारत लेकर मैं हाजिर हूँ। और आज नमस्ते भारत में है प्रीत जहाँ की रीत जो है सेगमेंट है, और इस सेगमेंट में आज हम सेलिब्रेट करेंगे करीना कपूर के जन्मदिन को और कुछ उन्हीं के मशहूर नगमे आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम में। 21 सितंबर को आज है करीना कपूर का जन्मदिन और 46वां बर्थडे है आज करीना कपूर का, एक ऐसी अभिनेत्री का जन्मदिन जिसके नाम के साथ कपूर सरनेम जरूर जुड़ा था लेकिन अपनी पहचान उन्होंने खुद बनाई। और आज के कार्यक्रम के इस मोड़ पर हम करीना कपूर की फिल्मी यात्रा से अपने श्रोताओं को रूबरू कराएंगे, एक ऐसी लड़की जो फिल्मों में आई, स्टार बनी और फिर अपने ही स्टारडम से बाहर निकली और धीरे धीरे एक अभिनेत्री के रूप में खुद को दोबारा खोजा। और ये साल था 2000 जब कपूर खानदान की विरासत

एक बिल्कुल नई लड़की ने कैमरा फेस किया और उस फिल्म का नाम था रिफ्यूजी। हम इस फिल्म की बात करेंगे और करीना कपूर से जुड़े और कई जो अनसुने किस्से हैं उसकी भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।

0: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
1: ब्याज दर सामान्य जमाकर्ता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
0: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है। शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।
2: सुबह के 10:20 हो गए हैं दोस्तों, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का फिल्म रेनबो चैनल। मैं हूं आपके साथ आपका आरजे दोस्त रेहान। हम बात कर रहे थे फिल्म रिफ्यूजी की। रिफ्यूजी करीना कपूर के लिए सिर्फ एक डेब्यू फिल्म नहीं थी, ये उस परिवार के नाम से बाहर निकलकर अपना नाम बनाने की पहली कोशिश थी, क्योंकि मशहूर परिवार से आना आपको दरवाज़ा ज़रूर खोल दे सकता है, लेकिन उस कमरे में अपनी जगह आपको खुद बनानी पड़ती है। और करीना ने कोशिश शुरू कर दी थी फिल्म रिफ्यूजी से। ये गीत सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म रिफ्यूजी से।

करीना की पहली फिल्म रिफ्यूजी उतनी बड़ी कामयाब फिल्म तो नहीं साबित हुई, लेकिन करीना ने अपने अभिनय की झलक जरूर इस फिल्म से दिखा दी थी।

दर्शकों को, और पहली ही झलक करीना की दर्शकों को भा गई थी। उसके बाद करीना का एक ऐसा किरदार आया जिसने करीना को सिर्फ एक्ट्रेस नहीं बल्कि पॉप कल्चर फिनोमेनॉन बना दिया। 2001 में एक ऐसी ही फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था कभी खुशी कभी गम, और इसके बाद वो पू बनकर छा गई। उनका कॉन्फिडेंस, उनका फैशन, उनका एटीट्यूड, उनका वो सब कुछ बेफिक्र अंदाज उस वक्त की यंग जनरेशन ने उन्हें तुरंत अपना बना लिया। सुनिए ये गीत।

0: Hello and a very warm welcome to the 10:30 AM update of the ongoing live coverage of the Asian Games happening in Aichi, Nagoya, Japan 2026. और दोस्तों आज की खुशखबरी बस बढ़ती ही चली जा रही है क्योंकि शूटिंग की दुनिया से अभी तक कुल मिलाकर 4 सिल्वर मेडल्स और 1 ब्रॉन्ज मेडल आ चुका है. और अगर आज की खास तौर से बात करें तो आज शूटिंग की दुनिया में हमने देखा किस तरह से 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज आया. एंड द बेस्ट न्यूज दैट केम वॉज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ इंडिविजुअल शूटिंग के अंदर, जिसमें 10 मीटर एयर राइफल में हमने देखा कि हिमांशु ढिल्लो ने ही फिनिश्ड विद अ स्कोर ऑफ 252.4 फिनिशिंग सेकेंड. वो हमारे लिए लेकर आए सिल्वर मेडल. और वहीं रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल बॉट अस द ब्रॉन्ज विद अ स्कोर लाइन ऑफ 230.9. चाइना के शेंग लिहाओ वन द गोल्ड मेडल विद 254.2. That was one of the best news over here with us today, this morning, Abhinav, indeed.
1: Of course, excellent news from the world of shooting, Sakshi, because shooting mein hame, team event mein bhi, 10 meters air rifle team event mein bhi, we got silver. Rudraksh Patil, Himanshu Dhillon and Parth Mane. Yaad dilaye, Himanshu Dhillon apna Asian Games ka debut kar rahe hain. Toh shandaar shuruaat hui hai unki aur shandaar shuruaat hui hai India ki shooting se.
0: जी. और अभिनव, थोड़ा आप हमारे आज श्रोताओं को स्कीट के बारे में बताना चाहेंगे, जो स्कीट के भी शूटिंग के मेंस चल रहे हैं, एक खुशखबरी वहां से भी थोड़ी दी जाए.
1: जी हाँ, शूटिंग के स्कीट मेंस टीम फाइनल में इंडिया के भवतेश सिंगल, एजेएस नरुका और मेहराज अहमद खान स्कीट के फाइनल में है. अभी 5th पोजिशन में करंट अपडेट है इंडिया का स्कीट में, तो होपफुली दे इम्प्रूव.
0: Yeah, a long way still up ahead for our Indian shooters. लेकिन shooting की दुनिया से अब दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं. And let's also look at what happened in Regu today. And not much good news over there because Japan ने वहाँ पर भारत को 3rd और final group B match में team Regu event के अंदर 2-1 से हरा दिया. Yes, the result meant that Japan won the overall tie 2-1 with India having taken the opening match earlier in the contest. So, शुरुआत में जीत एक राउंड के अंदर हमें हासिल तो हुई थी, लेकिन जापान अंत में बाजी मार गया भारतीयों के हाथ से.
1: जी हाँ, रेगू में तो इंडिया की अच्छी आज शुरुआत नहीं हुई है, मगर बॉक्सिंग में शानदार शुरुआत. मेन 70 kg राउंड ऑफ 32 में सुमित कुंडू ने अपना मैच जीता थाईलैंड के बैनजोंग सिनसिन के खिलाफ 5-0. जजेस ने परफेक्ट स्कोर दिया इनको ऑफ 10 इन ऑल द राउंड. सो अ सुपर्ब स्टार्ट फॉर सुमित देयर. एंड साक्षी, सुपर्ब स्टार्ट फॉर द इंडियन वुमेन इन देयर हॉकी मैच.
0: इनडीड, एंड व्हाट अ स्टार्ट, प्रीटी मच ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस कि आज भारत एक बहुत ओवरवेलमिंग performance and strong commanding performance dikhayega, and that is how they are turning out to be against Indonesia. Barrage of goals Indian women's team ki taraf se have taken India to a 9-0 lead in the first half. And uske baad agar hum baat kare to first half ke baad bhi jab khiladi wapas aaye hain to bhartiya khiladiyon ne fir se apna dabdaba dosto dikhana shuru kar diya hai. 2-0 ki lead le chuke against Indonesia. Rutuja Pisla, Lare Semi, Sakshi Rana goal scorers for the day. A very, very confident, commanding start by our Indian women hockey team.
1: जी हाँ, हाफ टाइम पे 6-0 स्कोर है इंडिया और इंडोनेशिया का हॉकी मैच में. मगर कबड्डी की बात करी जाए तो आज इंडिया का मैच जापान के साथ चल रहा है ग्रुप ए में. जापान की शुरुआत अच्छी थी बट इंडिया इज इन टोटल कंट्रोल राइट नाउ. 42-17 से इंडिया लीड कर रहा है आज जापान के अगेंस्ट. सो ट्रिमेंडस स्टार्ट फॉर इंडिया. एंड ऑफकोर्स हम मेडल्स की बात करें तो हमारे पास एक और मेडल आज गारंटीड हुआ है, वो है ब्रॉन्ज मेडल. एंड साक्षी, ट्रिमेंडस एफर्ट देयर बाय सुचिका तरियाल.
0: यस इंडीड, बट ऑल्सो अगर बात करें तो आज हम सभी ने देखा किस तरह से उनकी आंखें अभिनव नम हो गई थी लास्ट में, बिकॉज शी वॉज होपिंग टू नॉट गेट द ब्रॉन्ज बट rather go for the silver for India. But we had to settle in with the bronze. A very heartfelt effort by the young girl over there for Indians. Definitely unke liye aage unka bhavishy bhartiya khel aur bhartiya duniya mein bahut zyada bright hai. Here's to her making Indians proud, because at the end of the day a medal is a medal, and for that heartfelt win that she bought for India today, here's us applauding her efforts. With that, I think Abhinav, abhi waqt ho gaya apne shrotaon se ijazat bhi lene ka.
1: Ji haan, and please tune in back with us at 11:30 AM. Aapka next update aayega Akashwani pe. India's right now 10th on the medals table. 6 medals have already come. Hoping for much more. Stay tuned to Akashwani.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.

0: आकाशवाणी FM Rainbow 107.1 MHz Musically Yours।
1: 10:35 हो गए दोस्तों, और अभी आपने एशियन गेम्स 2026 को लेकर अपडेट सुना। और फिर से हाजिर हूँ कार्यक्रम नमस्ते भारत लेकर, मैं आपका आरजे दोस्त रेहान। इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल 107.1 MHz पर म्यूजिकल योर्स। और कार्यक्रम के इस सेगमेंट में जो है हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर की। बॉलीवुड में एक समय था जब एक्ट्रेस से ग्लैमरस दिखने की उम्मीद की जाती थी, लेकिन करीना ने एक पॉइंट पर तय किया कि वो सिर्फ खूबसूरत दिखना काफ़ी नहीं है उनके लिए। और फिर उनकी एक फिल्म आई जिसका नाम था चमेली, एक ऐसा किरदार जो उनकी पिछली इमेज से बिल्कुल अलग था। ना डिजाइनर क्लॉथ्स, ना ग्लैमरस हीरोइन वाली दुनिया, बल्कि एक ऐसी महिला की जिंदगी पर यह कहानी थी जिसकी जिंदगी में मजबूरियां, अकेलापन और अपनी तरह से जिंदगी जीने की जद्दोजहद। और चमेली ने करीना कपूर को एक नया रास्ता दिया, और शायद पहली बार ऑडियंस ने महसूस किया कि इस एक्ट्रेस में सिर्फ स्टार वाली चमक नहीं बल्कि अभिनय वाली आग भी है।

चमेली ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर उम्दा प्रदर्शन किया बल्कि अभिनय की दृष्टि से बात करें तो करीना कपूर को कई पुरस्कारों से इस फिल्म में बेहतरीन एक्टिंग के लिए नवाजा गया। और उसके बाद करीना कपूर की एक और फिल्म आई जिसका नाम था ओमकारा। करीना का एक और ट्रांसफॉर्मेशन डॉली, एक ऐसी लड़की जिसे देखकर आपको पू की बिल्कुल याद नहीं आती, और शायद यही किसी एक्ट्रेस की असली जीत है जब ऑडियंस आपके पिछले किरदार को भूलकर आपके नए किरदार पर विश्वास करने लगे। ओमकारा के दौर में करीना के करियर को लेकर एक बदलाव साफ दिखाई देने लगा था कि अब उनकी चर्चा सिर्फ ग्लैमर या फिर स्टार पावर के लिए नहीं बल्कि परफॉर्मेंस के लिए भी होने लगी है। और यही वो स्टेज था जब एक स्टार धीरे धीरे एक्ट्रेस बन रही थी। ओमकारा का ये गीत

2007 में आई फिल्म ने उनका जो रंग था, करीना कपूर जो फिल्मों में दिखा चुकी थीं, जो अपने किरदार कर चुकी थीं, उनके करियर के लिए अब बहुत ही जो है नया मोड़ साबित होने वाला था ये साल 2007 का, जब फिल्म आई जब वी मेट। एक ऐसी लड़की जो जिंदगी से प्यार करती है, जो बोलती बहुत है, सोचती कम है और अपने सपनों को लेकर बिल्कुल शर्मिंदा नहीं है। गीत परफेक्ट नहीं थी, वो इम्पल्सिव थी, कभी इमेच्योर थी, कभी इमोशनल थी, लेकिन उसमें एक चीज़ बहुत खूबसूरत थी, वो खुद को लेकर जो है अपोलोजेटिक थी, नहीं थी, और शायद यही वजह है कि गीत आज भी लोगों के दिल में रहती है। हम सब के अंदर कहीं ना कहीं एक गीत होती है जो कहती है लोग क्या कहेंगे, इससे ज़्यादा ज़रूरी है मैं क्या

चाहती हूँ, और अब वही गाना जिसमें पहाड़ है, बारिश है और प्यार की वो आज़ादी, जिसे सुनते ही गीत आंखों के सामने आ जाती है।

0: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
1: ब्याज दर सामान्य जमा करता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
0: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है, शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।
2: 10:50 और चंद मिनट और हैं दोस्तों नमस्ते भारत कार्यक्रम के, और चलते चलते कुछ ऐसे गीत आपको छोड़ जाते हैं जो बेहतरीन गीतों में शुमार होते हैं करीना कपूर खान के लिए। और एक ऐसी फिल्म इसी बीच आई थी इंडियन सिनेमा में जिसने एक ऐसी छाप छोड़ी, फिल्म का नाम था 3 इडियट्स। करीना कपूर इस फिल्म में बनी थी पिया और फिल्म में उनके साथ थे आमिर खान, लेकिन सिर्फ पिया का किरदार एक रोमांटिक इंटरेस्ट बनकर नहीं उभर कर रह गया, वो कहानी की इमोशनल दुनिया का हिस्सा बनी और फिर एक बेहद ही प्यारा गाना जो आज भी सुनते ही चेहरे पर मुस्कान ले आता है। करीना की जर्नी में ऐसे मोमेंट बहुत हैं जहां उन्होंने साबित किया है कि एक्ट्रेस होने का मतलब हर सीन में भारी डायलॉग बोलना नहीं, कभी कभी एक मुस्कान भी पूरी कहानी कह देता है। हैप्पी बर्थडे करीना कपूर, एक बार फिर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद है हमारे श्रोताओं ने इन गीतों को, इस प्रोग्राम को ज़रूर इन्जॉय किया होगा। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं चंद खूबसूरत गीतों के साथ, आप यूं ही सुनते रहिए आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल 107.1 MHz पर मिस्किलियर्स। आपसे फिर किसी दिन मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार।

एक मेगाहर्ट्ज पर एफएम रेनबो और समय हो चुका है अब तक के कुछ मुख्य समाचारों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। मुंबई में कल गणेश उत्सव के 7वें दिन रात 9 बजे तक 6436 गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। बृहन मुंबई नगर

बना ली है। स्वर्ण पदक के लिए भारतीय टीम का मुकाबला कल श्रीलंका से होगा। प्रादेशिक समाचार अनुभाग द्वारा प्रसारित समाचार का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम के लिए बने रहिएगा इसी फ्रीक्वेंसी पर।

गुड मॉर्निंग मंडे की इस मॉर्निंग आपको हेलो हाय कहने पहुंच गई है शर्मीन। और अगर आप शर्मीन संग शामिल हो चुके हैं तो हाजिरी लगाइएगा 8657661071। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। 107.1 एफएम रेनबो ट्यून इन किया है आपने। टशन इस फिल्म से सुना आपने चलिया। और करीना कपूर का आज बर्थडे है भाई, हैप्पी बर्थडे विश करते हुए उन्हें हमने ये गाना प्ले किया हमारे सारे लिसनर्स की तरफ से, एफएम रेनबो की टीम की तरफ से। करीना कपूर खान को हम हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। सुनिधि चौहान, पीयूष मिश्रा गा रहे थे इस गाने को, अन्विता दत्त ने इसे लिखा, विशालन शेखर की कॉम्पोजिशन थी। और इसी गाने के साथ शुरुआत हो गई है ब्रेक फ्री की, आपके मंडे ब्लूज को रेनबो कलर में जो है वो रंगने की आज हम कोशिश करेंगे। सो ब्रेक फ्री में क्या बात होगी, कभी कभी ना आपने किसी ड्रीम को इतनी शिद्दत से चेस किया हुआ होता है कि आपको लगेगा कि ये बस मिल जाए ना फिर लाइफ एकदम सॉर्ट है ना। लेकिन फिर वक्त गुजरता है, आप बदलते हैं, आपकी जो प्रायोरिटीज हैं वो बदलती हैं, और एक दिन वही ड्रीम आपको अपना सा लगता ही नहीं है। तो सवाल आज का यही है कि क्या हम अपने ड्रीम्स को आउटग्रो कर सकते हैं? क्या किसी पुराने ड्रीम को छोड़ देना फेलियर है? या फिर ये एक्सपेक्ट करना कि मैं अब वो इंसान नहीं रहा हूँ, है ना, और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अपने ड्रीम्स को ढालना, और कभी कभार ये तय कर लेना कि चलो ये मेरे लिए थी नहीं ड्रीम, अब आगे बढ़ जाते हैं। आज ब्रेक फ्री में इसी थॉट को थोड़ा अनपैक करेंगे हम, है ना, क्योंकि कभी कभी मूविंग ऑन फ्रॉम अ ड्रीम भी मूविंग फॉरवर्ड हो सकता है, जैसे कि हम इस प्रोग्राम में भी आगे बढ़ते हैं। और एक और करीना की फिल्म से ही, करीना पर पिक्चराइज्ड ये गाना आपको सुनाते हैं। अनुराधा श्रीराम गाएंगी, समीर ने इसे लिखा, अनु मलिक की कॉम्पोजिशन। मुझे कुछ कहना है इस फिल्म से आएगा ये गाना। बने रहिएगा इसी फ्रीक्वेंसी 107.1 एफएम रेनबो पर, बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स।

0: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
1: ब्याज दर सामान्य जमा करता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
0: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है। शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।
2: सबके अलग है अंदाज, कोई मजाकिया
3: तो किसी की मदहोश कर देने वाली आवाज,
4: कोई लुभाए शेरो शायरी से
3: तो सुकून से भरी किसी की आवाज,
5: जो मेरी मंजिलों को जाती है, तेरे नाम की कोई सड़क है।
6: अलग अलग अदाएं हैं सबकी खास, यही तो है FM रेनबो का राज।
7: 107.1 म्यूजिकली योर्स, दिल से दिल तक।

मुझसे दोस्ती करोगी, इस फिल्म से सुना आपने ये गाना। लता दीदी सुनो निगम की आवाजें, आनंद बख्शी साहब ने इसे लिखा, राहुल शर्मा की कॉम्पोजिशन थी। आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप। और ब्रेक फ्री इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि कैसे जो है हम अक्सर ऐसे होता है कि हम ड्रीम्स को आउटग्रो कर जाते हैं, और इसमें कोई बुरी बात नहीं होती है, ये कोई फेलियर नहीं है कि आपने ख्वाब देखा था कुछ करने का, कुछ हासिल करने का, और वो आपसे नहीं हो पाया। उसी से, इस थिंकिंग से कि बस हम हार ही गए हैं, एक ड्रीम पूरा नहीं हुआ, तो इस थिंकिंग से ब्रेक फ्री होने की बात कर रहे हैं हम। हम अक्सर बचपन से सुनते आए हैं नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, है ना। और ऑनेस्टली मोटिवेशन के लिए ये लाइन काफ़ी अच्छी है, लेकिन लाइफ में एक और पॉसिबिलिटी भी होती है, ड्रीम को गिव अप करना नहीं, ड्रीम को अपडेट करना, है ना। इसको इस तरीके से लेते हैं हम, जो चीज़ 18 साल की उम्र में आपकी बिगेस्ट एम्बिशन थी, ज़रूरी नहीं है कि 28 या 38 में भी आप वही ड्रीम लेकर चल रहे हो, है ना। और इसमें कुछ गलत बात भी नहीं है, कभी ड्रीम का जो डेस्टिनेशन है वो बदल जाता है, कभी उस तक पहुँचने का रीज़न चेंज हो जाता है। कुछ तो चाहिए होता है ना रीज़न अपना ड्रीम अचीव करने के लिए। तो अक्सर ऐसे होता है कि आपको लग रहा होता है कि नहीं, मैं कुछ कर नहीं पाया, ड्रीम पूरा नहीं कर पाया, लेकिन कभी कभार जो ऐसे होता है कि वो ड्रीम जो है वो वक्त के साथ साथ कुछ और शक्ल ले लेती है, और उसको अचीव करने का आपका रीज़न भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके सपने जो हैं वो हो गए हैं फना। युवा इस फिल्म से आएगा ये गाना, AR रहमान, सुनीता तन्वी मिलके गाएंगे इसे, महबूब ने लिखा, AR रहमान की कॉम्पोजिशन। बने रहिएगा इसी फ्रीक्वेंसी 107.1 FM रेनबो पर, बिकॉज़ वी आर म्यूजिकली यार्स।

0: देखो, अगर आपने अपने ड्रीम को आउटग्रो कर लिया है, उसको हासिल नहीं कर पाए और इस चीज़ पर किसी को अगर एतराज है तो उसको होने दो, उसको जो तसव्वुर करना है उसको करने दो। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप। ब्रेक फ्री ये प्रोग्राम चल रहा है। एतराज फिल्म से सुना आपने ये गाना, वो तसव्वुर का आलम, उदित नारायण, अलका याग्निक की आवाज़ें थी, समीर ने इसे लिखा, हिमेश रेशमिया की कॉम्पोजिशन थी। और आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि 11:30 बजे आप एशियन गेम्स जो हो रहे हैं उसकी 5 मिनट की अपडेट्स जाएंगी, वो सुन पाएंगे, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम ब्रेक फ्री कंटिन्यू होगा। सो जहां हम बात कर रहे हैं ब्रेक फ्री में आउट ग्रोइंग अ ड्रीम का, मतलब ये भी नहीं है कि आपने उस ड्रीम को सीरियसली लिया ही नहीं कभी, है ना। आपने शायद पूरी ईमानदारी से उसके लिए मेहनत की हो, लेकिन रास्ते में आपको खुद के बारे में कुछ और समझ आ गया हो, मे बी आपको सक्सेस से ज़्यादा सुकून इंपॉर्टेंट लगने लगा हो, मे बी आपको अपलॉस से ज़्यादा मीनिंग चाहिए होगी, या शायद जिस लाइफ को आप कभी ड्रीम लाइफ समझ थे अब वो आपको अपनी लाइफ जैसी लगती ही नहीं है, ऐसे किसी और की लाइफ मांग रहे थे आप, ऐसे लग रहा है आपको। और चेंज जो है वो होता है, होना चाहिए, और ये जो है ये अलाउड होता है, है ना। लोग आपको भले ही कहें कि ये क्या तुम एक ड्रीम पर टिक कर नहीं रहते हो, कभी ये कभी वो, लेकिन ये चेंज नेचुरल है, इसको अलाउड है, आप ऐसे समझ के चलिए। एक इंटरेस्टिंग सवाल ये भी है लेकिन कि कैसे पता चलेगा कि हमने ड्रीम आउटग्रो कर लिया है या बस टेम्पररी फ्रस्ट्रेशन की वजह से उसे छोड़ रहे हैं हम, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, 11:30 बजे एशियन गेम्स की अपडेट्स आएंगी, 5 मिनट, और उसके बाद जो है ब्रेक फ्री प्रोग्राम, ये सारे गाने, करीना कपूर बर्थडे स्पेशल हम प्ले कर रहे हैं, सो वो सब कंटिन्यू रहेगा। अभी के लिए एक छोटा सा स्पॉट आएगा और उसके बाद अपडेट्स, बने रहें इसी फ्रिक्वेंसी 107.1 FM रेनबो पर, बिकॉज आप तो जानते ही हैं वी आर म्यूजिकली योर्स। आकाशवाणी FM रेनबो म्यूजिकली योर्स।
1: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
2: ब्याज दर सामान्य जमाकर्ता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
1: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है। शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: वेलकम टू द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम द एशियन गेम्स फ्रॉम आईची नगोया। और खुशखबरी है भारत के लिए, भारत के कबड्डी टीम ने धमाकेदार शुरुआत करी है। जापान वर्सेस इंडिया मैच में 49-24 वाज द फाइनल स्कोर। ऑलराउंड परफॉर्मेंस फ्रॉम द इंडियन टीम, सो एन एक्सलेंट स्टार्ट। आपके साथ हैं अभिनव पुंशी एंड मेरे साथ हैं साक्षी मानवाल। एंड साक्षी, ऑल्सो गुड न्यूज कमिंग इन फ्रॉम द हॉकी अरीना।
2: इंडीड अभिनव, खुशखबरी का सिलसिला आज जारी रहेगा और रहना चाहिए, बिकॉज भारत ने आज इंडोनेशिया को हरा कर इन अ वेरी कमांडिंग एंड कॉन्फिडेंट मैनर 70

0: वन सेव विक्ट्री को अपने नाम कर लिया इन द वुमेन्स हॉकी मैच. लेट्स ऑल्सो नॉट फॉरगेट दैट इंडिया हैड ऑल्सो डिफीटेड उज़्बेकिस्तान रिसेंटली इन द ऑन गोइंग एशियन गेम्स एंड दैट वॉज 19-0. वन इम्पॉर्टेंट नेम दैट स्टूड आउट इन द लास्ट गेम एंड ऑल्सो टूडे वॉज दीपिका सहरावत. लेट्स रिमाइंड आवर लिसनर्स ओवर हियर दैट दीपिका सहरावत हैड स्कोर्ड अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग 8 गोल्स सेटिंग अ हाई फॉर इंडिविजुअल गोल्स इन द वुमेन्स हॉकी मैच एट द एशियन गेम्स लास्ट टाइम इन द मैच अगेंस्ट Uzbekistan, and today also she proved to be a very important contributor in the goal making for India along with Sunilita Topo, Ruturaj Bisal, Sakshi Rana, Salima Tete and Navneet Kaur amongst other Indian goal scorers. Abhinav.
1: Excellent news from Kabaddi as well as the hockey arena. Magar soft tennis mein disappointment. Aditya Tiwari aur Jay Meena performance achhi thi apne group stages mein. Mongolia ko haraya, Cambodia se ko bhi haraya. Matlab South Korea se haarne ke baad round of 16 match mein India fell to defeat against the Philippines 2-5. To quarter finals mein nahi pravesh kar paye Aditya Tiwari aur Jay Meena. Magar ab hum jaate hain shooting ki taraf and shooting se update denge aapko Sakshi.
0: Ji, thank you Abhinav. Aur shooting ki agar hum baat kare तो वुमेन्स स्कीट शूटिंग के अंदर आज पहले दिन की समाप्ति पर भारतीय टीम तीसरे स्थान पर टीम इवेंट में उन्होंने अपना आज का दिन समाप्त किया है. वहीं अगर हम मेंस टीम इवेंट की बात करें तो उसमें भारतीय टीम ने पांचवें स्थान पर पहले दिन की समाप्ति पर आज अपना प्रदर्शन समाप्त किया है. टीम स्टैंडिंग्स में चाइना रही नंबर एक पर 143 के साथ, कजाकिस्तान रहा नंबर दो पर 138 पॉइंट्स के साथ और वहीं भारत रहा 132 पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर वुमेन्स स्कीट शूटिंग टीम इवेंट के अंदर पहले दिन की समाप्ति पे.
1: जी हाँ, स्कीट इवेंट तो तीन दिन तक चलेगा मगर शूटिंग में मेडल्स आए हैं और क्या मेडल्स, क्या परफॉर्मेंस. पहले शुरुआत हुई थी आज दिन में 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में जिसमें रुद्राक्ष पाटिल, हिमांशु डिलन और पार्थ माने ने इंडिया को एक सिल्वर मेडल दिलाया और बस वो ही नहीं, उसके बाद 10 मीटर एयर राइफल फाइनल में मेंस में रुद्राक्ष पाटिल को ब्रॉन्ज और हिमांशु डिलन जो अपना एशियन गेम्स का डेब्यू कर रहे हैं सिल्वर मिला. और पहली बार हमें 2026 में पोडियम में दो भारतीय दिखे, हिमांशु डिलन और रुद्राक्ष पाटिल. तो शानदार शुरुआत हमारी हुई है शूटिंग में.
0: यस इंडीड एंड वी एक्सपेक्ट नथिंग लेस than our shooters because we are expecting more medals to come from the world of shooting as the Asian Games progresses further. लेकिन अब थोड़ा सा एक छोटा सा अपडेट लेकर आते हैं MMA की दुनिया से भी, because हमें तो आज पता है कि सुचिका तारियाल जो भारत की तरफ से MMA में आज इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी, she had lost the semi-final of the women's 60 kilogram against a Singaporean opponent Hoon Hui Teo. Though at the end of the day, she was able to bring India the coveted bronze medal. बट यहां पर निराशाजनक खबर जो आई एंड एज पर रिपोर्ट्स दैट हैव बीन पोरिंग इन द मैच वाज अवॉर्डेड टू द सिंगापुर फाइटर, द इंडियन कैंप प्रोटेस्टेड एंड इवेंचुअली द मैच वाज कॉल्ड अ ड्रॉ. अब इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि भारतीय कैंप की तरफ से प्रोटेस्ट आई तो इन द इवेंट ऑफ अ ड्रॉ द रूल दैट हूएवर इज लाइटर किक्ड इन एंड सुचिका जो कि सिर्फ 700 ग्राम ज्यादा थी वजन में अपने अपोनेंट से, वो इस मैच को हार गई और एज पर रिपोर्ट्स शायद यही वजह रही कि भारत को आज ब्रॉन्ज मेडल के साथ यहां पर संतुष्टि करनी पड़ी. शायद इसी वजह से आज वो काफी निराशाजनक निराश भी दिखी थी और उनकी आंखों से आज अभिनव काफी ज्यादा आंसू भी गिर रहे थे.
1: जी हाँ, हार्ट ब्रेकिंग देयर फॉर सुचिका. मगर मेडल्स टैली में भारत अब 10th पोजीशन पे है विद 6 मेडल्स सो फार, 4 सिल्वर्स एंड 2 ब्रॉन्ज. शूटिंग हैव बीन सेंसेशनल फॉर इंडिया एंड लॉट मोर मेडल्स एक्सपेक्टेड. और याद दिलाएं आपको सारे अपडेट्स आईची नगोया से लेकर हम आएंगे एवरी आवर. अगला अपडेट होगा 12:30 PM पे. आप प्लीज स्टे ट्यून टू आकाशवाणी, होपिंग फॉर मोर मेडल्स फ्रॉम द इंडियन कंटिजेंट.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.
3: अभी आप एशियन गेम्स

हलचल इस फिल्म से सुना आपने ये गाना और रफ्ता रफ्ता हम भी आगे बढ़ रहे हैं ब्रेक फ्री इस प्रोग्राम में। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप, उदित

नारायण सुजाता की आवाजों में सुना आपने ये गाना, समीर ने लिखा, विद्यासागर की कॉम्पोजिशन। और ब्रेक फ्री में हमारी बात हो रही है कि कैसे जो है ड्रीम्स को आउटग्रो करना जो है वो अलाउड है। अगर आप कोई एक ड्रीम पूरा नहीं कर पाते हैं या उस पर गिव अप कर लेते हैं वो भी अलाउड है, और ये थिंकिंग कि नहीं सब कुछ ख़त्म ही हो गया एक ड्रीम के बाद, ये वाली जो थिंकिंग है उससे ब्रेक फ्री होने की हम बात कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने पिछली लिंक जब ख़त्म हो रही थी तो एक बात कही थी कि सवाल ये भी है कि कैसा पता कैसे चलेगा कि हमने ड्रीम जो है वो आउटग्रो कर लिया है या बस टेम्पररी फ्रस्ट्रेशन की वजह से उससे छोड़ रहे हैं ना। कभी कभी ऐसा होता है बहुत कोशिश कर रहे हैं फिर भी वो ख्वाब, वो ड्रीम जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा, तो आप गिव अप कर रहे हैं या फिर सच में आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं खुशी खुशी आप जो है उस ड्रीम को गिव अप कर रहे हैं। शायद आंसर इसका ये है कि डिसीजन जो है आपका फियर से आ रहा है या क्लियरिटी से आ रहा है, एकदम आपका माइंड जो है वो क्लियर है। अगर आप ये कह रहे हैं कि मुझसे नहीं होगा तो शायद थोड़ा सा आपको रुक कर सोचना चाहिए, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि मुझे अब ये चीज़ चाहिए ही नहीं तो शायद खुद को आप एक नया आंसर जो है आपने एक नया आंसर खोजने का वक्त है ना। तो ये दो चीज़ों में जो है वो अंतर है, इसको इंसान ने समझ लेना चाहिए कि कब जो है हमने अपनी ड्रीम को अगर हम गिव अप कर भी रहे हैं तो उसके पीछे का रीज़न बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कि आप जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की वजह से, फेलियर की वजह से गिव अप करें, या फिर आपने जो है कोई और ड्रीम चुन लिया है, या आपको कुछ इसमें अब वो मज़ा नहीं रहा है ना, आपको वो एक्साइटमेंट नहीं रही वो ख्वाब देखने में, उसको अचीव करने में, इस तरह से आप किस तरीके से किस सोच के साथ गिव अप कर रहे हैं वो भी मायने रखता है। हम यहाँ पे बिल्कुल भी गिव अप नहीं कर रहे और ये तो हमने कसम की कसम खा ली है कि आपको अच्छे से अच्छे गाने सुनाएंगे। करीना कपूर का बर्थडे है सो उन्हीं की फिल्मों के गाने प्ले हो रहे हैं इस आर में। मैं प्रेम की दीवानी हूँ इस फिल्म से आएगा ये गाना। चित्रा शान की आवाजें, देव कोहली ने इसे लिखा, अनु मलिक की कॉम्पोजिशन।

0: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
1: ब्याज दर सामान्य जमाकर्ता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
0: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है। शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।

हंसी कार्यजी सिंह जॉय की आवाजें आपने सुना ये गाना एजेंट विनोद से, और आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो। शर्मीन संग शामिल हैं आप। अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गाने को लिखा था, प्रीतम की कॉम्पोजिशन थी, और ब्रेक फ्रीज प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे थे कि कैसे जो है इंसान कभी कभार अपनी ड्रीम्स से आउटग्रो कर जाता है, वो कोई एक और ड्रीम चुन लेता है और ये जो अपनी पुरानी पिछली ड्रीम मैं उस पर गिव अप कर देता है। सारी चीजें ही जो है अलाउड हैं, तो वो जो गिल्ट होती है ड्रीम्स पर गिव अप करने की, उससे ब्रेक फ्री होने की हमने बात की। तो आज ब्रेक फ्री में बस इतना ही याद रखिए कि हर ड्रीम को पूरा करना जरूरी नहीं होता, और हर ड्रीम को छोड़ देना भी जो है वो फेलियर की निशानी नहीं होती है ना। कभी कभी हम ड्रीम को नहीं, अपने पुराने वर्जन को आउटग्रो कर रहे होते हैं, और अगर आपका ड्रीम बदल गया तो शायद लाइफ ने आपसे कुछ छीना नहीं है, शायद लाइफ आपसे एक नया सवाल पूछ रही है, अब तुम क्या चाहते हो। और ये जो चीज है ना, अब तुम क्या चाहते हो, उसके बाद इंसान जो है उसके बारे में सोचने लगता है और उसके ऊपर काम करना शुरू करता है ना। लाइफ में जो है इसी तरह से आपको एक्साइटमेंट ढूंढनी पड़ती है, आपको कुछ कर गुजरने के लिए मोटिवेशन इंस्पिरेशन ढूंढनी पड़ती है, तो वो ड्रीम्स के जरिए होता है, और कभी कभार कई और चीजें भी होती हैं आपके, अलग अलग यू नो इंस्ट्रूमेंट्स कोई प्ले करता है, जो जो भी आप कि जिसमें जो है वो खुशी है या आपको जो चीज़ें इंटरेस्ट देती है, इंसान वो करने लगता है ताकि कहीं ना कहीं जो है वो ये लाइफ जो है वो थोड़ी सी उसको इंटरेस्टिंग बना दे। इसी के साथ ब्रेक फ्री को ब्रेक लगाने का वक्त हो गया है, लेकिन हाई हील्स में थोड़ा सा डांस करते हुए जाते हैं। ये गाना आएगा कियन का इस फिल्म से। ओहो, 12 बजे आप न्यूज़ सुनेंगे, 12:02 पर म्यूजिक कैफे लेकर हाजिर हो जाऊंगी मैं। कुमार ने इस गाने को लिखा, मीट ब्रोस की कॉम्पोजिशन है, मीट ब्रोस, जैज धामी, अदिति सिंह शर्मा, यो यो हनी सिंह, इन सब की आवाज़ें। एंजॉय करेंगे ड्रामा, मिलते हैं म्यूजिक कैफे में।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: आप सुन रहे हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर FM रेनबो और समय हो चुका है अब तक के कुछ मुख्य समाचार।

का दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज 7 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 50 हो गई है। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय ने न्यायमूर्ति निवेदिता अनिल शर्मा, निशा सहाय सक्सेना, संजय शर्मा, भरत पराशर, अदिति चौधरी

और समाचार में आगे, नागा फिल्मकार तेजा रियो के निर्देशन में बनी फिल्म अंग ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्लेटफॉर्म प्राइज 2026 जीतकर इतिहास रच दिया है। फिल्म अंग इस वर्ष के लिए चुनी गई 12 फिल्मों में शामिल थी। अब इसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के अकादमी पुरस्कार के लिए विचार किए जाने की पात्रता हासिल करने का सीधा रास्ता मिला है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 46वें शतरंज ओलंपियाड के 5वें दौर में भारतीय पुरुष शतरंज टीम ने नीदरलैंड पर 3-1 से शानदार जीत दर्ज की, जबकि भारतीय महिला टीम को पोलैंड से करारी हार का सामना करना पड़ा। आर प्रज्ञानंद ने लगातार ड्रॉ के बाद शानदार वापसी करते हुए अनीश गिरी पर जीत हासिल की। और समाचार के अंत में, मुंबई में कल गणेश उत्सव के 7वें दिन रात 9 बजे तक कुल 6,436 गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया और इस दौरान कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई। बृहन मुंबई महानगर पालिका BMC ने ये जानकारी दी। प्रादेशिक समाचार अनुभाग द्वारा प्रसारित समाचार का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम के लिए बने रहिएगा इसी फ्रीक्वेंसी पर।

आतिफ असलम चिन्मई की आवाजें, इरशाद कामिल ने इसे लिखा, प्रीतम की कॉम्पोजिशन, फटा पोस्टर निकला हीरो से सुना आपने ये बहुत ही खूबसूरत रंगीन सा गाना। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप। म्यूजिक कैफे ये प्रोग्राम शुरू हो गया है और अक्सर मैं ऐसे करती हूँ कि ये जो कैफे है ना हमारा इमेजिनरी, इसको अलग अलग जगहों पर लेकर चली जाती हूँ। तो आज म्यूजिक कैफे ने अपना पता जो है वो थोड़ा सा क्रिएटिव कर लिया है। आज हमारा कैफे जो है वो खुला है एक खूबसूरत से आर्ट कैफ़े में। चारों तरफ पेंटिंग्स, स्केचेस और कलरफुल कैनवासेस हैं। कहीं कोई ब्रश से अपनी पेंटिंग को आखिरी टच दे रहा है तो कहीं कोई कॉफ़ी के साथ सामने लगी आर्टवर्क को बड़े ध्यान से देख रहा है। तो अपनी फेवरेट सीट आप भी जो है वो चुन लीजिए, कॉफ़ी का पहला सिप लीजिए और अगले एक घंटे के लिए नहीं, बस आधे घंटे के लिए, हाँ जी, क्योंकि 12:30 बजे एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम जाएगा आधे घंटे के लिए उमंग। तो ये हमारा कैफ़े जो है बस आधे घंटे के लिए ही ओपन रहने वाला है और इस आर्ट कैफ़े को जो है अपना ही कैफ़े समझिए आप। चलिए आज इस कलरफुल आफ्टरनून की हम शुरुआत तो हमने एक्चुअली कर दी है, एक और कलरफुल गाना हो जाए। वैसे किसी पेंटिंग और किसी सॉन्ग में एक चीज़ कॉमन होती है, कौन सी चीज़ वो आप ज़रा मुझको बताइए अगर आपको पता है तो। मीनवाइल रंगदीनी सुनाते हैं आपको, ये भी जो है करीना कपूर की ही फिल्म थी देव। कैलाश खेर, महुआ कामत, श्रद्धा पंडित की आवाज़ें हैं, निदा फाजली साहब ने इसको लिखा, आदेश श्रीवास्तवा की कॉम्पोजिशन।

आशा जी की आवाज़ में सुना आपने ये गाना तक्षक इस फिल्म से। सुखविंदर सिंह, तेजबाल कौर भी उनका साथ दे रहे थे। एआर रहमान की कॉम्पोजिशन थी। आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो। शर्मीन संग शामिल हैं आप। आपको बता दें कि 12:30 बजे जो है आप फिर से एशियन गेम्स की अपडेट सुन पाएंगे 5 मिनट के लिए, और उसके बाद एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग आएगा। सो हमारे पास बहुत कम टाइम है म्यूजिक कैफे के लिए, और मैंने जैसे कि कहा पिछले लिंक में कि पेंटिंग और किसी सॉन्ग में एक चीज़ कॉमन होती है, वो ये कि दोनों को हर इंसान अपने तरीके से महसूस करता है। एक ही पेंटिंग किसी को खुशी दे सकती है, किसी को नॉस्टैल्जिया, और किसी को शायद कुछ समझ ही नहीं आए, है ना। म्यूजिक भी कुछ ऐसा ही है। कुछ सॉन्ग सुनते ही कोई मेमोरी सामने आ जाती है, और कुछ बस बिना किसी वजह के मूड अच्छा कर जाते हैं। तो आर्ट कैफे में जो है ये म्यूजिकल कैनवस हमने सजा रखा है, और यहाँ बैठे बैठे एक और बात नोटिस हो रही है कि जब आसपास इतना आर्ट हो तो कॉफ़ी पीना भी थोड़ा आर्टिस्टिक लगने लगता है ना। कैफे की वाइब भी मैटर करती है। किसी के हाथ में स्केचबुक है, कोई कैनवस पर कलर्स मिला रहा है, और कोई बस आराम से बैठकर म्यूजिक सुन रहा है। शायद यही वजह है कि आर्ट और म्यूजिक दोनों हमें थोड़ी देर के लिए रोजमर्रा की भागदौड़ से बाहर निकाल लेते हैं। तो इस खूबसूरत माहौल में ये जो कैफे है हमारा लगा हुआ, एक और रंगीन सा गाना हो जाए। कनिष्क सेठ, कविता सेठ की आवाजें, रंगी सारी ये गाना आएगा जुग जुग जियो इस फिल्म से। कनिष्क सेठ और कविता सेठ ने ही इसे कंपोज किया है। बने रहिएगा इसी फ्रीक्वेंसी 107.1 एफएम रेनबो पर, बिकॉज वी आर म्यूजिक।

क्या बात है सोनू निगम अलीशा शेनॉय की आवाजों में सुना आपने ये गाना हॉलीवुड बॉलीवुड इस फिल्म से अजय फिरमानी ने इसे लिखा संदीप चौटा की कॉम्पोजिशन थी आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो शर्मीन संग शामिल हैं आप म्यूजिक कैफे आज हमारा है एक आर्ट कैफे बिल्कुल बन गया है हमारा आर्ट कैफे अब अपने सबसे रिलैक्स्ड फेज में पहुंच चुका है कॉफी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है पेंटिंग्स के सामने लोग थोड़ी देर और रुक रहे हैं और बैकग्राउंड में ये इस तरह के बहुत ही प्यारे गाने चल रहे हैं एंड ऑनेस्टली ऐसे माहौल में मंडे ब्लूज़ भी जो हैं वो कुछ और हसीन हो जाते हैं रंगीन हो जाते हैं और अब हमारे आर्ट कैफे वाले इस म्यूज़िक कैफे की ये जो मंडे शिफ्ट थी उसको ख़त्म करने का वक्त हो गया है जी आज कॉफ़ी के साथ हमने कलर्स देखे पेंटिंग देखी और म्यूजिक के जरिए कुछ और कलर्स महसूस भी किए तो कैफे बंद करने से पहले हमारी जो प्लेलिस्ट है उसका आखिरी गाना भी आपको सुनाते जाएं वडाली ब्रदर्स की आवाज में आएगा ये गाना तन्नु वेड्स मनु से ओ रंगरेज क्या बात है बहुत टाइम बाद मैं इसको प्ले कर रही हूँ राजशेखर ने से लिखा कृष्णा की कॉम्पोजिशन और वडाली ब्रदर्स गाएंगे आपको बता दें 12:30 बजे आप 5 मिनट की अपडेट सुन पाएंगे एशियन गेम्स की और उसके बाद स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग शुरू हो जाएगा आपसे मिलती हूँ मैं हिट एंड हॉट में 1 बजे ठीक है बने रहिएगा इसी फ्रीक्वेंसी 107.1 एफएम रेनबो पर बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स

0: date.
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: आपका स्वागत है एशियन गेम्स अपडेट्स ऑन आकाशवाणी। आपके साथ हैं साक्षी मानवाल और मैं अभिनव पुंछी, और लेटेस्ट खबरें हम आपको बता रहे हैं, सुना रहे हैं बैडमिंटन के अरीना से, जहां लक्ष्य सेन इंडिया के लिए बहुत शानदार परफॉर्मेंस करी है। बांग्लादेश के अजमान के खिलाफ 21-4, 21-12 पहला मैच जीता, और दूसरे मैच में आयुष शेट्टी गौरव सिंघा के अगेंस्ट डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। 21-4 पहला सेट उन्होंने जीता, और दूसरी गेम में भी अच्छा प्रदर्शन दे रहे हैं। तो बैडमिंटन में आज इंडियन मेन्स टीम ने बहुत ही बेहतरीन शुरुआत करी, और हमारे साथ है साक्षी। एंड साक्षी, शूटिंग की खबरें से हमें प्लीज अपडेट करिए।
3: जी, पहले तो अभिनव शुक्रिया फॉर स्टार्टिंग दिस सेशन, जो हम लाइव अपडेट्स का लेके आ रहे हैं खुशखबरी के साथ, विच इज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बैडमिंटन। अब शूटिंग की अगर हम बात करें तो वुमेन्स स्कीट शूटिंग टीम इवेंट आज हुआ, और वहीं मेन्स स्कीट शूटिंग टीम इवेंट भी हुआ। तो चलिए पहले वुमेन्स स्कीट शूटिंग टीम इवेंट की बात कर लेते हैं। वहां पर रायजा ढिल्लो ने सिर्फ 21 अंक कलेक्ट करे थे अपने दूसरे राउंड से, लेकिन उनका जो एग्रीगेट स्कोर अंत में बना वो था 46 पॉइंट्स का, और इसके साथ उन्होंने अपना पहला दिन आज समाप्त किया 9वें स्थान पर। वहीं परिनाज धालेवाल ने अपना पहला दिन स्कीट शूटिंग टीम इवेंट के अंदर 43 पॉइंट्स के साथ 14th स्पॉट पर समाप्त किया। तो अगर देखें तो जो भारतीय महिलाएं थी उनका पहला दिन आज समाप्त हुआ टीम इवेंट में तीसरे स्थान पर। पहले स्थान पर रहा चाइना 143 अंकों के साथ, कजाकिस्तान आज दूसरे स्थान पर बना हुआ है 138 अंकों के साथ, और भारत की महिलाएं रही तीसरे स्थान पर 132 अंकों के साथ। अब अगर हम मेन्स स्कीट शूटिंग टीम इवेंट की भी बात कर लेते हैं, तो वहां कुछ ज्यादा अच्छी खबर में

0: आपके लिए लेकर नहीं आ रही हूँ आज दोस्तों, क्योंकि भारतीय मेंस स्कीट शूटिंग टीम इवेंट के अंदर अनंतजीत सिंह नारुका ने हाईएस्ट प्लेस इंडियन बने वो 21वें स्थान पर 47 अंकों के साथ। अब आप ये सोचिए, और दूसरी तरफ मेराज अहमद खान 26वें स्थान पर रहे और भवतेक सिंह गिल 27वें स्थान पर रहे। तो अगर ओवरऑल देखें तो मेंस स्कीट शूटिंग टीम इवेंट के अंदर भारतीय टीम ने आज 6th स्पॉट पर समाप्त किया 136 अंकों के साथ। कतर रही 145 अंकों के साथ, जो भारत के से, अगर भारत से हम कंपैरिजन करते हैं तो भारत से एक स्थान ऊपर है। तो ओवरऑल मेन स्कीट शूटिंग टीम इवेंट में हमारे मेन शूटर्स का प्रदर्शन बहुत ज्यादा ऐसा नहीं रहा कि हमारा दिल खुश कर दे अभिनव।
1: ऑफ कोर्स, मगर दिल खुश तो करा है हमारी कबड्डी टीम ने, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय द इंडियन मेंस कबड्डी टीम, ऑल राउंड परफॉर्मेंस, एंड दे बीट जापान 49-24, कॉम्प्रिहेंसिव विन। और आईची नगोया एशियन गेम्स में ऐसे ही हमें प्रदर्शन चाहिए हमारे मेंस कबड्डी टीम से, और ऐसे ही प्रदर्शन हमें मिल रहे हैं हमारी विमेंस हॉकी टीम से, जो साक्षी गोल स्कोरिंग स्प्री पे हैं।
0: जी हाँ जी, द बेस्ट न्यूज आर हॉकी टीम, विमेंस हॉकी टीम आज एक बार फिर से कमाल करते हुए इंडोनेशिया के खिलाफ, जहां पर हमारी भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों ने आज इंडोनेशिया को 17-1 से पराजित किया, अ कमांडिंग विक्ट्री जिसको हम बोलते हैं। और मत भूलिएगा जो पहला मुकाबला था भारतीय महिलाओं का हॉकी में उज्बेकिस्तान के खिलाफ, उसमें भी भारतीय महिलाओं ने 19-0 से उज्बेकिस्तान की महिलाओं को हराया था। एक नाम जो सबको हमेशा याद रहेगा और रहना भी चाहिए वो है दीपिका सहरावत का, जिन्होंने पहले मैच में, पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान के खिलाफ दोस्तों एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग 8 गोल दागे थे भारत के लिए, सेटिंग अ हाई फॉर इंडिविजुअल गोल्स इन अ वुमेन्स हॉकी मैच। और आज भी उनका योगदान रहा है भारत की इस जीत में इंडोनेशिया के खिलाफ, वो भी काबिले तारीफ रहा। उनके साथ कुछ और नाम जो हम सबको याद रखने चाहिए जिन्होंने आज भारत की इस जीत में योगदान दिया है, वो है ऋतुजा पिसल, साक्षी राणा, सालिमा टेटे, नवनीत कौर, इशिका चौधरी, और भी काफी सारे नाम है जो हम आपके लिए लेकर आएंगे और लाते भी रहेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त है अभिनव कि हमारे सारे ही श्रोताओं के चेहरों पर हमने जो एक छोटी सी हंसी छोड़ी है खुशी वाली, वो हंसी हम बरकरार रहने दें।
1: जी हाँ, क्योंकि आज हुआ है धमाकेदार प्रदर्शन हमारे शूटर्स का। मेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में इंडिया को मिला सिल्वर मेडल, रुद्रांश पाटिल, हिमांशु डिलन और पार्थ माने, और उसके बाद कमाल और धमाल दिखाया हमारे मेंस 10 मीटर इंडिविजुअल एयर राइफल में, जब रुद्रांश पाटिल को मिला ब्रॉन्ज और हिमांशु को मिला अपने एशियन गेम्स डेब्यू पे एक और मेडल, वो भी सिल्वर। एंड साक्षी, एमएमए की दुनिया में भी हमने कमाल दिखाया।
0: जी, हमने एमएमए की दुनिया में भी कमाल दिखाया, लेकिन कहेंगे ना कि अगर एमएमए की दुनिया में हमने कमाल दिखाया भी तो ऐसा कमाल दिखाया कि थोड़ा सा हो सकता है सारे फैंस के, सारे चाहने वालों के मन में एक हल्की सी कसक रह गई हो, लेकिन मुबारकबाद तो देनी बनती है क्योंकि सुचिका तारियाल हमारे लिए, भारतीय सारे फैंस के लिए आज ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई हैं। इसके ऊपर और बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से अंतराल का, हम आपके लिए लाइव अपडेट्स लेकर आते रहेंगे दोस्तों। एक बार फिर से हम आपको मिलेंगे 1:30 बजे आकाशवाणी पर विद द ऑन गोइंग लाइव अपडेट्स ऑफ द एशियन गेम्स 2026।
2: While you were listening to the Asian Games 2026 update, and well, with India already adding medals at the Asian Games, there's plenty to cheer about, but you know what?

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए श्रोताओं, करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं,
2: मन शांत हो तो हर कठिन परिस्थिति भी एक नई और महत्वपूर्ण सीख बन जाती है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से

0: श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू लिखते हैं,
1: सादर नमस्कार, ये मेरा प्रशंसा पत्र है। उमंग कार्यक्रम का मैं नियमित श्रोता हूँ। इससे हमारा भरपूर मनोरंजन तो होता ही है, हमें सीख और प्रेरणा भी मिलती है। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए पूरे टीम को हार्दिक बधाई और धन्यवाद।
0: भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मेहू।
1: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी।
0: लानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था आपसे कि दक्षिण अमेरिका के उस फल का नाम बताइए जिसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।
0: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों, कोकोवा या कोको फल का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।
1: और हमारा दूसरा प्रश्न था कि चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से किस गांव से हुई थी।
0: तो श्रोताओं इसका उत्तर है, चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से राजस्थान के खेजडली गाँव से हुई थी।
1: और फिर हमने आपसे पूछा था कि जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, ऐसा क्यों?
0: उत्तर है साथियों, जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है क्योंकि इन्हें जीवात्मा माना जाता है। ये ऐसे वृक्ष होते हैं जो जंगल के दूसरे पेड़ पौधों का भी पोषण करते हैं।
1: और हमारा अगला सवाल बड़ा मजेदार था। हमारा सवाल था श्रोताओं, यदि कोई स्वार्थवश जंगल में लकड़ी काटने जाए तो जंगल का रक्षक लेशी उनके साथ क्या करता है?
0: उसका उत्तर है साथियों, लेशी उन्हें जंगल में भटका देता है।
1: जी, और हमारा अंतिम प्रश्न था आपसे कि खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का जवानों और बच्चों को जंगल के बारे में दिया जाने वाला मूल संदेश क्या है?
0: खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का संदेश है, जंगल हमारा नहीं है, हम बस इसके रखवाले हैं।
1: तो श्रोताओं ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, राष्ट्रगान जन गण मन को संगीतबद्ध किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: राष्ट्रगान जन गण मन को संगीतबद्ध किसने किया था?
1: श्रोताओ आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं। हमारा निवेदन ये भी है कि इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को ताज़ा तरीन जानकारी के लिए जरूर फॉलो करें।
0: जी, और आपको बता दें कि अब NCERT की कक्षा 9 तक की नई पाठ्य पुस्तकें किसी भी सर्च इंजन द्वारा NCERT की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती हैं। टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF।
1: और यदि आप इन पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
0: जी,
1: वहाँ आप हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी जब चाहें सुन सकते हैं। और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है, दिस इज माई टाउन।
0: अंग्रेजी की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित कविता को संगीत रूप में प्रस्तुत करते हुए ये कार्यक्रम नगर की बनावट, साफ सफाई और कूड़ा निपटान समेत स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखने का संदेश देता है।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम का शीर्षक है जगमगाता गांव।
1: इस कार्यक्रम में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग लिया गया है और विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि हमें अपने विचारों को कर्म में भी प्रकट करना चाहिए, अन्यथा उनका कोई मूल्य नहीं है।
2: साथियों, आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपको जरूर प्रोत्साहित करेगी। ये घटना अमेरिका की है।
3: ये बात उन दिनों की है जब अमेरिका संयुक्त राज्य नहीं बना था। दरअसल ये कई देशों की कॉलोनी थी। उस जगह के मूल निवासी आदिवासी थे, जिन्हें रेड इंडियंस भी कहा जाता था। आगे चलकर जब सभी राज्यों का एकीकरण हुआ तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका बना। ये वही अमेरिका है जिसे इतालवी नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोजा था और इसे नई दुनिया का नाम दिया था।
2: कोलंबस निकले तो थे भारत को खोजने, लेकिन पहुंच गए अमेरिका। तो आइए मित्रों, इस जानकारी के साथ अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये 17वीं शताब्दी के आरंभ का काल था। उन दिनों आज की तरह आधुनिक सुविधाएं नहीं थी।
3: मोटर गाड़ी, टेलीफोन, चलचित्र, समाचार पत्र कुछ भी नहीं था। यातायात के साधन नहीं के बराबर थे और लोग आवागमन के लिए या तो पैदल चलते या पशुओं का इस्तेमाल करते थे।
2: बिजली भी नहीं थी, इसलिए रात को लोगों को यात्रा करने में बड़ी परेशानी होती थी। जो सड़कें थीं, वे भी खस्ता हाल थीं। बारिश के समय वहां बड़े बड़े गड्ढे बन जाया करते थे और उनकी मरम्मत करने वाले नहीं के बराबर थे। और तो और, अधिकांश सड़कें कच्ची ही थीं।
3: इन कारणों से वहां दुर्घटनाओं का होना आम बात थी। रात के अंधकार में यात्रा करने वाले मुसाफिर और मुख्य रूप से व्यापारी अक्सर दुर्घटनाओं का शिकार होते थे। हर रोज कोई न कोई ऐसी घटना होती ही रहती थी।
2: ज्यादातर व्यापारी ही इन दुर्घटनाओं का शिकार इसलिए होते थे क्योंकि उन्हें अपना सामान लेकर सुबह सुबह मंडियों में पहुंचना होता था और इसलिए उन्हें रात भर सफर करना पड़ता था।
3: अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत में एक गांव था, नाम था पोप्स क्रीक। इसी गांव में एक बालक रहता था। उसके गांव में भी इस तरह की दुर्घटनाओं का होना आम बात थी। जब कोई भी उस गांव से रात को गुजरते हुए दुर्घटना का शिकार होता तो उस बालक को बहुत दुख होता।

0: लेकिन किया ही क्या जा सकता था, उसे कोई समाधान दिखाई नहीं पड़ता था। उसने अपने गांव के बड़े लोगों से बात भी की, लेकिन सब ने हंसकर टाल दिया। लोग उस बच्चे का मजाक भी उड़ाते थे। उसके पिताजी अक्सर अपने व्यवसाय के कारण बाहर ही रहते थे।
1: लेकिन वो बच्चा इस समस्या के समाधान के लिए लगातार सोचता रहता। एक दिन की बात है, उसने अपनी माँ से कहा,
2: माँ।
3: हाँ बेटा।
2: मुझे बहुत बुरा लगता है जब रोज हमारे घर के सामने दुर्घटना होती है। कोई ना कोई रोज हमारे घर के सामने गड्ढों में गिरता है।
3: हाँ बेटा, पर ये कोई नई बात तो है नहीं।
2: हाँ पर
3: देखो, ऐसी दुर्घटनाएं तो पूरे गांव में हो रही हैं और दूसरे गांव में भी होती हैं।
2: पर माँ हमारे
3: लेकिन बेटा, इसमें भला हम क्या कर सकते हैं? सड़कें खराब हैं और अंधकार भी तो है, तो दुर्घटनाएं तो होंगी ना बेटा।
2: जरा सोचो ना माँ, लोग इसी तरह दुर्घटनाओं का शिकार होते रहते हैं, क्या हम चुप्पी साधे बैठे रहेंगे?
3: अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, अब तुम जाओ और अपनी पढ़ाई करो, मेरे पास बहुत काम है, मुझे जाने दो।
2: लेकिन मामा सुनो ना।
3: अरे बेटा मैंने कहा।
2: अरे सुनो उफ माँ।
3: अरे बेटा मेरे पास बहुत काम है, मुझे जाने दो।
2: माँ कोई सुनता भी तो नहीं है, मुझे इस समस्या के हल के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, लेकिन क्या करूं?
1: साथियों, उस बच्चे ने हार नहीं मानी और अपने पिता से भी बात की। उसने गांव के बड़ों से भी बात की, लेकिन कोई हल नहीं निकला।
0: वो बच्चा लगातार सोचता रहता कि क्या किया जा सकता है, लेकिन कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। एक दिन की बात है, शाम हो गई थी और रात्रि भोजन का समय हो गया था। सब डिनर करने बैठे थे।
3: लो बेटा। अरे क्या बात है बेटा, तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो। बताओ बताओ क्या सोच रहे हो।
2: हाँ माँ, मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ। बेशक बहुत बड़ा समाधान तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम कुछ तो कर ही सकते हैं।
3: कुछ कर सकते हैं? भाई क्या समाधान है? देखो, बड़े बड़ों से कुछ नहीं हुआ और तुम करोगे।
2: हाँ माँ। माँ कैसा रहेगा यदि हम अपने घर के बाहर एक लैंप रख दें या लालटेन टांग दें?
3: बेटा जॉर्ज, तुम कैसी बातें करते हो? लालटेन टांग दें, इससे क्या होगा भला?
2: माँ मुझे दे दीजिए ना एक लालटेन।
3: बेटा
2: मैं जल्दी लालटेन को घर के बाहर लटका दूंगा।
3: अरे इस छोटी सी लालटेन से क्या होगा? क्या दुर्घटनाएं रुक जाएंगी? सारा गांव इस बात पर हंसी उड़ाएगा हमारी।
2: हंसने दो ना माँ, हम लोगों को यूं ही चोट खाने के लिए नहीं छोड़ सकते। मैं मानता हूँ कि सारी दुर्घटनाएं नहीं रुकेंगी, लेकिन
3: लेकिन क्या बेटा?
2: कम से कम हमारे घर के सामने तो दुर्घटना होनी कम हो जाएगी ना। लालटेन से लोगों को रास्ता दिख जाएगा और वे बच जाएंगे। लाओ मुझे एक लालटेन दे दो। माँ दे दो ना, माँ दे दो।
3: अरे बेटा सुनो तो।
2: माँ एक लालटेन दे दो।
3: देखो बेटा, इससे कुछ नहीं होगा। और तुम लालटेन उठाकर, अरे तुम,
2: अरे माँ लालटेन दे दो।
3: अरे लालटेन लेके कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा रुको तो सही। ओहो सुनो तो। देखो ये बच्चा मानता ही नहीं है। ठीक है जैसा तुम सोचो।
2: एक दो दिन के लिए ऐसा करने में हर्जी क्या है? करके देखता हूँ। कहाँ रखूँ, कौन सी जगह, यही ठीक रहेगा। कुछ नहीं करने से कुछ करना तो अच्छा है।
1: साथियों, उस बालक का नाम था जॉर्ज। उसने जलती हुई लालटेन उठाई और घर के बाहर लटका दी। वो देखना चाहता था कि इसका क्या असर होता है। रात भर वो जागता रहा।
0: सुखद आश्चर्य, व्यापारियों और यात्रियों का झुंड वहां से गुजरता रहा, लेकिन उस रात उसके घर के आगे कोई दुर्घटना नहीं हुई।
1: सुबह वो बच्चा भागा भागा माँ के पास पहुँचा।
2: माँ माँ माँ।
3: अरे अरे बड़ी खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
2: देखा आपने रात को लालटेन टांगने का असर? मैं तो सारी रात जागता रहा।
3: क्या

0: कह रहे हो तुम? क्या वहाँ पे एक भी दुर्घटना नहीं हुई?
1: नहीं माँ, एक भी नहीं।
0: अच्छा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि हमारे घर के सामने किसी को चोट नहीं लगी। तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा।
1: मैं कहता था ना माँ, कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा है। अब तो मैं गांव के लोगों को भी ये बात बताऊंगा।
0: हाँ, ये जरूर करना, तुम सबको बताना।
1: हाँ माँ,
0: बहुत अच्छा काम किया बेटा, मैं तो विश्वास ही नहीं करती थी। बहुत अच्छा।
2: तो साथियों, जॉर्ज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसकी माँ को भी बात समझ में आने लगी थी। उन्हें लगा कि यदि हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं कि कम से कम हम अपने घर के बाहर होने वाली दुर्घटनाओं को तो कम कर ही सकते हैं। कुछ लोगों ने उनकी हंसी जरूर उड़ाई, लेकिन उन्होंने अब रोज रात को लालटेन टांगना शुरू कर दिया।
3: उन्हें बहुत अच्छा लगा जब कई राहगीरों ने रात को उनके घर का दरवाजा खटखटाया और इस बात के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।
2: धीरे धीरे ये चर्चा सारे गांव में होने लगी और लगभग सभी लोगों ने अपने अपने घर के सामने लैंप या लालटेन रखना शुरू कर दिया और परिणाम ये हुआ कि दुर्घटनाएं होनी बिल्कुल बंद हो गईं।
3: राहगीर जब दूर से आते तो उन्हें उस गांव को जगमगाता देखकर बड़ी प्रसन्नता होती। अब तो दूर दूर तक इस गाँव की चर्चा होने लगी और लोगों ने इस गाँव का नाम रखा द विलेज ऑफ लाइट्स।
2: विलेज ऑफ लाइट्स यानी जगमगाता गांव। साथियों, देखा आपने कैसे एक बालक की सोच और इच्छा शक्ति ने सारी परिस्थिति बदल दी। धीरे धीरे आसपास के गांव के लोगों ने भी ऐसा ही करना शुरू किया और वो क्षेत्र दुर्घटना मुक्त हो गया। इसी बात से प्रेरणा लेकर बाद में सड़कों के किनारे तेल के लैंप पोस्ट लगने शुरू हो गए।
3: हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि यदि कोई कुछ नहीं कर रहा है तो हम भी क्यों करें। कोई करे या ना करे, यदि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं तो हमें जरूर करना चाहिए और वो भी पूरी लगन से, जैसा कि उस बालक ने किया।
2: साथियों, वो बालक जॉर्ज कोई और नहीं, उसका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन, जो आगे चलकर अमेरिका के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति बने।
3: जी हाँ साथियों, आप ये ना देखें कि कोई क्या कर रहा है या क्या कर सकता है, आप ये देखें कि आप क्या कर सकते हैं। यदि आप परिवर्तन चाहते हैं तो सबसे पहले वो परिवर्तन आप स्वयं बनिए।
4: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
2: और अब सुनते हैं कार्यक्रम
0: भाई मट्टू और घड़ी।
3: एक दिन का जिक्र है, भाई मट्टू खेलते खेलते बावर्ची खाने में घुस गए। वहां दीवार पर घड़ी लगी थी, बस देखते ही उछल पड़े, सीधे चट्टू के पास भागे। इतने तेज कि बस कुछ पूछो मत। चट्टू के पास पहुंचे तो सांस फूला हुआ था, मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। मट्टू बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल कर बोले,
4: अरे चट्टू, वो दीवार पर टंगी है बावर्ची खाने में, और भाई बहुत ही खूबसूरत है।
5: आखिर क्या चीज?
4: घड़ी। घड़ी और क्या, और इसमें कुछ लटक भी तो रहा है, जाने क्या है, इधर आता है उधर जाता है, बस हिलता रहता है और ऐसे बोलता है जैसे टिक टिक टिक टिक। सुनो सुनो, आ रही आवाज।
3: चट्टू भाई ने थोड़ी देर आवाज की तरफ कान लगाए और बोले,
5: हाँ भैया, आ तो रही है।
3: इतना कहकर वो भी बावर्ची खाने की तरफ बहुत तेजी से भागे कि जरा एक नजर देख लें। वहां पहुंचकर बोले,
5: अरे भैया, ये तो पेंडुलम है। पेंडुलम? वही जिसे मास्टर साहब उस दिन रक्कास कह रहे थे। आहा भाई, ये तो बड़ा अच्छा झूला है।
3: चट्टू भाई झट से उस पर कूद कर चढ़ गए। अब मट्टू भाई को कहां ताप थी।
2: नमस्कार, आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर केंद्राच्या दुपारच्या बातमीपत्रात मी योगिता शेटे आपलं स्वागत करते। जपानमध्ये सुरू असलेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतानं आज 4 पदकांची कमाई केली। नेमबाजीत पुरुषांच्या 10 मीटर एअर रायफल सांघिक स्पर्धेत भारतीय संघानं रौप्य पदकांची कमाई केली। रुद्राक्ष पाटील, पार्थ माने आणि हिमांशु ढिल्लन यांचा या संघात समावेश आहे। तसंच वैयक्तिक प्रकारात हिमांशुने 252.4 गुणांसह रौप्य पदक तर रुद्राक्षने 230.9 गुणांसह कांस्य पदक जिंकलं। मिश्र मार्शल आर्ट्समध्ये सुचिका तारियांनी महिला पारंपरिक 60 किलो वजनी गटात कांस्य पदक पटकावलं। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पदक विजेत्या खेळाडूंचं अभिनंदन केलं आहे। त्यांच्या उत्कृष्ट कामगिरीमुळे देशाला अभिमान वाटला असल्याचं राष्ट्रपतींनी आपल्या समाज माध्यमांवरील संदेशात म्हटलं आहे। केंद्रीय युवक व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी मिश्र मार्शल आर्ट्समध्ये पदक जिंकल्याबद्दल सुचिका तारियांचं अभिनंदन केलं आहे। या प्रकारातलं हे देशाचं पहिलं पदक असून हा एक ऐतिहासिक क्षण असल्याचं मांडवीय यांनी म्हटलं आहे। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आजपासून 3 दिवसांच्या गुजरात दौऱ्यावर जात आहेत। या दौऱ्यादरम्यान उद्या त्यांच्या हस्ते केवडिया इथल्या एकतानगर इथं 72वे राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करण्यात येतील। त्यानंतर बुधवारी त्या महाराजा सयाजीराव बडोदा विद्यापीठाच्या 75व्या दीक्षांत समारंभाला उपस्थित राहणार आहेत। आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी आज नवी दिल्लीत नॅशनल फॉर्म्युलरी ऑफ इंडियाच्या 7व्या आवृत्तीचं प्रकाशन केलं। भारतातली फार्माकोविजिलन्स म्हणजेच औषधांच्या दुष्परिणामांवर लक्ष ठेवणारी आत्मनिर्भरतेचं एक उत्कृष्ट उदाहरण ठरलं असल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं। देशात सध्या

0: Swani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: बिल्कुल म्यूजिकली योर्स आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो. शर्मीन संग शामिल हैं आप. हिट एंड हॉट ये प्रोग्राम लेकर आ गई हूं मैं, जिसमें आपकी पसंद के गाने हम प्ले करते हैं. एक थीम लेकर आती हूं मैं और उसके अकॉर्डिंग आपने आपका फेवरेट सॉन्ग हमें भेज देना है 8657661071 पर. 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है. सो आज की थीम क्या है? आज है नेशनल चाय डे. हाँ जी, सारे चाय लवर्स को हैप्पी नेशनल चाय डे. और ऐसे सॉन्ग आपने रिक्वेस्ट करने हैं जिसमें चाय का जिक्र आया हो, या चाय पीते पीते जो है वो गाना शूट हुआ हो, है ना, इस तरह के सीन्स उस गाने में हो कि कोई चाय पी रहा है. या ऐसे गाने आप रिक्वेस्ट करें जो गाने आप चाय की चुस्कियाँ लेते हुए सुनना चाहते हैं. ठीक है, समझ गए? ऐसे गाने आपने रिक्वेस्ट करने हैं जिसमें चाय का वर्ड आया हो, या ऐसे सॉन्ग्स जिसमें कोई लोग चाय पीते हुए नजर आए हों, या ऐसे गाने जो आप जब चाय पी रहे होते हैं तो आपको सुनना बहुत अच्छे लगते हैं. अपने नाम के साथ भेजिएगा 8657661071 पर. 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है. अभी के लिए गर्म चाय की प्याली हो जाए. समीर ने इसको लिखा, अनु मलिक की कॉम्पोजिशन, अनु मलिक ही गाएंगे. हर दिल जो प्यार करेगा इस फिल्म से आ रहा है ये गाना.

0: 말씀. 아웅가!
1: चलो ये तो चाय पे आने वाले हैं. आप एफएम रेनबो पर आ गए हैं ना, क्योंकि हिट एंड हॉट ये प्रोग्राम चल रहा है जहां आपकी पसंद के गाने हम प्ले कर रहे हैं. आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो. शर्मीन संग शामिल हैं आप. आज है नेशनल चाय डे, सो इसीलिए मैंने आपसे पूछा है कि आपके ऐसे फेवरेट सॉन्ग्स हम तक पहुंचाइएगा जिन गानों में चाय का जिक्र हुआ है, या वो गाने इस तरह से पिक्चराइज किए गए हैं जहां लोग चाय पी रहे हैं, या फिर ऐसे वाले गाने जो आप चाय पीते पीते सुनना चाहेंगे. ठीक है, और ये जो गाना है उसकी सबसे ज़्यादा फरमाइश आई हुई है. सौतन फिल्म से सुना आपने ये गाना, किशोरदा लता दीदी की आवाज़ें थी, सावन कुमार प्रदीप कौशिक ने इसको लिखा, उषा खन्ना भी साथ दे रही थी, और जी गाने की रिक्वेस्ट हमें की थी विजेंद्र जी ने अकोला से, अजय सकरे जी ने इंदौर से, संजय दर्शन जी ने, शुभ लक्ष्मी जी ने, दत्ता केदार जी ने भी इस गाने की रिक्वेस्ट की थी. और बिना किसी देरी के अगले दो गानों के बारे में मैं आपको बताती चलूं जो हमारे लिसनर्स जो है वो चाय पीते पीते सुनना पसंद करते हैं ये गाने. एक तो आएगा सांस, जब तक है जहां, इस फिल्म से, सांस में देरी सांस मिली मुझे सांस आई, ये सुनना चाहते हैं हमें इस गाने की रिक्वेस्ट की है पंकज मोहर जी ने. और अभी के लिए जो मैं गाना प्ले कर रही हूं उसकी रिक्वेस्ट की है प्रणव शिंदे ने. दिल है कि मानता नहीं से आएगा ये गाना, अनुराधा पुडवाल बबला मेहता गाएंगे, समीर ने इसको लिखा, नदीम श्रवण की कॉम्पोजिशन.

दावत इश्क का टाइटल ट्रैक आपने सुना, जावेद अली, सुनिधि चौहान की आवाजें थी, कौसर मुनीर ने इसे लिखा था। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप, हिट एंड हॉट ये प्रोग्राम चल रहा है जिसमें मैंने आपसे पूछा है क्योंकि आज नेशनल चाय डे है तो ऐसे गाने रिक्वेस्ट करिएगा जो आप चाय की चुस्कियाँ लेते लेते सुनना पसंद करेंगे, या ऐसे गाने जिसमें लोग चाय पी रहे हों, या ऐसे गाने जिसमें चाय शब्द आया हो, है ना। तो आपने हर तरह के सॉन्ग्स जो है हमें भेजे और ये वाला गाना आपने सुना दीपा पालकर की रिक्वेस्ट पर, और इसकी रिक्वेस्ट हमें की थी हरजिंदर छिंदा जी, जसवीर जस्सी, सीता और गीता ने। क्या बात है, तो इन सब की रिक्वेस्ट पर ये गाना था। आए अब बिना किसी देरी के अगली जो रिक्वेस्ट है उस पर पहुंचते हैं क्योंकि हमारे पास वक्त रह गया है बहुत ही कम, मुश्किल से 15 मिनट रह गए हैं और रिक्वेस्टें हैं ढेर सारी। अभी के लिए आपको सुनाते हैं पिंटो की रिक्वेस्ट पर और फिरोज सिगनपुरिया जी की रिक्वेस्ट पर आएगा ये गाना। ये दोनों भी जो है चाय की चुस्कियां लेते लेते ये वाला गाना सुनना पसंद करते हैं। सिंगिस किंग से आएगा, राहत फतेह अली खान, श्रेया घोषाल की आवाजों में, मयूर पुरी ने इसको लिखा, प्रीतम की कॉम्पोजिशन, तेरी ओर।

वांटेड फिल्म से सुना आपने ये बहुत ही प्यारा गाना, शान एंड श्रेया घोषाल की आवाजें थी, अरुण भैरव ने इसे लिखा, साजिद वाजिद की कॉम्पोजिशन। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल थे आप। हाँ जी, मेरे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन आपको बता दूं कि इस गाने की रिक्वेस्ट हमें की थी राकेश माथुर जी ने, और मैं ये गाना उन सभी के लिए डेडिकेट करना चाहती हूँ जिनके आज सॉन्ग्स प्ले नहीं हो पाए। और जाते जाते मैं प्ले करूंगी हवाई जादा से डाक टिकट, और जिसकी रिक्वेस्ट हमें की है दीप शाह ने, क्योंकि इसमें एक लाइन आती है, क्योंकि आज देखिए हमारा हिट एंड हॉट, जो मैंने जैसे आपको कहा कि आज नेशनल चाय डे है, सो आपसे पूछा था ऐसे गाने जिसमें चाय का जिक्र आया हो, या ऐसे गाने जो आप चाय पीते पीते सुनना पसंद करते हो। तो दीप ने हमें मैसेज किया है, वो कहते हैं कि उसमें एक लाइन आती है कि चंदा को भी लगाएंगे कटिंग चाय का चस्का, आए है। तो मैंने सोचा चलें जी, इस प्रोग्राम का एंड जो है थीम, हमारी जो थीम थी उसी से रिलेटेड सॉन्ग के साथ करते हैं, आप सभी को डेडिकेट करते हैं। अमित भगत, प्रदीप अनंत कृष्णन, गोपे जी झारखंड से और उनकी फैमिली हमें सुन रही थी, लालगिरी गोस्वामी जी और उनकी फैमिली हमें सुन रही थी, राजेंद्र परमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेजेस का, बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस हमेशा हमें करते रहते हैं, शो में जुड़े रहते हैं। संदीप कुमार जी ने मैसेज किया था, दीपा पालकर, शुभलक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, और हमारे साथ गगनदीप थांदी और उनका परिवार जुड़ा हुआ था, पंकज मोहर, और हमारे साथ जगदीश मठाड़ू, वीरपाल मठाड़ू पंजाब मोगा से, अभिजीत गवानकर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, दिग्दर्शन और कविता, हरजिंदर छिंदा जी, पिंटो ने मैसेज किया, कॉल किया था, मुकेश कश्यप, उनकी फैमिली हमारे साथ जुड़ी हुई थी, मुकेश वालिया जी हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए थे, मेहर अरोरा और उनकी फैमिली हमें सुन रही थी, सत्यम पाल जी, प्रणव शिंदे, फिरोज सिगनपुरिया, दत्ता केदार, संजय दर्शन, अजय सखरे इंदौर से, हितेंद्र दास, गुरमीत सिंह, मीता सिंह, और हमें मैसेज किया था शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज ने, और हमें आप पहले अपना नाम लिखा कीजिएगा, अनिल शर्मा जी का भी मैसेज आया था, प्रकाश शिंदे, मिंटू और उनकी फैमिली ने हमें मैसेज किया था, प्रमोद शिंचोलकर जी, आकांक्षा सिन्हा का मैसेज आया था, दिलेश भंडारा ने मैसेज किया था, अशोक पाटिल जी वर्ली से जुड़े हुए थे, वैदही ने मैसेज किया था, विजय महोबिया जी ने मैसेज किया था, दादर से बाबा का मैसेज आया हुआ था, वंदना सूर्यवंशी, शौर्य सूर्यवंशी, ओजस्वी सूर्यवंशी थाने से हमें सुन रहे थे, धनंजय जी ने मुंबई से मैसेज किया था, और डॉक्टर अंजू हमारे साथ अंधेरी ईस्ट से जुड़ी हुई थी, और सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, उनकी फैमिली हमें सुन रही थी, महेश जी का मैसेज आया हुआ था, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के मैसेजेस का। तो आए बिना किसी देरी के अब वो गाना सुना ही देते हैं आपको जिसका जिक्र किया मैंने, हवाई ज्यादा से आएगा ये गाना, जावेद बशीर मोहित चौहान की आवाजें हैं, विभु वीरेंद्र पुरी ने इसको लिखा, रोचक कोहली की कॉम्पोजिशन है। उम्मीद करते हैं आपका ये जो पूरा वीक है वो बहुत ही मजे का गुजरे, ख्याल रखिए अपना, और मेरी आपकी मुलाकात होगी, अब देखिए अभी मंडे को मिली हूँ, अब सीधा आपको संडे को मिलूंगी, शाम 5 से 8 का जो शो होता है उसमें, सो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। अब जा रही है शर्मीन, अपना ख्याल रखें सामीन।

0: final. The Intermeteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Telangana for today. According to IMD, similar weather conditions are also likely to prevail over coastal Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Karnataka and Madhya Maharashtra during the next 2 to 3 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India-New Zealand Free Trade Agreement finalised comes into force on 20th October, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Union Minister Anupriya Patel says Indian pharmacopoeia gains recognition in 25 countries, reflecting the country's remarkable journey of self-reliance. Releases 7th edition of National Formulary in New Delhi. BJP says Congress is deeply influenced by communist ideology, condemns former Vice President Hamid Ansari's remarks. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar to lead Indian delegation at 81st session of UNGA in New York. Russia's ruling United Russia Party takes lead in parliamentary election. IMD forecasts heavy rainfall over Andaman and Nicobar, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Telangana for today. And Indian shooters win 3 medals in men's 10-meter air rifle, taking total tally to 6 at Asian Games in Japan. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर से लागू होगा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का उल्लेखनीय उदाहरण। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बनाई, करीब 58% वोट हासिल किए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में आज तेज बारिश की संभावना। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 3 पदक अपने नाम किए। सुचिका तारियाल ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTA 20 अक्टूबर को दशहरे के अवसर पर लागू होगा। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड को होने वाले 100% भारतीय निर्यात पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करेगा।
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
1: इस समझौते से वस्त्र और परिधान, चमड़ा और जूते, इंजीनियरिंग उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद सहित भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समझौता सेवाओं, निवेश और पेशेवरों, विद्यार्थी और युवाओं के आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर पैदा करता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच लंबे समय से घनिष्ठ संबंध हैं, जो मजबूत जन संबंधों और व्यापार तथा निवेश, कृषि, शिक्षा, खेल, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर आधारित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी में भारत की यात्रा पिछले वर्षों में आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण रही है। नई दिल्ली में नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया के 7वें संस्करण को जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए फिलहाल 1,100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं।
3: टुडे वी हैव अराउंड 1150।
4: देश में अभी करीब 1150 प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी केंद्र और 773 चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्टिंग केंद्र कार्यरत हैं। ये केंद्र सरकारी और

0: अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में संचालित हैं। अब इन सुविधाओं का विस्तार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक करने की योजना है, जिसे दवा और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा निगरानी को और मजबूत किया जा सकेगा।
1: सुश्री पटेल ने बताया कि भारत अब दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी से जुड़े आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन के रोगी सुरक्षा डेटाबेस को दे रहा है।
2: इंडिया टुडे हैज रिजन फ्रॉम द
0: भारत आज WHO के डेटाबेस में दवा सुरक्षा संबंधी जानकारी साझा करने में दुनिया में 8वें स्थान पर है, जबकि 2009 से 2014 के बीच वे 123वें स्थान पर था। दुनिया के करीब 25 देश भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देते हैं और स्वीकार करते हैं।
2: विच रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट द इंडियन फार्माकोपिया।
1: सुश्री पटेल ने लोगों से बिना चिकित्सकीय सलाह के दवा न लेने की अपील की है। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ को लेकर सतर्क रहने को कहा है।
0: विभाग ने दोहराया है कि ऐसा किया जाना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 3 साल की तक की जेल और 50,00,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने को कहा है। विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदें। संचार मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केंद्रीय संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी ने कल तमिलनाडु के मदुरई में डाक विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला का शुभारंभ किया। उन्होंने दक्षिणी क्षेत्र में इंडिया पोस्ट ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स साझेदारी का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
3: इस पहल के तहत शुरुआत में 3 किसान उत्पादक संगठनों टेनिकी वराठ नाठी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, मदुरई की मामा मदुरई फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और विरुद्ध नगर जिले की कम्बिकुड़ी कलवाई फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के साथ साझेदारी की गई। मदुरई प्रधान डाकघर में विक्रेताओं के ऑर्डर के संग्रह, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और भेजने के लिए विशेष भंडारण और ऑर्डर पूर्ति केंद्र भी स्थापित किया गया है। श्री पेमासानी ने सुकन्या समृद्धि खाता योजना के तहत एस पट्टी गांव को संपूर्ण सुकन्या ग्राम घोषित किया है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
4: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों और सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल है। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आज मेरठ पहुंचे। श्री नवीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया। श्री नवीन ने युवा संवाद में छात्र छात्राओं से बातचीत की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के लोगों से नशा मुक्त पंजाब यात्रा से जुड़ने और राज्य को नशा मुक्त बनाने में योगदान देने की अपील की है। फटिंडा के तलवंडी साबो में यात्रा के 4थे चरण की शुरुआत करते हुए श्री चौहान ने पंजाब सरकार पर मादक पदार्थों और ड्रग माफिया के खिलाफ तय समय सीमा में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब में ड्रग माफिया को खत्म कर राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए नई शुरुआत करेगी।
5: पंजाब की नशा मुक्ति के लिए अभियान चला रहे हैं, हम सरकार पे भी दबाव बना रहे हैं। जितने माफिया है उनके खिलाफ हमने अभियान छेड़ा हुआ है। 2 दिन की बहारें हैं जग में, कब जुल्म किसी का चलता है। ये जुल्म का सूरज लाख चढ़े हर शाम को लेकिन ढलता है। आज वो चुनौती देने आया हूँ, प्रधानमंत्री जी का भी संदेश और अमित जी का भी संदेश लेकर

0: श्री चौहान ने नशे से प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की हाल की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। पार्टी मुख्यालय में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अंसारी ने 2019 में प्रकाशित एक किताब का हवाला देते हुए कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हिंदू राष्ट्रवाद को कम्युनिज्म से बड़ा खतरा मानते थे। श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब वामपंथ और वामपंथी विचारधारा से प्रभावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर हम विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। वर्षों के इंतजार के बाद हुए भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ ही राम की नगरी अयोध्या आज वैश्विक पटल पर धार्मिक पर्यटन और विकास की नई इबारत लिख रही है। राज्य और केंद्र सरकार के प्रयासों से अयोध्या में अनेकों विकास कार्य हुए हैं और पूरी दुनिया में सनातन धर्म के केंद्र के रूप में अयोध्या फिर से प्रतिस्थापित हो चुकी है।
1: 2014 में केंद्र में सरकार बदलने और 2017 में राज्य में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से ही भगवान राम की नगरी अयोध्या का कायाकल्प शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वैश्विक मंच पर अयोध्या नगरी धार्मिक पर्यटन और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और विकास कार्यों का पर्याय बनने लगी। इसी राम की नगरी पर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि अगर देश को 2047 तक विकसित बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जागृत करना होगा।
2: राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा।
1: अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप यहां सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हुआ है।
3: अयोध्या में जब से राम मंदिर बना है अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। सामान्य रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की भी आय 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई।
1: पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही राम नगरी आधुनिक सुविधाओं से युक्त हुई है। अयोध्या आज न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि धार्मिक पर्यटन, कनेक्टिविटी और रोजगार के मामले में नए आयाम स्थापित करके भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत का वैश्विक प्रतीक बन रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
4: संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का विषय है विश्वास बहाल करना, बदलाव का प्रबंधन करना। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने देशों की प्राथमिकताओं और रुख को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने विश्व नेताओं से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए और बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बना ली है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अनुसार पार्टी ने करीब 58% वोट हासिल किए हैं। अंतिम परिणाम 25 सितंबर तक आने की उम्मीद है। यूनाइटेड रशिया पार्टी ने पिछले चुनावों में 324 सीटें जीती थी। ये चुनाव यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष के बीच हो रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। दोनों पक्ष एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। वहीं संघर्ष में कूटनीतिक सुलह की संभावना के संकेत भी मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन तक तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और मध्य महाराष्ट्र में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला आज भी जारी है। भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले हिमांशु ढिल्लो, पार्थ माने और रुद्रांश पाटिल की टीम ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। वहीं सुचिका तारियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स में महिलाओं के 60 किलोग्राम पारंपरिक स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर से लागू होगा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का उल्लेखनीय उदाहरण। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में आज तेज बारिश की संभावना। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 3 पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: एशियन गेम्स 2026 आईटी नगोया।
1: स्वागत है आपका अपडेट्स के लिए फॉर एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया। मेरा नाम है अभिनव पुंछी, मेरे साथ है साक्षी बानवाल। और खुशखबरी आई है वुशु के अरीना से, क्योंकि इंडिया की रोशिबिना देवी ने जीत हासिल करी है राउंड ऑफ 16 मैच में। उन्होंने मोचिका खातून को हराया विन बाय पॉइंट डिफरेंस। और याद दिलाएं आप सबको कि रोशिबिना देवी ने सिल्वर मेडल जीता था हैंगझो एशियन गेम्स 2022 में, और 2018 जकार्ता में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। बस एक जीत की और जरूरत है रोशिबिना देवी को और इंडिया को एक और ब्रॉन्ज मेडल गारंटीड है। और मेरे साथ है साक्षी।
2: जी अभिनव, थैंक यू सो मच। एंड गिवन द फैक्ट दैट आपने हमारे श्रोताओं को अभी खुशखबरी दी है, तो ये डेफिनेटली अ रीजन टू स्माइल है, बिकॉज अपने श्रोताओं को मैं याद दिलाना चाहूंगी कि आज सुबह की शुरुआत में नायमन वांगशु फिनिश्ड एट द 15th स्पॉट इन द एशियन गेम्स वुमेन्स चैंगक्वान फाइनल विद 9.573 पॉइंट्स इन अ 16 स्ट्रॉन्ग फील्ड। वहीं हांगकांग की हुई यू लिडिया शैम ने गोल्ड अपने नाम किया था 9.713 पॉइंट्स के साथ। तो जहां वुशु ने आज सुबह उतनी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट रिप्रेजेंटेशन के तौर पर नहीं देखी भारत के एंगल से, लेकिन अब वहां पर हम देख रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग कमबैक। और उसी में आर्यन भी अब आमने सामने आने वाले हैं शहजादा सफी के साथ इन द मेंस 56 केजी राउंड ऑफ 16 एट 3:50 PM टुडे, यानी अगले 20 मिनट में आप ये मुकाबला भी देख सकेंगे। अभिनव
1: जी हाँ, और बात करें एक बड़ी राइवलरी, द आर्च राइवल्स इंडिया एंड पाकिस्तान आर क्लैशिंग राइट नाउ इन द टेबल टेनिस मेंस टीम इवेंट। इंडिया और पाकिस्तान का ये ग्रुप एफ का मुकाबला बस शुरू ही होने वाला है। हरमीत देसाई स्टार्ट ऑफ कर रहे हैं प्रोसीडिंग्स मोहम्मद खान के अगेंस्ट। इंडिया की टीम में सत्या गणेशेखरन, मानव थक्कर, मनुष्या और पायस जैन है। याद लाएं इंडिया ने इंडोनेशिया को तो 3-0 हराया, मगर शॉक हुआ जब इंडिया ईरान से 3-0 हारी। और आज इंडिया को पाकिस्तान को हराने की जरूरत है अगले फेज में जाने की। तो क्या इंडियन टीम वो कर पाएगी जो इंडियन विमेंस टीम कर चुकी है, जिन्होंने पाकिस्तान को अर्लियर इन द डे हराया था।
2: जी उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो जाए आज, बिकॉज अगर ऐसा होता है तो हमारे चांसेस ऑफ स्टेइंग अलाइव इन द एशियन गेम्स 2026 आल्सो स्टे अलाइव। लेकिन आप स्विमिंग की ओर भी एक रुख कर लेते हैं हमारे प्यारे श्रोताओं, और आपको बताती हूँ कि इट्स नॉट बीन अ वेरी गुड डे फॉर आर इंडियन स्विमर्स, बिकॉज भारत की तरफ से श्रीहरि नटराज ने 10th स्पॉट पर फिनिश किया इन द मेंस 50 मीटर बैकस्ट्रोक फाइनल एट द एशियन गेम्स 2026, क्लॉकिंग 25.52 सेकंड्स इन द 10th स्विमर मेडल रेस। और दूसरी तरफ ये भी बता दो आप सबको कि बाकी भी जो भारतीय खिलाड़ी थे उनका तो आज इससे भी ज्यादा निराशाजनक प्रदर्शन रहा, चाहे हम बात करें ऋषभ दास, आकाश माने, हीर जितेश शाह या फिर धानुष सुरेश की, या फिर मेंस के जो 4x200 मीटर फ्रीस्टाइल रिले का मुकाबला भी जो होता है, हीट जो होता है, उसमें भी भारतीय स्विमिंग टीम साजन प्रकाश, अनीश सुनील, कुमार गावड़ा, वेदांत माधवन और दक्षिण शशि कुमार, ये सब क्वालिफाई करने से, फाइनल्स में क्वालिफाई करने से रह गए। तो ओवरऑल नॉट एट ऑल अ गुड डे फॉर इंडियन स्विमर्स ओवर देयर अभिनव।
1: जी हाँ, स्विमिंग में तो प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, मगर कबड्डी में तो इंडिया ने धमाका मचा दिया, क्योंकि जापान के खिलाफ इंडिया ने जीत हासिल करी 49-24। जापान की स्टार्ट बहुत अच्छी थी, मगर हमारी इंडियन टीम जो डिफेंडिंग चैंपियंस है, गोल्ड मेडलिस्ट है, उनके आगे तो कोई बड़ा नहीं। इंडिया ने एक फैंटास्टिक ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाई, 49-24 से जीत हासिल करी। और अब होने वाला है मुकाबला हमारी विमेंस टीम का, क्योंकि एट 4:15 इंडिया वर्सेस बांग्लादेश विमेंस ग्रुप ए का एक धमाकेदार इंकाउंटर होने वाला है साक्षी।
2: यस इंडीड, उसके ऊपर सबकी नजरें रहेंगी। और वो आज इंडिया के एंगल से भी आखिरी मुकाबला होगा भारतीय रिप्रेजेंटेशन का एशियन गेम 2026 के अंदर। लेकिन अगर थोड़ा सा आज पीछे जाए और बात करें कि आज ऐसे कौन से और पल आए जहां पर हम सबके चेहरों पर थोड़ी सी हंसी आ सकी, वो था बैडमिंटन की दुनिया से, जहां पर हमारे इंडियन शटलर्स लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और किदांबी श्रीकांत ने भारत को जीत हासिल कराई, बांग्लादेश को 3-0 से हरा कर। और इसके साथ ही वो क्वार्टर फाइनल्स में भी प्रवेश कर गए, जहां पर अब उनका मुकाबला होगा जापान के साथ, जो कि बिल्कुल भी आसान मुकाबला नहीं होने वाला है अभिनव भारतीयों के लिए।
1: जी हाँ, और हमारा होने वाला है बहुत ज्यादा बड़े मुकाबले। आप स्टे ट्यून रहिए, एशियन गेम्स की कवरेज सिर्फ आकाशवाणी पे अपडेट के साथ हम वापस आएंगे 4:30 पे। इंडिया भी मेडल टैली पे 12th पोजीशन में, होपफुली ये टैली बढ़ते रहे।
2: होपफुली लेट्स होप फॉर द बेस्ट ऑफ ईयर, बट एट द एंड वी कैन आल्सो से दैट इंडिया एंजॉयड अ सक्सेसफुल डे एट द एशियन गेम्स टुडे, हैविंग सिक्योर्ड अ टोटल ऑफ 6 मेडल्स सो फार। शूटिंग प्रोवाइडेड दो 3 ऑफ दोज मेडल्स, ऑफ कोर्स where we are talking of silver, we had 4 medals 4 silvers and 1 bronze, but overall a good day so far for the Indians.
0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।

0: अभिनव पुंछी एंड वेरी क्विकली नाउ मूविंग ऑन. सबसे पहला स्पोर्ट जिसको हम आज कवर करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं इस वक्त की पिछले एक घंटे में क्या हुआ उसमें था, वो है वुशू. मोर गुड न्यूज कमिंग इन फॉर इंडिया इन वुशू. आर्यन डिफीटेड अफगानिस्तान शहजादा साफी 2-0 इन द मेंस 56 kg राउंड ऑफ 16 टू बुक इज प्लेस इन द क्वार्टर फाइनल्स. जी हाँ, क्वार्टर फाइनल्स में हम प्रवेश कर चुके हैं. वहीं कुछ पल पहले ही भारत की रोशिबीना देवी हैड ऑल्सो एडवांस टू द वुमेन्स 60 kg क्वार्टर फाइनल्स, बीटिंग बांग्लादेश मोस्ट खतून बाय विन बाय द पॉइंट डिफरेंस. यानी इसका मतलब ये हुआ अभिनव कि वुशू के क्वार्टर फाइनल्स में भारत ने अपनी जगह बना लिए, चाहे वो महिलाओं का हो चाहे वो हमारे आदमियों का हो, और वो क्वार्टर फाइनल्स होने वाले हैं कल.
1: एग्जैक्टली राइट साक्षी. और सबसे बड़ी बात यह है कि वुशू में अगर आप सेमीफाइनल्स में प्रवेश करते हैं तो गारंटीड ब्रॉन्ज है. तो बस एक जीत से दूर है हम दो ब्रॉन्ज मेडल्स गारंटी करने के लिए. बट हमारा तो मिशन गोल्ड का है, और इसलिए आज हमारी टेबल टेनिस की मेंस टीम ने आर्च राइवल्स पाकिस्तान को 3-0 हराया. शानदार प्रदर्शन हमारी मेंस टीम का. याद दिलाएं, मेंस टेबल टेनिस टीम प्रेशर में थी क्योंकि ईरान से वो हारे थे 3-0. तो अगर क्वार्टर फाइनल्स में प्रवेश करना था तो आज पाकिस्तान को हराना बहुत ही महत्वपूर्ण था. तो हरमीत देसाई ने शुरुआत करी, मोहम्मद खान को हराया 11-4, 11-3, 11-5. फिर सत्यन गणेशेकर ने हराया अब्बास खान को 11-1, 11-8, 11-9. और प्रयास जैन ने मोहम्मद खान को हराया 11-2, 11-5, 11-7. इस जीत के साथ अब इंडियन मेंस टेबल टेनिस टीम जाती है क्वार्टर फाइनल्स.
0: जी, और कबड्डी की ओर भी अब रुख कर लेते हैं. महिला कबड्डी का मुकाबला आज होने वाला है. वैसे तो इसको शाम को 4:15 शुरू होना था, लेकिन कुछ ही क्षणों में अब ये मुकाबला शुरू होता हुआ आप लोग देख सकेंगे. ये मुकाबला होगा भारत और बांग्लादेश की महिला कबड्डी के बीच में, जिसमें आपको ये भी बता दें कि भारतीय महिला कबड्डी टीम जो थी पिछले मुकाबले में ईरान से बुरी तरह से हारी थी. जी हाँ, 3-0 से ईरान ने भारत को हराया था. इसलिए आज भारत के लिए बहुत जरूरी है कि उनके मनोबल के लिए, उनके आत्मविश्वास के लिए वो इस मुकाबले को जीतें और कॉन्फिडेंटली और कमांडिंग तरीके से जीतें. आपको ये भी बता दें कि भारत का जो ग्रुप है उसके अंदर भारत है, ईरान है, जापान है, बांग्लादेश है. ईरान से हम हार चुके हैं, अभी बांग्लादेश के साथ अभिनव मुकाबला है, और अगर आज भी नहीं जीते तो करो या मरो वाली कहानी है उसके बाद जापान के साथ. और रास्ता मुश्किल नहीं होता है, सफर और कठिन ही हो जाएगा भारतीय महिलाओं के लिए.
1: जी हाँ, प्रेशर इज ऑन द इंडियन वेमेन. मगर जैसे हमारा इंडियन कंटिंजेंट एशियन गेम्स में दिखा रहा है आईची नगोया में, कि इंस्पायर कर रहा है एक दूसरे को, क्योंकि आज इंडियन मेंस कबड्डी टीम ने अपना जो इंकाउंटर था जापान के खिलाफ जीता 49-24 से. शुरुआत थोड़ी स्लो थी बट उसके बाद क्या पेस पकड़ी, और शानदार तालमेल था हमारे अटैकर्स और डिफेंडर्स का. और ऑलराउंड परफॉर्मेंस के बाद हमारी टीम ने जीते 49-24. और आज बस ये अच्छी न्यूज नहीं थी साक्षी, मेडल्स की भी तो आज बरसात हुई है शूटिंग से.
0: ऑफ कोर्स, शूटिंग से आज मेडल्स की बरसात हुई है, बिकॉज आपको बता दें कि शूटिंग में आज हिमांशु ढिल्लो हमारे लिए सिल्वर लेकर आए, वहीं रुद्राक्ष पाटिल हमारे लिए ब्रॉन्ज लेकर आए मेंस 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल्स में. और क्योंकि हम शूटिंग की बात कर रहे हैं तो अभी तक अगर मेडल तालिका की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा मेडल्स जो किसी गेम में आए हैं वो है शूटिंग के अंदर ही. जी हाँ, 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल की वजह से भारत की अभी जो मेडल टैली है उसमें कुल मिलाकर 6 मेडल्स हैं, जिसमें से 5 तो शूटिंग में आया. और छठा मेडल जो आया है वो आया है सुचिका तारियाल की वजह से. जी हाँ, इन मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स दिस गर्ल वेंट ऑन टू ब्रिंग लॉरल्स फॉर इंडिया बाय विनिंग द ब्रॉन्ज. एंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट अंत में एक इमोशनल मोमेंट उसके लिए हो गया था, उनके लिए हो गया था, बिकॉज ऑफ हाउ दैट मेडल वॉज ग्रांटेड और द डिसीजन वॉज मेड, येट there is no taking away the fact that she made India stand tall with pride, stand tall with of course confidence and happiness, and made every Indian also happy because MMA ke andar unhone Bharat ko bronze medal dilaya. To dosto, iske saath aapko bata dein ki India's medal tally receives a strong boost across multiple disciplines, with the athletes delivering notable performances throughout the day and setting the tone for the rest of the games. Aur yahan se ab क्विकली आपको बताते थे भारत की स्टैंडिंग है 12वें स्थान पर, जिसमें है 6 मेडल्स, ऑफ कोर्स 4 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज. होपिंग दैट इंडिया टेंड्स टू परफॉर्म बेटर इन द कमिंग डेज. ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन राइट नाउ. एक घंटे बाद दोबारा आपसे करेंगे मुलाकात. फिलहाल के लिए बाय.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.

मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें कर

रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कह।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम।

दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें, क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है।

0: Mani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं आरजे आदित्य। कार्यक्रम का नाम है लव यू जिंदगी, और थोड़ी क्यूरियोसिटी बरकरार रखने के लिए मैंने शुरुआत कुछ गीतों से की, अपनी पहचान से नहीं। तो मुलाकात बाकी थी, तो अभी हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अरविंद कुलकर्णी जी, विजेंद्र घाटोल जी, प्रणव शिंदे जी और कई श्रोताओं को ये सवाल था कि कार्यक्रम प्रेजेंट कौन करने वाला है, तो मैं हूं आप ही सभी का आरजे आदित्य धाईगुड़े। शुरू करते हैं कार्यक्रम की, शुरुआत तो हो चुकी है, आगे बढ़ाते हैं कुछ बढ़िया गीतों के साथ। बने रहिए एफएम रेनबो 107.1, जो है म्यूजिकली योर्स।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लव यू जिंदगी कार्यक्रम में। मैं हूं सिर्फ आप ही का आरजे आदित्य धाईगुड़े। तो बातें शुरू करते हैं आज के दिन के बारे में। हाँ, मतलब आज का आपका दिन कैसा रहा ये तो आप मुझे बताइएगा ही, मगर आज है 21 सितंबर और अगर आज के दिन के पास्ट में, हिस्ट्री में हम झांके तो दिखता है कि थोड़ा सस्पेंस और रखूं और थोड़ा माहौल बना देता हूं, सुना देता हूं कुछ गाने। क्यों, चलेगा ना? सुनते रहिए एफएम रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूं साक्षी मांडवालो, मेरे साथ है अभिनव पुंशी एंड वी ब्रिंगिंग यू द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026। घड़ी में इस वक्त बच रहे हैं दोस्तों 5:30 और अभी की सबसे तरोताजा खबर ये है कि कबड्डी में भारतीय महिलाओं का मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ शुरू हो चुका है। ग्रुप ए का ये मुकाबला जिसमें डिफेंडिंग चैंपियंस भारतीय टीम ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टार्ट करी है अगेंस्ट द अपोनेंट्स बांग्लादेश। बाय द एंड ऑफ द हाफ टाइम इंडियन वुमेन वर लीडिंग अगेंस्ट बांग्लादेश 21-10। जी हाँ, 21-10 से भारतीय महिलाओं को बढ़ोतरी मिली हुई थी और हाफ टाइम के बाद भी अगर हम बात करें तो अभी भी भारत का जो स्कोर है वो है 39-21। यानी बांग्लादेश के खिलाफ ये मुकाबला बहुत ही एक तरफा एक तरीके से निकलकर बाहर आ रहा है। सो फार बांग्लादेश ने फाइट तो अच्छी दी है भारतीय खिलाड़ियों को, लेकिन भारतीय महिलाओं के करीब कबड्डी की इस मैच में वो आ नहीं पाए। और एक छोटा सा करेक्शन भी करना चाहूंगी दोस्तों आप सभी के लिए कि

0: जो कबड्डी के ये मैचेस हैं उसमें भारत के साथ जो उनके ग्रुप ए के अंदर इस समय पेयर टुगेदर हैं वो है ईरान, बांग्लादेश और जापान। आज भारत का पहला मुकाबला है बांग्लादेश के खिलाफ, इसके बाद भारत का मुकाबला होगा ईरान के खिलाफ जो कि है बुधवार यानी 23 सितंबर को तोकाई सिटीजन जिम्नाजियम में, और फाइनली उनका मुकाबला है जापान के खिलाफ 24 सितंबर को तोकाई सिटीजन जिम्नाजियम में ही। मेरे साथ है अभिनव। अभिनव, गुड स्टार्ट फॉर द इंडियन वुमेन्स कबड्डी टीम।
1: जी हाँ साक्षी, स्टनिंग स्टार्ट बाय द इंडियन वुमेन्स कबड्डी टीम। और अगर मेंस कबड्डी टीम की भी बात करें तो दे आल्सो हैड अ वंडरफुल स्टार्ट अगेंस्ट द होस्ट जापान। इंडिया ने जापान को हराया 49-24 हाफ टाइम पे। इंडिया वॉज लीडिंग 31-9। आशु मलिक और देवांग दलाल ने तो अपना कमाल दिखाया ही, और हमारे मेन कबड्डी प्लेयर्स मैच में ज्यादा एंट्री नहीं कर पाए, ज्यादा इंपैक्ट नहीं कर पाए, रेस्ट कर रहे थे। और होस्ट के साथ थोड़ा सा इंडिया ने टेक इट ईजी करा एज अकॉर्डिंग टू द कैप्टन सुनील कुमार, मगर गुड स्टार्ट फॉर द इंडियन मेन्स कबड्डी कंटिंजेंट। अब इंडिया और कोरिया का मुकाबला होने वाला है कल, जब हमारी मेन्स टीम चाहेगी थोड़ा मोमेंटम फिर से गेन करें। याद दिलाए इंडियन मेन्स भी है डिफेंडिंग चैंपियंस, तो क्या इस बारी रिपीट होने वाला है? एंड साक्षी, आई एम श्योर यू हैव अ वेरी गुड अपडेट फॉर अस फ्रॉम द विमेन्स मैच, बिकॉज मुझे लग रहा है बस 20 सेकंड बाकी है और इंडिया कंफर्टेबली जीत रही है।
0: हाँ जी, इस मुकाबले में तो भारत की जीत तय ही है, निश्चित हो चुकी है ऑलमोस्ट। लेकिन वही कहते हैं ना, जब तक ये मुकाबला समाप्त ना हो तब तक समाप्त होता नहीं है। लेकिन अभी अगर विमेन्स टेबल टेनिस मुकाबले की भी बात करें तो वहां पर भी दोस्तों भारत ने पाकिस्तान को 3-0 से आज हरा दिया। मैं बात कर रही हूं विमेन्स टेबल टेनिस टाई मैच की, जो टीम मैच था इसमें श्रीजा अकुला ने भारत की टीम को जीत दिलाई आखिरी मुकाबले में, जहां उन्होंने फातिमा खान को 11-4, 11-4, 11-5 से हराया। एंड एज अ रिजल्ट इंडिया वाज एबल टू फिनिश एज ग्रुप एफ विनर्स एंड एडवांस टू द क्वार्टर फाइनल्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट योगदान जो इस मैच के अंदर रहा, या मैं कहूं इस मुकाबले में रहा, वो था सिंड्रेला दास का। इट वॉज अ डेब्यू इन एशियन गेम्स दिस ईयर एंड शी बीट कलसुम खान 11-6, 11-7, 11-5 इन अ कंफर्टेबल स्ट्रेट गेम्स विक्ट्री, जिसकी वजह से भारत को 2-0 से बढ़त मिल गई थी पाकिस्तान के ऊपर। और फाइनली कहते हैं ना कि द बेस्ट आइसिंग ऑन द केक वाज सर्व्ड बाय श्रीजा अकुला, जिन्होंने 3-0 से भारत को पाकिस्तान के ऊपर जीत दिलवा दी महिला टेबल टेनिस के टीम टेबल टेनिस टाई के अंदर। अब भारत का सामना होगा थाईलैंड के साथ कल इन देयर लास्ट ग्रुप स्टेज एनकाउंटर। वैसे तो भारत क्वालिफाई कर गया है, लेकिन एज पर द प्रोटोकॉल और नियम के हिसाब से कल भारत थाईलैंड के साथ फेस टू फेस आने वाला अभिनव।
1: और जैसा हमने आपको प्रॉमिस करा था वो ब्रेकिंग न्यूज अब हम आपको दे सकते हैं। इंडिया ने अपना मैच बांग्लादेश के खिलाफ जीत लिया है 42-21, सो वेरी गुड डे फॉर द इंडियन कबड्डी टीम बोथ मेंस एंड वुमेन्स। एंड साक्षी वॉज टॉकिंग अबाउट द टेबल टेनिस टीम, और इंडियन मेंस टेबल टेनिस टीम वॉज ऑल्सो अप अगेंस्ट द आर्च राइवल्स पाकिस्तान। और याद दिलाएं इंडियन मेंस हैड टू विन दिस मैच क्योंकि ईरान से हार उनको मिली थी, तो इंडियन मेंस ने पाकिस्तान को हराया 3-0। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय हरमीत देसाई, सत्यन गणेशन एंड प्रयास जैन। एंड इस विन के साथ इंडिया अभी ऑन द वर्ज ऑफ क्वार्टर फाइनल्स, अभी क्वार्टर फाइनल्स की जगह पक्की नहीं हुई है। एंड ऑफकोर्स लेटेस्ट एशियन गेम्स की सारी अपडेट्स के साथ आप हमारे साथ जुड़िए ऑन आकाशवाणी। हम एक घंटे में 6:30 में आपको फिर सारी अपडेट्स बताएंगे आईची नगोया से, सो स्टे ट्यून्ड।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: खूबसूरत गीतों के बाद हाजिर हूं मैं आप सभी का आरजे आदित्य धाईगुड़े और कार्यक्रम शुरू है लव यू जिंदगी। तो दोस्तों, जिंदगी में आजादी तभी हासिल होती है जब जिंदगी से प्यार हो, लव हो। और आजादी की ही थोड़ी इंटरनेशनल बात कर रहे हैं हम आज लव यू जिंदगी में। दोस्तों, 1981 में आज ही के दिन, 21 सितंबर के ही दिन, अमरीकी द्वीपकल्पों में से एक द्वीप जो है बेलीज, जिसका नाम है, उस देश का यूनाइटेड किंगडम की सत्ता से वो देश मुक्त हुआ। पहले बेलीज का नाम ब्रिटिश होंडुरास था, फिर 1970 में उसका नाम बदलकर बेलीज किया गया। उन्हें यह आजादी मिली 141 सालों बाद। समझ रहे हो ना क्या कहना चाहता हूं मैं। खैर, सब वक्त वक्त की बात है। हम सुनते हैं कुछ गाने और अब थोड़ा पीछे जाएंगे गानों में भी, क्योंकि समय समय की बात चल रही है तो समय के साथ चलते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं। सुनते रहिए एफएम रेनबो 107.1 म्यूजिकली योर्स।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

0: Mani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लव यू जिंदगी के इस आखिरी सेशन में। तो दोस्तों, हम अचानक, आप कहोगे कि आदित्य आज आप अचानक आजादी की बातें क्यों कर रहे हो, तो मैं लिंक करूंगा अभी जो एशियन गेम्स चल रहे हैं। तो एशियन गेम्स हो या ओलंपिक्स हो या फिर कॉमनवेल्थ हो, ऐसे सारे जो खेलों की प्रतियोगिता हैं, तो ये जो है वो कहीं ना कहीं आजादी से जुड़ी हुई है। कई देश, कॉमनवेल्थ हो या ये एशियन गेम्स हो, तो एशियन गेम्स की शुरुआत जो है वो 1951 में दिल्ली से शुरू हुई थी। तो उसका कारण ही यही था कि हम सब आजाद, जो मुल्क अभी आजाद हुए हैं, उनकी आजादी के साथ साथ हमारी यूनिटी, हमारा एक साथ होना भी बहुत जरूरी है देश की और दुनिया की एक शांतता के लिए, दुनिया में शांतता बने रहने के लिए। तो इसी भावना से ये खेलों की शुरुआत हुई थी। और आजादी अपने आप में ही एक ऐसी फीलिंग है जो अपने आप में उत्साह और प्रेरणा देती है, देती रहती है इंसान को। तो इसकी बहुत जरूरत है जहां शांति प्रस्थापित करनी हो। तो इसी बात पे इस आखिरी सेशन में मैं बात करूंगा एक और ऐसे देश की जो आज हमारे भारत की

तरह ही आजाद भी है और तेजी से तरक्की भी कर रहा है ये देश 21 सितंबर आज ही के दिन 1991 में सोवियत यूनियन के बिखरने के बाद स्वतंत्रता प्राप्त कर ली उस देश ने, तो वहां पे लोकतंत्र का स्वीकार हुआ। ये देश का नाम है आर्मेनिया। दोस्तों, बेलिज हो या आर्मेनिया हो, सारे ही देश घूमने के लिए बहुत ही खूबसूरत है। तरह तरह के अनुभव आप इन देशों में ले सकते हैं, बेहद खूबसूरत देश हैं ये सारे। तो मेरे भारत से थोड़े कम ही है, किंतु है बहुत ही खूबसूरत। तो दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी को आज का लव यू जिंदगी ये जो कार्यक्रम है वो बहुत पसंद आया हो अभी तक का। अब से कुछ ही देर में, मतलब 5 या 6 मिनट में न्यूज शुरू होंगे और उसके बाद जो है हम शुरू करेंगे अपना अंदाजे बयां का सफर। तो बने रहिए FM रेनबो 107.1, जो कि है म्यूजिकली योर्स।

0: Swahili FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: स्वागत है फिर एक बार। वैसे तो मैं आपका आरजे आदित्य जो है वो अंदाजे बयां के कार्यक्रम में ही मिलने वाला था, लेकिन कुछ ऐसे मैसेजेस मुझे आए हैं अपने श्रोताओं से। तो जैसे विक्रम पाष्टे जी हैं मुंबई से, उनके साथ उनके दोस्त शैलेश नाइगड़े और चेतन कनोजे, ये तीनों दोस्त कार में हैं, बाहर प्यारी सी बारिश हो रही है और वो हमारा शो जो है वो सुन रहे थे। तो उनकी शाम जो थी वो बहुत ही आसान हुई, हसीन हुई, आई एम सो सॉरी। तो उन्होंने एक पॉजिटिव सा थॉट दिया था, मुस्कुराओ क्योंकि तुम्हारी मुस्कान किसी और की वजह बन सकती है। वाह क्या खूबसूरत थॉट है ये। और उनको आवाज़ सुनकर मेरी जो है उन तीनों के चेहरे पर स्माइल आ गई। वाह, तो ये और मेरे लिए बहुत ही कीमती फीडबैक है। तो ऐसे ही कुछ फीडबैक आप हमें देना चाहें तो FM रेनबो का जो फेसबुक पेज है उसे /FM Rainbow Mumbai ऐसा सर्च कीजिए फेसबुक पे, और साथ ही साथ हमारा ट्विटर हैंडल भी है /AIR_Mumbai। व्हाट्सएप पे तो आप हमें अपना जो अभिप्राय है, कोई फीडबैक हो तो 8657661 इस नंबर पे, या फिर जीमेल के माध्यम से हमें myfmrainbow@gmail.com इस ईमेल भी कर सकते हैं इस एड्रेस पे। तो बने रहिए FM रेनबो। मैं एक्चुअली नहीं चाहता था कि गानों में कोई रुकावट आए, लेकिन ये मैसेजेस जो है वो विजेंद्र घाटोल जी हैं, पंकज मोहड़ जी हैं, अमित भगत जी हैं, प्रमोद चिंचोलकर, अरविंद कुलकर्णी जी, अजय साखरे जी, धनंजय जी भी हैं, संजय दर्शन जी, राकेश माथुर जी, दत्ता केदार पंडरपुर से, प्रकाश शिंदे जी, इन सभी ने बहुत ही बढ़िया से फीडबैक्स यहाँ पे भेजे थे। यहाँ पे फिरोज सिगनपुरिया जी ने भी वो कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, सब मैसेजेस भेजे। तो मैंने सोचा कि आप से कुछ बातें भी कर लूं और फीडबैक्स का पता भी बता दूं। तो बने रहिए FM रेनबो 107.1 पे, और फिर इस गाने के बाद डायरेक्टली हम मिलेंगे कल नहीं, अंदाजे बया इस कार्यक्रम में बस 6:15 को। ठीक है, बने रहिए, सुनते हैं अगला गीत।
2: प्रसारित करीत आहोत प्रादेशिक मराठी बातम्या। आकाशवाणी नागपूर, हेमांगी कुलकर्णी आपल्याला प्रादेशिक बातम्या देत आहे। ठळक बातम्या। राज्यासाठी जागतिक कार्यबल गतिशीलता धोरण जाहीर। भारताचे 28 देशांसोबत कामगार गतिशीलतेसंदर्भात करार। भारत आणि न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करार येत्या 20 ऑक्टोबरपासून लागू होणार। 29 सप्टेंबर रोजी आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविक्रमी रोजगार महाकुंभला आतापर्यंत 1588 नियोक्त्यांची नोंदणी। आणि बंगालच्या उपसागरातील हवामान प्रणालीच्या प्रभावामुळे 23 सप्टेंबरपासून विदर्भात पावसाचा जोर वाढणार। आता सविस्तर बातम्या। महाराष्ट्रातील युवक युवतींना आंतरराष्ट्रीय रोजगारासाठी कौशल्य आणि भाषा प्रशिक्षण देण्यावर भर देण्यात येत असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं। देशनिहाय स्किल पासपोर्ट तयार करून प्रशिक्षण संस्थांनी अभ्यासक्रम अद्ययावत करावेत, तसंच सुरक्षित भरती व्यवस्था विकसित करावी असे निर्देश त्यांनी दिले। मुंबईत झालेल्या आंतरराष्ट्रीय कामगार गतिशीलतेवर परिषदेत महाराष्ट्रासाठी जागतिक कार्यबल गतिशीलता धोरण 2026 जाहीर करण्यात आलं। भारतानं 28 देशांसोबत कामगार गतिशीलतेसंदर्भात करार केले असल्याचं मुख्य

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: सड़क किनारे एक चाय की टपरी पर एक जोड़े को चाय पीता देख मन ये सोचने पर विवश हो गया कि साथ होने के लिए एक ही छत होना जरूरी नहीं। कभी एक बेंच पर रखे दो कूलर भी दो थके हुए जीवनों को घर जैसा सुकून दे सकते हैं। अजीब है ना, हम उम्र भर रिश्तों की कीमत महंगी चीजों में खोजते रहे और जिंदगी ने सिखाया कि असली अपनापन किसी महंगी मेज पर नहीं, किसी के साथ बैठकर गपशप करने चाय की ली हुई चुस्की में आता है। तो चाय ले लीजिए, करते हैं गपशप। स्वागत है आप सभी का आज की इस महफिल शाम अंदाजे बयां में। मैं हूं सिर्फ आप ही का आरजे आदित्य धाईगुड़े। बने रहिए एफएम रेनबो की इस महफिल में 107.1 पर, सुनते रहिए।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूँ साक्षी मांडवाल और मेरे साथ इस वक्त यहाँ मौजूद है दोस्तों अभिनव पुंछी, और हम लेकर आ गए हैं आपके लिए इस वक्त यानी शाम के 6:30 बजे द एशियन गेम्स 2026 के लेटेस्ट अपडेट्स। और सबसे बड़ी खबर और सबसे अच्छी खबर जो इस वक्त मैं आपको दे सकती हूँ वो है कबड्डी की दुनिया से, जहाँ हमारी महिलाओं ने आज बांग्लादेश को एक तरफी जीत में शिकस्त दिया है। जी हाँ, द डिफेंडिंग चैंपियंस इंडिया ऑब्वियसली वेंट on to defeat Bangladesh 42-21 before the first half। कह सकते हैं कि first half में भारत के पास जो लीड थी वो थी 21-10 की बांग्लादेश के ऊपर, और फर्स्ट हाफ समाप्त होने के बाद बांग्लादेश बिल्कुल भी वापसी नहीं कर पाया ना कन्विंसिंग या कॉन्फिडेंट मैनर, क्योंकि भारतीय महिलाओं का दबदबा उनके ऊपर बरकरार रहा। फर्स्ट हाफ समाप्त हो जाने के बाद भी सेकेंड हाफ में हमने देखा कि भारत ने उस मुकाबले को भी अपने नाम कर लिया था 21-11 से, और अंत में हम कह सकते हैं जो टोटल पॉइंट्स भारत के पास आए वो थे 42 अंक और दूसरी तरफ बांग्लादेश के पास सिर्फ 21 अंक थे। यानी 42-21 से भारतीय महिलाओं की कबड्डी टीम ने आज बांग्लादेश को दे दी शिकस्त, और डिपेंडिंग चैंपियंस होने का जो सरताज हमारे सर के ऊपर है इस वक्त वो हमने अभी भी बरकरार रखा है। अभिनव
2: जी हाँ, कामयाबी हमें मिली कबड्डी में और कामयाबी भी हमें मिली है टेबल टेनिस के कोर्ट में, क्योंकि इंडिया ने अपने आर्च राइवल्स पाकिस्तान को हराया मेंस एंड विमेंस टेबल टेनिस टीम इवेंट में। और इंडियन मेंस टीम को ये जीत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि याद दिलाए इंडियन मेंस टीम 3-0 हारी थी ईरान से, तो उनको आज जीतना ही था, ये पाकिस्तान को हराना ही था, क्योंकि पाकिस्तान को 3-0 आज हराने के बाद इंडियन मेंस टीम ने प्रवेश करा है प्री क्वार्टर फाइनल्स में। अभी इंडियन मेंस टीम के प्री क्वार्टर फाइनल के ओपोनेंट हम आपको अपडेट में बताएंगे अपने नेक्स्ट अपडेट आकाशवाणी में, मगर इंडियन विमेंस टीम ने भी साक्षी कमाल दिखाया आज।
1: ऑफ कोर्स यस, क्योंकि अगर महिलाओं के टेबल टेनिस के मुकाबले की बात करें तो वहां पर भारतीय महिलाओं ने आज पाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त दी, जिसमें श्रीजा अकुला ने आज फातिमा खान को 11-4 से स्ट्रेट गेम्स में हराकर भारत

0: को ग्रुप एफ के विनर्स के तौर पर आज उनका ये सफर यहाँ पर लाके खड़ा किया और उसके साथ ही साथ भारत को आगे भी प्री क्वार्टर फाइनल्स में एडवांस करा दिया। एक बहुत अहम नाम जिसको लेना हमें नहीं भूलना चाहिए वो है सिंड्रेला दास, जिनका ये एशियन गेम्स का डेब्यू था या कहना चाहिए है इस वर्ष, और उन्होंने कलसुम खान को 11-6, 11-7, 11-5 से हरा कर भारत को एक बहुत ही कॉन्फिडेंट, कमांडिंग और श्योर शॉट पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया था, क्योंकि उन्होंने भारत को 2-0 की बढ़त दिलवा दी थी पाकिस्तान के ऊपर। और इसके बाद सिर्फ श्रीजा कोला को एक नेम से गेम खेलना था, जहां पर उन्होंने फिर से फातिमा खान जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी उनको हराया और 3-0 से भारत ने पाकिस्तान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल्स में अपनी जगह बना ली, जहां उनका अब सामना होगा थाईलैंड से कल। और अपने दोस्तों आपको ये भी बता दें हम कि अगर भारत कल थाईलैंड को हरा देता है तो अभिनव भारत का अगला मुकाबला होगा नॉर्थ कोरिया के साथ, और वो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, ये तो हम सबको पता है।
1: जी हाँ, इट विल बी अ टफ कॉन्टेस्ट, मगर क्वार्टर फाइनल के पहले इंडिया को थाईलैंड को हराना ही पड़ेगा वो प्री क्वार्टर फाइनल मैच में। और हमें पता है दैट ऑल आर लिसनर्स वाज बी थिंकिंग वेयर इज दिस गोल्ड मेडल कमिंग फ्रॉम। अभी तक इंडिया के पास मेडल टैली में इंडिया 12th पोजीशन में, शूटिंग से सिल्वर मेडल आए हैं, ब्रॉन्ज मेडल्स भी आए हैं हमारे पास, मगर गोल्ड कल आ सकता है। जी हाँ, गोल्ड का अकाउंट हमारा खुल सकता है, क्योंकि इंडिया श्रीलंका 10:30 AM क्रिकेट का मैच होने वाला है, और ये रिपीट है एशिया कप फाइनल का, जहां हमें याद है इंडिया ने वो एशिया कप ट्रॉफी जीती थी, श्रीलंका से रिवेंज लिया था। और साक्षी, आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू गोल्ड टुमारो?
0: एनी डे एनी टाइम। गोल्ड की अगर हम बात करते हैं, वो भी हमारे भारतीय खिलाड़ी, चाहे वो हमारे एथलीट्स हो या प्लेयर्स हो, बट इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड, एंड एनी पर्सन हु लव्स क्रिकेट, हु लव्स स्पोर्ट्स इन जनरल, विल ऑलवेज वॉन्ट द बेस्ट फॉर देयर प्लेयर्स हु वर्क डे एंड नाइट सो हार्ड टू गेट आर कंट्री दैट कवेटेड गोल्ड मेडल। और इसके साथ ही दोस्तों, इस वक्त तो फिलहाल अपडेट्स का सिलसिला यहाँ पर आकर समाप्त तो होता है, लेकिन हम आपसे एक बार फिर से शाम को 7:30 बजे जुड़ेंगे, जहाँ पर आज के दिन का आखिरी अपडेट हम आपके लिए लेकर आएंगे और बताएंगे कि कैसा रहा ओवरऑल भारत के लिए आज का दिन एशियन गेम्स में।
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।

0: Bali FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: स्वागत करता हूँ फिर एक बार आज की महफिल में अंदाजे बयां में। मैं हूँ सिर्फ आप ही का आरजे आदित्य धाईगुड़े। दोस्तों, रात की देह पर जब चांद अपनी उजली उंगलियां फेरता है, पारिजात तब चुपचाप खिलता है, मानो अंधेरे की तह में किसी उजास ने जन्म लिया हो। भोर की पहली आहट पर वह डाल से उतर आता है धरती की गोद में, अपनी श्वेत पंखुड़िया जैसे रख देता हो। रात भर महकने के बाद सुबह की ओस से भीगा वह फूलों सा नहीं लगता, मानो रात ने अपना सबसे कोमल रहस्य धरती पर छोड़ दिया हो। कवि का नाम है गीत और पेश करने वाला मैं हूं सिर्फ आप ही का आरजे आदित्य धाईगुड़े। सुनते रहिए FM रेनबो 107.1 म्यूजिकली योर्स।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: स्वागत है फिर एक बार अंदाजे बयां इस कार्यक्रम में। कवि विनय कुमार निशांत कहते हैं, उम्र के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, कुछ लोग, कुछ रिश्ते, कुछ ख्वाब और हम खुद भी। पहले जो चाहिए था उसे पाने की जिद थी, अब जो मिला है उसे कहीं खो ना दे, बस यही डर है। शायद यही जिंदगी है, कुछ पाने की खुशी कम और जो बचा है उसे संभालने की फिक्र ज्यादा। समय हुआ है 6:53 और समय हुआ है महफिल समेटने का भी। कुछ ही देर में पेश होंगे मराठी में समाचार और फिर शुरू करेंगे हम तुम यानी हम और आप मिलके सुनेंगे आपके पसंदीदा गीत हमारे जरिए। भेजिए अपने फेवरेट सॉन्ग्स 8657661071 इस नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए। किसी को डेडिकेट भी करने हैं तो उनके नाम के साथ गीत के बोल और फिल्म के नाम भेज दीजिए, बस हो गया। सुनते रहिए और बने रहिए एफएम रेनबो 107.1 मेरे यानी सिर्फ आप ही के आरजे आदित्य धाई गुड़े के साथ। इस आखिरी गीत के बाद मिलते हैं।

इस नाम के साथ कार्यक्रम का नाम बता देता हूं और मेरा भी। तो कार्यक्रम का नाम है हम तुम, जो कि है आप सभी का और मेरा भी कार्यक्रम। और मैं हूं आपका जरिया जो पहुंचाता है आपके रिक्वेस्ट्स इस दुनिया में। तो मैं हूं आप ही का आरजे आदित्य धाईगुड़े। और शुरुआत हुई है हम तुम कार्यक्रम की आज की। तो पहला जो गीत जो हमने सुना इस प्यार को, मैं बहुत ही खूबसूरत हरकत की तरह ली हुई है सोनू निगम ने इस गीत, सोनू निगम जी ने इस गीत में, मुझे बहुत ही पसंद है, जो कि फरमाइश थी पंकज मोहड़ जी अमरावती से। तो बढ़ते हैं आगे फरमाइशों के सिलसिले में।

0: Swali FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: स्वागत है फिर एक बार आप सभी का हम तुम कार्यक्रम में। तो पिछले जो दो गीत हमने प्ले किए थे, तो पहला जो गीत था वो जूबी डूबी, वो जो गाना था वो चेतन कुमार जी मानपुर बाजार गया बिहार से उन्होंने फरमाइश की थी, और दूसरा जो था वो फिरोज सिगनपुरिया जी उनकी फरमाइश थी। तो आगे जो गाने हैं वो आएंगे विजेंद्र घाटोल जी अकोला से, प्रणव शिंदे जी मुंबई से, तो और आते रहेंगे। और कई ऐसी फरमाइशें हमें प्राप्त हुई है जो कि बेसिकली आज करीना कपूर जी का बर्थडे है, तो मेरी तरफ से करीना कपूर जी को बहुत ही ढेर सारी बधाइयां उनके जन्मदिन पर। साथ ही साथ आपके भी सारे विशेस, आपके जो बेस्ट विशेस आपने इस व्हाट्सएप के जरिए हमें भेजे हैं वो भी करीना कपूर जी पढ़ेंगी या सुनेंगी, पढ़ेंगी तो नहीं ऑफकोर्स, सुन सकेंगी हमारे स्टेशन के थ्रू। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 107.1, जो कि है म्यूजिकली ओनली योर्स।

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: हेलो एंड वेलकम टू द लेटेस्ट फ्रॉम द एशियन गेम्स 2026 फ्रॉम आईची नगोया। और क्या बेहतरीन दिन था आज भारत के लिए, क्योंकि इंडिया हैज वन 4 मेडल्स टुडे एट द एशियन गेम्स इन आईची नगोया। 3 मेडल्स केम फ्रॉम शूटिंग, और सबसे पहले सिल्वर आया हमारे इंडियन कंटिंजेंट के लिए 10 मैन राइफल मेंस टीम इवेंट में। हिमांशु ढिल्लन, रुद्रांश पाटिल और पार्थ माने की वजह से इंडिया को मिला सिल्वर। और उसके बाद हिमांशु ढिल्लन विद अ सिल्वर एंड पार्थ एंड रुद्रांश पाटिल विद अ ब्रॉन्ज इन द मेंस इंडिविजुअल 10 मीटर एयर राइफल। याद दिलाएं, हिमांशु ढिल्लन का ये डेब्यू एशियन गेम्स है, और क्या धमाकेदार डेब्यू हुआ है हिमांशु ढिल्लन का। डबल पोडियम अभी तक इंडिया का सबसे पहला डबल पोडियम है 2026 एशियन गेम्स का। होपफुली मेनी मोर टू कम। और हमने बोला था 4 मेडल आए हैं, जी हां, क्योंकि एक मेडल भी आया है थैंक्स टू एमएमए फाइटर सुचिका तारियाल। शी फॉट अ हार्ड मैच इन हर बाउट अगेंस्ट हर सिंगापुर ओपोनेंट, और एंड शी वाज वेरी इमोशनल आफ्टर द एंड ऑफ द मैच। मगर उसके बाद उस हार के बाद सुचिका गॉट अ ब्रॉन्ज, और फिर हम अब 12th पोजीशन में है इन द मेडल्स टैली। एंड इंडिया होपफुली, अभी बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्स बाकी हैं, बड़े एथलीट्स बाकी हैं इंडियन कंटिंजेंट के, एंड होपफुली मोर मेडल्स आर अपकमिंग। और आपको बताएं थोड़ा सा प्रीव्यू कि कल क्या होने वाला है एट द एशियन गेम्स। जी हाँ, आई होप यू हैव एन अर्ली स्टार्ट, क्योंकि सुबह 6 बजे बैडमिंटन होगा, इंडिया वर्सेज जापान विमेन्स टीम्स क्वार्टर फाइनल। बहुत क्रुशल मैच है इंडियन टीम के लिए एंड सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए। 6:15 बजे शूटिंग में जो हमारी अभी तक सिल्वर मेडलिस्ट हो चुकी है एलेवेनील वारावेरियन, उनके साथ होंगे पार्थ माने, 10 मीटर्स एयर राइफल मिक्स टीम क्वालिफिकेशन एंड मेडल इवेंट होगा वो 6:15 बजे। 6:30 AM इट्स वुशु टाइम, एंड वुशु में लैंगलन टॉमी देवी हमारे विमेन्स नानक्वान फाइनल में है। याद दिलाएं आपको, नानक्वान फाइनल में 10 कंपेटिटर्स होते हैं, सो होपफुली इंडिया कम्स अवे विद अ मेडल इन दैट इवेंट। 6:30 बजे हमारी शूटिंग के स्कीट के कंपटीशन में मेंस एंड विमेंस टीम इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन एंड टीम इवेंट के डे टू में। याद दिलाएं 3 डेज होते हैं स्कीट कंपटीशन में। विमेंस टीम राइट नाउ आर प्लेस 3rd एंड मेंस टीम आर राइट नाउ प्लेस 6th। 7:15 बजे इट्स कबड्डी टाइम, जी हाँ, इंडिया वर्सेस साउथ कोरिया। आज तो इंडियन मैन ने होस्ट जापान को हराया, क्या साउथ कोरिया को भी हरा पाएंगे। 7:35 चेतन भट्ट हमारे मेंस क्यूमाइट कराटे के मैच में दिखेंगे, 84 kg सेमीफाइनल। क्या चेतन फाइनल तक प्रवेश कर पाएंगे। उसके बाद एक ब्लॉकबस्टर प्री क्वार्टर फाइनल टेबल टेनिस मुकाबला है इंडियन मेंस टीम, इंडिया वर्सेस साउथ कोरिया। क्या इंडिया साउथ कोरिया को अपसेट कर सकता है और जीत सकता है वो क्रूशियल टेबल टेनिस का ये प्री क्वार्टर फाइनल मैच। बॉक्सिंग में भी हमारे 2 बॉक्सर्स कल दिखेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट साक्षी चौधरी अपने 51 kg राउंड 32 मैच में सुबह 9 बजे और सुबह 10:30 बजे। जादूमणि सिंह, यस द आर्मी मैन जादूमणि

0: सिंह, जिनको सिल्वर मिला था कॉमनवेल्थ गेम्स में, वो चाहेंगे उस सिल्वर का कलर बदलकर, रंग बदलकर गोल्ड में कन्वर्ट करें 55 kg राउंड ऑफ 32 मैच। और बहुत एक्सपेक्टेशन है कि कल इंडिया का गोल्ड का खाता खुलेगा, क्योंकि 10:30 AM इट्स इंडिया वर्सेस श्रीलंका, अ रिपीट ऑफ द एशिया कप फाइनल। जी हाँ, एशिया कप में तो इंडिया ने अपना रिवेंज ले लिया श्रीलंका से, कल क्या इंडियन विमेंस टीम अपना गोल्ड मेडल डिफेंड कर पाएंगे। उसके बाद 11:30 बजे इट्स एक्शन कीप्स ऑन कमिंग एट द एशियन गेम्स, क्योंकि इंडिया और जापान का मेंस टीम क्वार्टर फाइनल मैच है बैडमिंटन में। और 3:15 बजे एक और मेडल गारंटी हो सकता है, जी हाँ, वुशू से, क्योंकि रोशिबिना देवी अपने विमेन 60 kg क्वार्टर फाइनल मैच में लड़ेंगी। याद दिलाएं आपको, रोशिबिना देवी ने 2022 में सिल्वर जीता था, 2018 जकार्ता में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल पाया था, तो क्या इस बार रोशिबिना देवी विल गो ऑल द वे एंड गेट गोल्ड फॉर इंडिया। And then a big match to end the day. It's the 3:10. It's India versus Sri Lanka in a hockey match. India men's or women's दोनों ने धमाकेदार शुरुआत करी है. Goals are just pouring in. So hopefully we see more goals and more action. And आप आकाशवाणी पे please tune in करिए. हमारे updates सुबह 9:30 बजे से शुरू होंगे और आज 10 बजे हमारा special show भी आप सुनना, because it's been a great day for India and you can recap all that happened in a little while from now. And कल सुबह हम वापसी करेंगे 9:30 बजे with updates every hour. Thank you so much for joining us today on the updates at Akashwani.
1: Asian Games 2026, Aichi Nagoya.

0: Swali FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: वेलकम बैक दोस्तों, आपके कार्यक्रम में हम तुम। तो आगे की जो फरमाइशें हैं वो होंगी, पेश करेंगे हम दीपा पालकर जी और दत्ता केदार पंढरपुर से। दीपा पालकर जी मुंबई से। तो इन दोनों की जो फरमाइश है वो एक ही गीत की है, बहुत ही खूबसूरत सा गीत। और हर्षदा जी म्यूनिक जर्मनी से हैं, उनके गाने की फरमाइश सात समुंदर पार से आई हुई ये जो फरमाइश है वो भी हम आज पूरी करेंगे। सुनते रहिए एफएम रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: वेलकम बैक दोस्तों, हम तुम कार्यक्रम में बहुत ही खूबसूरत गीत चल रहे हैं, तो इसके बाद जो गीत प्ले होंगे वो फरमाइश किए हैं गोपी शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप जी, संगीता गोप जी, लिपि गोप जी, दीपाली गोप जी, जिला पश्चिमी सिंहभूम चाही बिसा से। और उसके बाद जो गाने प्ले होंगे वो है राकेश माथुर जी पुणे से और अजय साखरे जी इंदौर से, इन सभी के गाने। और साथ साथ अगर मैं कोशिश करूं भी कोई गाने और ज़्यादा प्ले करने की तो ज़रूर करूंगा, लेकिन उसके बाद 8 बजे जो है इंग्लिश गीतों का, अंग्रेज़ी गीतों का सिलसिला शुरू होगा। तब तक के लिए मैं अभी आपसे इजाज़त लूँगा, सुनते रहिए FM।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर को लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, समझौते से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, किसानों को लाभ मिलेगा। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति जताई। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए पुणे की एक निजी कंपनी के साथ 586 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए नए दिशा निर्देश जारी। व्लादिमीर पुतिन की सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी का संसद में बहुमत बरकरार। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष टीम ने बांग्लादेश को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त रहेगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा दर्शाती है।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर छात्र और युवा आवागमन के लिए क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
1: It is an important moment for our businesses.
2: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 191,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: Meet India's scale and growing demand.
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि चौथे दौर की बातचीत पिछले सप्ताह मुंबई में हुई थी। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। भारत का सेमीकंडक्टर बाजार वर्ष 2026 में करीब 64 अरब डॉलर से बढ़कर 2035 तक 200 अरब डॉलर का होने का अनुमान है। अर्नेस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड और इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन की सेमीकॉन इंडिया 2.0 शीर्षक वाली रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। ये रिपोर्ट सेमीकॉन इंडिया 2026 के दौरान जारी की गई। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।

0: हमारे संवाददाता ने बताया कि यह अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया।
1: सहायक विद्युत इकाइयां APU, टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबिलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। स्वदेशी रूप से विकसित APU को शामिल करने से भारतीय सेना की मशीनीकृत इकाइयों की संचालन तत्परता, विश्वसनीयता, स्थायित्व और अधिक मजबूत होगी। यह खरीद बख्तरबंद प्लेटफॉर्मों के महत्वपूर्ण उपप्रणाली के स्वदेशीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और उद्योग के नेतृत्व में किए गए अनुसंधान और विकास को दर्शाती है। यह अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने तीव्र गति और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड तथा ब्राउन फील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एक रूपता लाना है। इससे तकनीकी मानकों में समानता, सड़क सुरक्षा और परिचालन दक्षता मजबूत करने में सहायता मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मेरठ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आए श्री नवीन ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भी किया। समीक्षा बैठक में संगठन की स्थिति, आगामी चुनाव की तैयारियों और जमीनी स्तर से मिलने वाली प्रतिक्रियाओं पर चर्चा की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज विज्ञान मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय, शहर आधारित वैज्ञानिक समूह विकसित करने और देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों को व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने पर बल दिया। डॉक्टर सिंह ने नई और प्रभावशाली वैज्ञानिक उपलब्धियों की लगातार पहचान करने और उन्हें सामने लाने पर भी बल दिया, ताकि प्रयोगशालाओं और संस्थाओं में हो रहे महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति कल शाम एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी।
3: लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के विश्व के सबसे बड़े स्टैचू के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। कल मंगलवार को राष्ट्रपति एकता नगर में आयोजित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बनने के लिए एकता नगर पहुंच चुके हैं। एकता नगर में पुरस्कार समारोह के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 सितंबर को अपने दौरे के अंतिम चरण में वडोदरा के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में एक मार्केटिंग अधिकारी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। गोदामों से जुड़ी रिश्वत की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। इससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के माध्यम से इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा गया है।
4: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना कई देशों में सेवाओं को नियंत्रित करने, लेन देन करने और वितरित करने के तरीकों को नया रूप दे रही है। इस परिवर्तन में भारत डिजिटल प्रणालियों के एक बड़े उपयोगकर्ता से एक बड़े पैमाने पर डिजिटल के निर्माता के रूप में आगे बढ़ रहा है। भारत ने साझा डिजिटल बुनियादी ढांचे की 3 परतों का निर्माण किया है। पहला आधार

0: है जो एक सत्यापन योग्य पहचान प्रदान करता है। यूपीआई भुगतान करने वाले व्यक्ति को बिना किसी शुल्क के किसी भी दो बैंक खातों के बीच तुरंत पैसे स्थानांतरित करता है। खाता एग्रीगेटर ढांचा एक नागरिक को सहमति के साथ ऋणदाता या बीमाकर्ता के साथ अपना वित्तीय रिकॉर्ड साझा करने देता है। इस महीने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की उल्लेखनीय 10 साल की यात्रा और इसकी बढ़ती वैश्विक पहुँच को रेखांकित किया।
1: 10 वर्ष पहले जब मैं कहता था कि आपका बैंक आपकी फिंगर टिप्स पर होगा तो कुछ लोगों को ये असंभव लगता था, लेकिन आज वही करोड़ों लोग जो पीढ़ियों से बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे, वे भारत में फिनटेक ग्रोथ के बड़े ड्राइवर बन गए हैं। अकेले अगस्त महीने में ही यूपीआई से 2400 करोड़ से ज्यादा ट्रांजेक्शन हुए हैं। और साथियों, यूपीआई अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, भारत का यूपीआई अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।
0: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर निवासी दिव्य प्रताप सिंह ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि पहले लेन देन करने के लिए कई किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी, लेकिन अब पैसा बड़े पैमाने पर यूपीआई के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है।
2: इसने हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पे एक मूल चूल परिवर्तन लाया है और आपसी लेन देन को बहुत ही सुलभ कर दिया है। जो गरीब व्यक्ति था वो आज बैंक से जुड़ गया है यूपीआई के जरिए, तो एक तरीके का आर्थिक हमें जुड़ाव भी देखने को मिला है पूरे देश भर पे। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो यूपीआई ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस देश को परिवर्तन करने के लिए।
0: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के साथ भारत की यात्रा डिजिटल युग में विकास और शासन की कल्पना करने के तरीके में एक व्यापक बदलाव को दर्शाती है। वित्तीय समावेशन और पहचान की पहुंच का विस्तार करने के प्रयास के रूप में जो शुरू हुआ वो एक व्यापक अंतर संचालित संरचना में परिपक्व हो गया है, जो आर्थिक गतिविधि, सार्वजनिक सेवा वितरण और संस्थागत क्षमता को रेखांकित करता है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आज आकाशवाणी लेह में केंद्र के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने कार्यक्रम निर्माण, समाचार संकलन और समाचार निर्माण, श्रोता संपर्क, विषय वस्तु की गुणवत्ता और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में सार्वजनिक सेवा प्रसारण की भूमिका पर चर्चा की। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्हों की ई नीलामी का 8वां संस्करण जारी है। इसमें गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत से जुड़े कई स्मृति चिन्ह शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
3: ये आकाशवाणी है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने कहा है कि सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसद के निचले सदन ड्यूमा के चुनाव में 57.83% वोट हासिल कर बहुमत फिर प्राप्त कर लिया है। ये परिणाम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाए रखने में सहायता करेंगे। निर्वाचन आयोग की अध्यक्ष एला पाम फिलोवा ने कहा कि 95.18% मतों की गिनती के बाद यूनाइटेड रशिया पार्टी 57.83% वोटों के साथ सबसे आगे है। दुबई के शासक और संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के भाई शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम का आज निधन हो गया। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने सोशल मीडिया पर एक संदेश साझा करते हुए अपने भाई के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम के निधन पर दुख व्यक्त किया है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में आज 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। वहीं इसी प्रतियोगिता की पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ने आज बांग्लादेश को 3 मैचों में हरा दिया। क्वार्टर फाइनल में कल भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। उधर सुचिका तारियाल मिक्स मार्शल आर्ट्स में देश के लिए पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। पदक तालिका में भारत 4 रजत, 2 कांस्य सहित कुल 6 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: नमस्कार, आईची नागोया से खेलों की दुनिया की बड़ी हलचल के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। जापान की धरती पर सजे एशियन गेम्स के मैदानों में आज मुकाबले और भी दिलचस्प रहे। शुरुआती मुकाबलों से मिले रोमांच के बाद अब पदकों की असली रेस रफ्तार पकड़ चुकी है। हर मैदान पर चुनौती बड़ी है, हर मुकाबला अहम है और हर खिलाड़ी की नज़र अपने लक्ष्य पर है। एशिया के 45 देशों से पहुंचे दिग्गज खिलाड़ियों के बीच भारत के खिलाड़ी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं। खेलों का ये महासंग्राम आगे बढ़ रहा है और इसके साथ बढ़ रही है देशवासियों की धड़कन। तो आइए जानते हैं आईची नागोया से आज भारत के खेल अभियान का पूरा हाल। सबसे पहले नज़र डालते हैं दिन की बड़ी सुर्खियों पर। एमएमए में भारत का ऐतिहासिक पहला पदक, सुचिका तारियाल ने जीता कांस्य। शूटिंग में भारत का शानदार निशाना, 10 मीटर एयर राइफल में 3 पदक, एशियन गेम्स में कुल 5 शूटिंग मेडल। महिला हॉकी में गोलों की बरसात, भारत ने इंडोनेशिया को 17-1 से हराया, 3 खिलाड़ियों ने लगाई हैट्रिक। कबड्डी में चैंपियन वाली शुरुआत, महिला और पुरुष टीमों ने जीते अपने अपने मुकाबले। वुशु में भारतीय खिलाड़ियों की चुनौती अभी जारी है। टेबल टेनिस मुकाबलों में पुरुष और महिला टीमों ने पाकिस्तान पर पाई आसान जीत। सेपेक टेक्रो में रोमांचक मुकाबले, टीम रेगू के ग्रुप मुकाबले में जापान ने भारत को 2-1 से हराया, अब मलेशिया से होगी अगली भिड़ंत। आईची नागोया में भारत का खेल अभियान जारी है, कहीं पदकों की चमक, कहीं बड़ी जीत और कहीं अगली चुनौती का इंतजार। सबसे पहले बात उस पदक की जिसने एशियन गेम्स में भारतीय एमएमए इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया। एशियन गेम्स 2026 में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स यानी एमएमए में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया। भारत की सुचिका तारियाल ने महिलाओं की ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम कैटेगरी में कांस्य पदक हासिल किया। सुचिका का सेमीफाइनल मुकाबला तेओ हुई हुन के खिलाफ हुआ। मुकाबला बेहद कड़ा रहा। मैच के बाद रिव्यू में मुकाबला ड्रॉ घोषित किया गया। इसके बाद सुबह के वेइन नियम के आधार पर विजेता का फैसला हुआ। सिंगापुर की खिलाड़ी का वजन सुचिका से 700 ग्राम कम था, इसलिए उन्हें विजेता घोषित किया गया और सुचिका को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। लेकिन यहां तक पहुंचना भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले सुचिका ने मंगोलिया की खिलाड़ी को 2-0 से हराकर पदक पक्का किया था। इससे पहले पुरुषों के ट्रेडिशनल 77 किलोग्राम वर्ग में भारत के वरुण सान्याल को अनफिट घोषित कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाए। एमएमए के बाद अब रुक करते हैं शूटिंग रेंज की, जहां भारत के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में भारत ने टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता, जबकि व्यक्तिगत मुकाबले में हिमांशु ढिल्लन ने सिल्वर और रुद्राक्ष पाटिल ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। पूरी रिपोर्ट के लिए चलते हैं अभिनव पुंशी के पास।
2: फैंटास्टिक डे फॉर इंडिया एज फार एज शूटिंग इज कंसर्न्ड। आईची नगोया में एशियन गेम्स 2026 में इंडिया वन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में इंडिया को मिला सिल्वर मेडल। द टीम कंप्राइज ऑफ रुद्रांश पाटिल, हिमांशु ढिल्लन एंड पार्थ मानेन। इसी कंपटीशन में चाइना ने गोल्ड मेडल लिया और एक रिकॉर्ड हॉल के साथ और साउथ कोरिया को मिला ब्रॉन्ज मेडल। मगर बस इसी कंपटीशन में नहीं, हमारे इंडियन शूटर्स मेड अस प्राउड इन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल इंडिविजुअल फाइनल एज वेल। रुद्राक्ष पाटिल एंड हिमांशु ढिल्लन वाज इन द फाइनल टिल द लास्ट मिनट एंड गेव सम ग्रेट कंपटीशन टू चाइनाज जैंग जियाओ। मगर रुद्रांश पाटिल हैड टू बी सैटिस्फाइड विद द ब्रॉन्ज, वाइल हिमांशु ढिल्लन जो अपना एशियन गेम्स का डेब्यू कर रहे थे, उनका स्कोर 252.4 से उनको मिला एक सिल्वर मेडल। सो अ फैंटास्टिक स्टार्ट फॉर द इंडियन शूटर सो फार। दे हैव बीन सेटिंग आईची नगोया ऑन फायर और इंडियन शूटिंग कंटिजेंट से अभी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बाकी हैं। याद दिलाएं, हमारी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मनु भाकर इज आल्सो गोइंग टू बी इन एक्शन प्रीटी सून। वी आर होपिंग फॉर ग्रेट थिंग्स फ्रॉम हर एज वेल। सो ग्रेट डे फॉर इंडिया इन शूटिंग एट आईची नगोया एशियन गेम्स 2026।
1: शूटिंग के बाद अब बात उस खेल की जिसमें ताकत, रणनीति और सांस रोक देने वाला रोमांच एक साथ देखने को मिलता है। पुरुष कबड्डी में भारत ने जापान को 49-24 से हराकर ग्रुप मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की। वहीं महिला टीम ने भी बांग्लादेश को 42-21 से मात देकर अगले राउंड में जगह बना ली। पूरी जानकारी दे रहे हैं अभिनव झा।
3: भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए ग्रुप ए के मुकाबले में मेजबान जापान को 49-24 से हराया। आईची नगोया में खेले गए इस मुकाबले में कप्तान सुनील कुमार की अगुवाई में भारत ने शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा।

0: मलिक की तीन अंकों वाली सुपर रेड ने भारत को शुरुआती बढ़त दिलाई, जबकि अर्जुन देशवाल, देवांग दलाल और अयान लोहचब ने भी रेडिंग में प्रभावशाली प्रदर्शन किया। भारतीय टीम ने पहले हाफ में जापान पर लगातार दबाव बनाते हुए तीन ऑल आउट किए और मध्यांतर तक 31-9 की बड़ी बढ़त हासिल कर ली। दूसरे हाफ में जापान ने बेहतर रणनीति के साथ वापसी करने की कोशिश की और इस हाफ में भारत के 18 अंक के मुकाबले 15 अंक अर्जित किए, लेकिन भारतीय डिफेंस ने नियंत्रण नहीं खोया और एक और ऑल आउट के साथ जीत सुनिश्चित कर दी। भारत ने अंततः 25 अंकों के अंतर से मुकाबला अपने नाम किया और अपने एशियन गेम्स खिताब की रक्षा की शुरुआत जीत के साथ की। एशियन गेम्स में कबड्डी के इतिहास की बात करें तो भारत का इस खेल में लंबे समय से दबदबा रहा है। कबड्डी 1990 बीजिंग एशियन गेम्स में पुरुषों के पदक खेल के रूप में शामिल हुई और भारत ने उसी संस्करण में स्वर्ण पदक जीतकर अपने अभियान की शुरुआत की थी। इसके बाद भारत ने पुरुष कबड्डी में लगातार 2014 के संस्करण तक स्वर्ण पदक हासिल किए। मात्र 2018 के जकार्ता एशियन गेम्स में उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा, लेकिन एक बार फिर 2022 हांगझाउ एशियन गेम्स में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बीच 2026 में जापान के खिलाफ मिली जीत भारतीय टीम के खिताबी अभियान के लिए महत्वपूर्ण शुरुआत रही। वहीं अब बात करते हैं भारतीय महिला कबड्डी टीम की, जिसने 21 सितंबर को एशियन गेम्स में अपने अभियान की शुरुआत बांग्लादेश के खिलाफ ग्रुप ए मुकाबले से की, जहां भारतीय महिला टीम ने अपना दबदबा दिखाते हुए 42-21 से मैच अपने नाम किया। भारत ने मैच की शुरुआत से ही अटैकिंग अप्रोच रखी, जिसका फायदा भारत को फर्स्ट हाफ में ही 21-10 की बढ़त से मिला। वहीं दूसरे हाफ में भी भारतीय खिलाड़ियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी और 21-11 की बढ़त के साथ दूसरा हाफ खत्म किया, जिसके फलस्वरूप भारतीय महिला टीम ने 42-21 से एक आसान जीत अपने नाम की। भारत इस प्रतियोगिता में गत चैंपियन के रूप में उतरा है और 2022 हांगझाउ एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का लक्ष्य इस बार भी खिताब बरकरार रखना है। भारतीय टीम की कप्तानी पुष्पा राणा कर रही हैं, जबकि सोनाली शिंगाटे उपकप्तान हैं। भारत ने अब तक एशियन गेम्स की महिला कबड्डी में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं और 2018 में रजत पदक हासिल किया था। इस अभियान में अगली बड़ी चुनौती 23 सितंबर को ईरान के खिलाफ होगी, जबकि 24 सितंबर को भारतीय महिला टीम का सामना जापान से होना है।
1: कबड्डी में भारतीय खिलाड़ियों ने दम दिखाया तो बैडमिंटन कोर्ट पर भी जीत का सिलसिला जारी रहा। पुरुष टीम ने बांग्लादेश को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आइए सुनते हैं साक्षी की रिपोर्ट।
2: The Indian shuttlers gave a brilliant start to India in the world of badminton in the ongoing Asian Games 2026 to help India advance to the quarterfinals. Lakshya Sen gave India the perfect start against Bangladesh in the men's team first round tie, defeating Eman Jaman in straight games 21-4, 21-12 and thereby putting India ahead in the tie. Then came Ayush Shetty, who secured another point for India in the men's team first round badminton tie against Bangladesh, defeating Gaurav Singha in straight games 21-4, 21-13, thereby taking the margin of victory overall team tie. And finally, Kidambi Srikanth gave India another strong start in the third match of the men's team badminton tie against Bangladesh, defeating Al-Amin Jumar in the opening game 21-15 and later 21-9, thereby helping India secure a commanding position, defeating Bangladesh 3-0 and setting themselves up for the quarterfinals to be played against Japan.
1: अब रैकेट की तेजी से निकलते हैं हॉकी के मैदान पर, जहां भारत ने गोलों की बरसात कर दी। महिला हॉकी टीम ने इंडोनेशिया को 17-1 से हराकर पूल बी में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। भारत की ओर से दीपिका नवनीत कौर और ऋतुजा पिसाल ने हैट्रिक दर्ज की। जानकारी दे रहे हैं अभिनव झा।
0: भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपने शानदार अभियान को जारी रखते हुए सोमवार को पूल बी के दूसरे मुकाबले में इंडोनेशिया को 17-1 से करारी शिकस्त दी। इससे पहले भारत ने अपने शुरुआती मैच में उज्बेकिस्तान को 19-0 से हराया था। इस जीत के साथ भारत ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की और 2 मैचों में 36 गोल किए। इंडोनेशिया के खिलाफ भारत की ओर से 7 गोल पेनल्टी कॉर्नर और 10 गोल फील्ड प्ले से आए। दीपिका ने हैट्रिक लगाकर टूर्नामेंट में अपने गोलों की संख्या 2 मैचों में 11 कर ली। नवनीत कौर और ऋतुजा ददासो पिसाल ने भी हैट्रिक पूरी की, जबकि लाल रेम सियामी, सुनेलिता टोपो और साक्षी राणा ने 2-2 गोल किए। कप्तान सलीमा टेटे और इशिका ने 1-1 गोल किया। भारत ने पहले क्वार्टर में दीपिका, सुनेलिता, लाल रेम सियामी और ऋतुजा के गोल से 4-0 की बढ़त बनाई। दूसरे क्वार्टर में लाल रेम सियामी, ऋतुजा, साक्षी, दीपिका और सुनेलिता ने गोल किए, जिससे हाफ टाइम तक भारत 9-0 से आगे था। तीसरे क्वार्टर में इंडोनेशिया की इनेस आदित्य ने 1 गोल किया। लेकिन भारत ने सलीमा, नवनीत, इशिका, ऋतुजा और दीपिका के लगातार 5 गोलों से तीसरे क्वार्टर के अंत तक 14-1 की बढ़त बना ली। अंतिम क्वार्टर में नवनीत ने 56वें और 57

मिनट में दो गोल कर अपनी हैट्रिक पूरी की, जबकि साक्षी ने अपना दूसरा गोल किया और भारत ने 17-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस मुकाबले में अनुभवी भारतीय गोलकीपर सविता ने भी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। 321 सीनियर अंतरराष्ट्रीय मैचों के साथ वह भारत की सबसे अधिक कैप हासिल करने वाली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई और उन्होंने वंदना कटारिया का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया। लगातार दो मैच खेलने के बाद भारत को मंगलवार को आराम मिलेगा और टीम बुधवार को थाईलैंड के खिलाफ

0: finished 10th in the men's 50-meter backstroke final at the Asian Games 2026, clocking 25.52 seconds in the 10-swimmer medal race. China's Jiao Zhu clinched the gold medal with a new Asian Games record of 24.04 seconds, while compatriot Zicheng Wong took silver in the 24.49 seconds. South Korea's Jihan Yoon completed the podium with a bronze, winning time of 24.54 seconds. All the other swimmers, Rishabh Das, Akash Mane, Heer Jitesh Shah and Dhanush Suresh, failed to qualify for the finals of their respective events. Sirf yahi nahi dosto, men's 4 into 200 meter freestyle relay mein bhi Bharatiya swimming team ka jo pura contingent hai, yani Sajan Prakash, Anish Sunil, Kumar Gowda, Vedant Madhavan and Dakshan Shashi Kumar failed to qualify for the finals also. तो अगर देखिए ओवरऑल तो भारतीय स्विमर्स के लिए आज का दिन बहुत ही निराशाजनक साबित हुआ ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 में।
1: अब पानी के खेल से निकलकर चलते हैं एक ऐसे खेल की ओर जिसमें पैर ही बनते हैं सबसे बड़ा हथियार, सेपेक टेकराव। सेपेक टेकराव में पुरुष टीम रेगू में जापान ने भारत को 2-1 से हरा दिया। विस्तृत जानकारी के लिए सुनते हैं अभिनव झा की रिपोर्ट।
2: भारत के पुरुष सेपेक टेकराव रेगू टीम को मेजबान जापान के खिलाफ ग्रुप बी मुकाबले में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। सेपेक टेकराव में खेल का प्रारूप वॉलीबॉल जैसा होता है, लेकिन इसमें खिलाड़ियों को गेंद को हाथों से छूने की अनुमति नहीं होती। खिलाड़ी मुख्य रूप से पैर, घुटने, सिर और शरीर के अन्य हिस्सों का इस्तेमाल करके गेंद को नेट के ऊपर से विपक्षी पाले में भेजते हैं। रेगू प्रारूप में प्रत्येक टीम में 3 खिलाड़ी कोर्ट पर होते हैं और उद्देश्य गेंद को विपक्षी कोर्ट में इस तरह गिराना होता है कि सामने वाली टीम उसे वापस ना कर सके। एक टीम गेंद को अधिकतम 3 बार छूकर उसे नेट के पार भेज सकती है। सर्विस के बाद रैली जारी रहती है और हर रैली पर अंक मिलता है। सेपेक टेकराव में जो टीम 3 में से 2 मैच जीतती है वो मुकाबला जीती है और हर मैच में 15 अंक के गेम खेले जाते हैं। जिसने पहले 2 गेम अपने नाम किया उसने 1 मैच अपने नाम किया। भारत ने शुरुआती रेगू मैच 2-0 से जीता, जिसमें भारतीय टीम ने दोनों गेम 15-13 और 15-9 से अपने नाम किए। दूसरा मैच कांटे की टक्कर का रहा, जिसमें जापान ने वापसी करते हुए पहला गेम 15-12 से अपने नाम किया, वहीं दूसरा गेम भारत ने 17-15 से अपने नाम किया। लेकिन तीसरे गेम में जापान ने बाजी मारी और 15-11 से जीतकर इस गेम के साथ मैच जीता, जिसके बदौलत ये मुकाबला तीसरे और निर्णायक मैच की ओर बढ़ा, जहां जापान ने एक तरफा तरीके से 15-9 और 15-12 से ये मैच जीतकर मुकाबले में बाजी मार ली। सेपेक टेकराव 1990 बीजिंग एशियन गेम्स से ये नियमित स्पर्धा के रूप में शामिल रहा है। भारत ने एशियन गेम्स में इस खेल में अपना पहला पदक 2018 जकार्ता पालेमबांग पुरुष रेगू में कांस्य के रूप में जीता और 2022 हांगझोउ में भी कांस्य पदक हासिल किया। इस प्रकार भारत के नाम एशियन गेम्स सेपेक टेकराव में अब तक 2 कांस्य पदक हैं।
1: अब बात टेबल टेनिस की। भारत की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने पाकिस्तान के खिलाफ 3-0 की जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही भारत ने नॉकआउट चरण की राह भी मजबूत कर ली है। पूरी रिपोर्ट दे रही हैं साक्षी मांडवाल।
0: इन टेबल टेनिस बोथ द वुमेन एंड मेंस मैचेस हैपेंड टुडे। महिलाओं के टेबल टेनिस मुकाबले की अगर बात करें तो इसमें भारत का मुकाबला हुआ पाकिस्तान के साथ, जिसमें महिला टेबल टेनिस टीम ने पाकिस्तान को 3-0 से वुमेन्स टीम टेबल टेनिस टाई अप में हरा दिया। श्री जाकुला सील्ड द विक्ट्री विद अ स्ट्रेट गेम्स विन ओवर फातिमा खान इन अ स्कोर लाइन दैट रेड लाइक 11-4, 11-4, 11-5 एंड देयर बाय इंडिया फिनिश्ड एज ग्रुप एफ विनर्स एंड एडवांस्ड टू द प्री क्वार्टर फाइनल्स। इस पूरे मुकाबले में एक बहुत जरूरी नाम जिसको हम बिल्कुल भी भूल नहीं सकते हैं, वो है सिंड्रेला दास का। सिंड्रेला दास का इस वर्ष एशियन गेम्स में डेब्यू हुआ है और उन्होंने पाकिस्तान की कलसूम खान को 11-6, 11-7, 11-5 से आज शिकस्त दी, जिसकी वजह से भारत को एक बहुत ही कमांडिंग पोजीशन में एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज पाकिस्तान के ऊपर मिल गया 2-0 का। एंड देन केम श्री जाकुला हु वाज एबल टू कन्वर्ट दैट 2-0 कमांडिंग पोजीशन टू अ 3-0 विक्ट्री, थेरबाय सीलिंग इंडियाज विन इन आवर फेवर। इंडिया विल नाउ बी फेसिंग थाईलैंड टुमारो इन द प्री क्वार्टर फाइनल मैच। Now let's talk about the men's table tennis match that happened today, in which India once again came face to face with Pakistan and defeated Pakistan with a scoreline that was exactly the same as the women's. Well, I'm meaning to say that India defeated Pakistan 3-0 in the men's table tennis group match at the Asian Games 2026. In match number 2, Sathyan Gunasekaran defeated Abbas Khan 11-1, 11-8, 11-9, thereby sealing match number 2 also in his name, 3-0. And in match number 3, Pius Jain defeated Mohammad Khan 11-2, 11-5, 11-7, thereby sealing the third match in his

0: name and also leading India to its victory over Pakistan by winning the third match 3-0, and thereby the Indian men's table tennis team also defeated Pakistan 3-0 in a clean sweep victory.
1: अब रुक करते हैं वुशु का, जहां तकनीक, संतुलन और हर मूवमेंट के साथ पदक की उम्मीद जुड़ी है। आज के दिन में महिलाओं के नैनक्वान इवेंट में भारत की लैंगनन टांबी देवी पदक की दौड़ में बनी हुई है और इनका फाइनल मुकाबला कल खेला जाना है। इससे पहले महिलाओं की चांगक्वान फाइनल में भारत की नियमन वांगसू ने हिस्सा लिया। 16 खिलाड़ियों के फाइनल में उन्होंने 9.573 का स्कोर हासिल किया और 15वें स्थान पर रही। इसके बाद वुशु के लिए आगे की चुनौती में महिला 60 किलोग्राम सांडा के राउंड ऑफ 16 में नाउरेम रोशिबिना देवी का मुकाबला बांग्लादेश की मो शिखा खातून से हुआ, जिसे विन बाय पॉइंट डिफरेंस से नाउरेम रोशिबिना देवी ने जीत लिया। वहीं पुरुषों के 56 किलोग्राम में आर्यन का मुकाबला अफगानिस्तान के शहजादा सफी से हुआ, जिसे आर्यन ने भी 2-0 से जीत लिया। वुशु में तो खिलाड़ियों ने अपना दम दिखाया, लेकिन सॉफ्ट टेनिस के मिक्स डबल में आध्या तिवारी और जैमीना ने ग्रुप चरण में 2 मुकाबले जीते। हालांकि दक्षिण कोरिया से हार के बाद राउंड ऑफ 16 में फिलीपींस की जोड़ी से 2-5 की हार के साथ उनका अभियान यहीं समाप्त हो गया। पूरी जानकारी दे रहे हैं अभिनव पुंशी।
2: Let's talk now about soft tennis in Aichi Nagoya at the Asian Games 2026. And Adhya Tiwari and Jay Meena action mein the India ke liye, aur unka group stage matches mein pehle match mein Mongolia ko haraya comfortably. Dusre match mein bhi jeet mili Adhya aur Jay ko, unhone haraya Cambodia ko, magar jo teesra match tha wo kaante ki takkar thi South Korea ke khilaf. Us match mein haar ka samna karna pada hamari Indian team ko, magar हारने के बाद भी साउथ कोरिया के खिलाफ इंडिया फिनिश सेकंड इन द ग्रुप एंड एडवांस करा राउंड ऑफ 16 स्टेज में। एंड राउंड ऑफ 16 स्टेज में जब आद्या और जे अपना 5वां मैच खेल रहे थे दिन का, तो इंडिया और फिलीपींस का फाइनल स्कोर था 2-5, जिससे इंडिया को हार का सामना करना पड़ा और इंडिया एडवांस नहीं कर पाए क्वार्टर फाइनल स्टेज की तरफ। और ऐसा ही था आज इंडिया का प्रदर्शन सॉफ्ट टेनिस में।
3: एशियन गेम्स में आज के मुकाबले खत्म होने के बाद चीन कल की तरह ही मेडल टैली में 23 गोल्ड, 10 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज के साथ टॉप पे बरकरार है। दूसरे पायदान पर मेजबान जापान टोटल 32 मेडल के साथ टिका हुआ है, जिसमें 8 गोल्ड, 12 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज शामिल हैं। वहीं तीसरे पायदान की कमान दक्षिण कोरिया ने 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 15 ब्रॉन्ज के साथ संभाली हुई है। बात करें भारत की, तो भारत 4 रजत और 2 कांस्य की मदद से कुल 6 पदकों के साथ 12वें स्थान पर बना हुआ है।
1: एशियन गेम्स के अगले दिन भारतीय खिलाड़ियों के सामने चुनौतियां भी बड़ी हैं और पदक की उम्मीदें भी। कहीं गोल्ड की जंग होगी, कहीं नॉकआउट मुकाबले और कहीं जीत के साथ अगले दौर का टिकट दांव पर होगा। अब नजरें हैं कल के खेल और भारतीय खिलाड़ियों की अगली रणनीति पर। आप जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ। कल सुबह ठीक 9:30 बजे से आप सुन पाएंगे एशियन गेम्स पर हर घंटे की ताज़ा जानकारी। इसके बाद हम लेकर आएंगे रात को 10 बजे पूरे दिन का लेखा जोखा। अभी के लिए प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, एडिटर वंदना भारद्वाज के साथ मैं कविता शर्मा आपसे लेती हूं अनुमति। नमस्कार।
4: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड

0: मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
1: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
2: It is an important moment for our businesses.
3: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 191,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
2: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
1: भारत और कनाडा के व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि चौथे दौर की बातचीत पिछले सप्ताह मुंबई में हुई। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। ये अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाई स्पीड और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड तथा ब्राउन फील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एकरूपता लाना है। ये दिशा निर्देश विकसित भारत 2047 के अंतर्गत 50,000 किलोमीटर लंबे नियंत्रित प्रवेश वाले हाई स्पीड कॉरिडोर विकसित करने की दीर्घकालिक योजना के अनुरूप हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में मत्स्य क्षेत्र के विकास के लिए 9 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके अलावा सूखा प्रभावित इलाकों में 6 अमृत सरोवर बनाने को भी मंजूरी दी गई है। कोलकाता में आज हुई समीक्षा बैठक के बाद केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ये जानकारी दी। बैठक में सुंदरबन सहित तटीय इलाकों और उत्तर बंगाल के ठंडे पानी में मछली पालन को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में आज 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।
2: मैंने जिस वक्त तुझे पहले पहल देखा था, तू जवानी का कोई ख्वाब नजर आई थी, हुस्न का नगमाए जावेद हुई थी मालूम, इश्क का जज्बाए बेताब नजर आई थी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 दिल से दिल

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

सो खुलूस बातों में सब कर्म ख्यालों में बस जरा वफा कम है तेरे शहर वालों में। पहली बार नजर ने चांद बोलते देखा, हम जवाब क्या देते खो गए सवालों में।

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगे महफिल आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। कहीं मजा ही हम हाजिर हो रहे हैं छोटे से अंतराल के बाद।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 दिल से।

दोस्तों समय हो गया 11:30 ब्रेक के बाद पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, इस्तकबाल, खैर मकदम। आप सुन रहे हैं म्यूजिकल न्यूज आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक। दिल्ली और एनसीआर के अलावा दोस्तों आप अलग अलग जगहों पर मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी पर सुन रहे हैं। आप इस वक्त रंगे महफिल के खूबसूरत महफिल में अपने दोस्त प्रवीण शर्मा के साथ और लुत्फ उठा रहे हैं बेहतरीन सदाबहार गजलों का।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं FM Rainbow 102.6, दिल से

कोई लश्कर है कि बढ़ते हुए गम आते हैं, कोई लश्कर है कि बढ़ते हुए गम आते हैं, शाम के साए बहुत तेज कदम आते हैं, दिल वो दरवेश है जो आंख उठाता ही नहीं, उसके दरवाजे पे सो अहले करम आते हैं।

किसी की नजरें हमसे काफी कुछ कहती हैं दोस्तों। अपने दिल में सिर्फ हम अपनी चाहत की आवाज की कनक को महसूस कर सकते हैं। हमारे प्यार की कशिश में इतनी ताकत होती है कि वो अपनी बात हमारे दिलबर के कानों तक पहुंचा ही देता है।

तुमसे कुव्वत लेकर अब मैं तुमको राह दिखाऊंगा। तुम परचम लहराना साथी, मैं पर्वत पर गाऊंगा। आज से मेरे फन का मकसद जंजीरें पिघलाना है। आज से मैं शबनम के बदले अंगारे बरसाऊंगा।

12 बजे है, आइए अब सुनते हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। वो आज शाम केवड़िया के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता अगले महीने की 20 तारीख को लागू होगा। भारत और कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमत। वार्ता का अगला दौर अगले महीने की 5 तारीख से शुरू होगा। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए पुणे की एक निजी कंपनी के साथ 586 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास के लिए 90 करोड़ रुपए मंजूर किए। पुणे में 3 कंपनियों को कथित तौर पर लाभ पहुंचाने के लिए फर्जी दस्तावेज और लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करने के आरोप में 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट के खिलाफ मामला दर्ज। व्लादिमीर पुतिन की सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी का संसद में बहुमत बरकरार। यूरोपीय संघ के स्थान संबंधी डेटा नियमों के उल्लंघन पर गूगल पर 46 करोड़ 30 लाख अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगा। तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष टीम ने बांग्लादेश को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। ये थे अब तक के

0: आकाशवाणी
1: 12:02 और 30 सेकंड हो गए हैं। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम जीरो आर शो। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। दोस्तों कभी कभी किसी के आने से सिर्फ महफिल नहीं दिल भी मुस्कुरा उठता है। तो चलिए आज की इस सुरीली महफिल में प्यार की कुछ शरारतें और मीठी सी मुस्कानें घोलते हैं। पेश है फिल्म खुदगर्ज का यह खूबसूरत गीत जिसे आवाज़ दी है मोहम्मद अजीज़ और साधना सरगम ने।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: रूठो तो जरा हम तुम्हें मना लेंगे, खामोश रहोगे तो गीत सुना देंगे, बस यूं ही बना रहे प्यार का ये सिलसिला, तुम मुस्कुराओगे तो हम भी।

मुस्कुरा देंगे। कभी रूठना भी प्यार का एक बहाना होता है, क्योंकि जहाँ दिल में अपनापन हो वहाँ मनाने वाला भी कोई अपना ही होता है। तो चलिए इसी नटखट और रूठने मनाने के रंग में सुनते हैं फिल्म जवानी का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है आशा भोसले और अमित कुमार ने।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: दोस्तों, जिंदगी के सफर में कुछ मुलाकातें महज इत्तेफाक नहीं होती, वो हमारे सफर को एक नई दिशा, एक नई खुशी और एक नई उम्मीद दे जाती है। इसलिए रिश्तों को उनकी अवधि से नहीं, उनके दिए हुए खूबसूरत पलों से याद कीजिए। जो मिला उसे मुस्कुरा कर अपनाइए और जो दूर हो गया उसे अच्छी याद बनाकर आगे बढ़ जाइए। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं रॉकी फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत, आवाज किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

12:31 और 8 सेकंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं जीरो आर शो मेरे यानी अर्चना बिसारिया के साथ।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दोस्तों, अब जो गीत आप सुनेंगे उसे हमने लिया है फिल्म दरिया दिल से, और इस गीत को आवाज दी है नितिन मुकेश ने।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: दोस्तों, मौसम बदलते हैं तो जिंदगी के रंग भी कुछ अलग से नजर आने लगते हैं। कभी पतझड़ की खामोशी, कभी सावन की फुहार और कभी बसंत की रंगीन बहार। फिल्म सिंदूर का ये गीत भी कुछ ऐसे ही बदलते मौसमों और खूबसूरत एहसासों को अपने सुरों में समेटे हुए है। तो चलिए, मौसम की इस सुरीली यात्रा में थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी मस्ती और ढेर सारी यादें शामिल करते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज ने।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों

0: भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माय गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दोस्तों, कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें जल्दी खत्म करने का मन नहीं करता, बस संगीत चलता रहे और ये सफर यूं ही चलता रहे। लेकिन हम भी क्या करें, हमारी जो घड़ी की सुइयां हैं वो टिक टिक टिक टिक करके हमें देख रही हैं और कह रही हैं कि आप भाई, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि घड़ी की तरफ क्यों देखें जब रात बाकी है और बात भी बाकी है। तो चलिए इस खुशनुमा माहौल को और खुशनुमा बनाते हैं और सुनवाते हैं आपको नमक हलाल फिल्म का गीत आशा भोसले और पप्पी लहरी की आवाज़ में।

और दोस्तों इसी गीत के साथ मुझे यानी अर्चना बिसारिया को अब अनुमति दीजिए इस प्रोग्राम को समाप्त करने की। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्ते। सोचो।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें? हाँ? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

एक बजे हैं, आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। वो आज शाम केवड़िया के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता अगले महीने की 20 तारीख को लागू होगा। भारत और कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमत। वार्ता का अगला दौर अगले महीने की 5 तारीख से शुरू होगा। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायता के विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए पुणे की एक निजी कंपनी के साथ 586 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास के लिए 90 करोड़ रुपए मंजूर किए। पुणे में 3 कंपनियों को कथित तौर पर लाभ पहुंचाने के लिए फर्जी दस्तावेजों और लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करने के आरोप में 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के खिलाफ मामला दर्ज। व्लादिमीर पुतिन की सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी का संसद में बहुमत बरकरार। यूरोपीय संघ के स्थान संबंधी डेटा नियमों के उल्लंघन पर गूगल पर 46 करोड़ 30 लाख अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगा। तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष टीम ने बांग्लादेश को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।

0: आकाशवाणी
1: 1:02 और 40 सेकंड हुए हैं। दोस्तों अब आप सुनेंगे नॉन स्टॉप म्यूजिक। प्रोग्राम का नाम है सुहानी रात और मैं हूं अर्चना बिसारिया।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: है कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

दो बजे हैं आकाशवाणी रेनबो पर, आइए अब सुनते हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। वो आज शाम केवड़िया के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को प्रदान करेंगी। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता अगले महीने की 20 तारीख को लागू होगा। भारत और कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमत। वार्ता का अगला दौर अगले महीने की 5 तारीख से शुरू होगा। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायता विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए पुणे की एक निजी कंपनी के साथ 586 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास के लिए 90 करोड़ रुपए मंजूर किए। पुणे में 3 कंपनियों को कथित तौर पर लाभ पहुंचाने के लिए फर्जी दस्तावेज और लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार कराने के आरोप में 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। व्लादिमीर पुतिन के सत्तारूढ़ यूनाइटेड एशिया पार्टी का संसद में बहुमत बरकरार। यूरोपीय संघ के स्थान संबंधी डेटा नियमों के उल्लंघन पर गूगल का 46 करोड़ 30 लाख अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगा। तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष टीम ने बांग्लादेश को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: नॉन स्टॉप म्यूजिक में आइए अब सुनते हैं भुलाए ना बने।

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात

रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

बजे हैं, आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। वो आज शाम केवड़िया के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता अगले महीने की 20 तारीख को लागू होगा। भारत और कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमत। वार्ता का अगला दौर अगले महीने की 5 तारीख से शुरू होगा। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायता विद्युत इकाई की खरीद के लिए पुणे की एक निजी कंपनी के साथ 586 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास के लिए 90 करोड़ रुपए मंजूर किए। पुणे में 3 कंपनियों को कथित तौर पर लाभ पहुंचाने के लिए फर्जी दस्तावेज और लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करने के आरोप में 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को खिलाफ मामला दर्ज किया गया। व्लादिमीर पुतिन की सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी का संसद में बहुमत बरकरार। यूरोपीय संघ के स्थान संबंधी डेटा नियमों के उल्लंघन पर गूगल पर 46 करोड़ 30 लाख अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगा। तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष टीम ने बांग्लादेश को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

3:02 और 36 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं नॉन स्टॉप म्यूजिक और इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे मिडनाइट मेलोडीज़।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर

0: की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

बजे हैं। प्रस्तुत हैं एफएम रेनबो मुख्य समाचार। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। वे आज शाम केवड़िया के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के 3रे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता अगले महीने की 20 तारीख को लागू होगा। भारत और कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमत। वार्ता का अगला दौर अगले महीने की 5 तारीख से शुरू होगा। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए पुणे की एक निजी कंपनी के साथ 586 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास के लिए 90 करोड़ रुपए मंजूर किए। पुणे में 3 कंपनियों को कथित तौर पर लाभ पहुंचाने के लिए फर्जी दस्तावेज और लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करने के आरोप में 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट के खिलाफ मामला दर्ज। यूरोपीय संघ के स्थान संबंधी डेटा नियमों के उल्लंघन पर गूगल पर 46 करोड़ 30 लाख अमरीकी डॉलर का जुर्माना लगा। तटीय आंध्र प्रदेश झारखंड और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष टीम ने बांग्लादेश को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। ये थे अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

आकाशवाणी प्रातः के 4:02 और 52 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं प्रोग्राम सारे गामा।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो आधार कार्ड है ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: चतुर गोला, ये क्या रहा गोला चतुर, गोला चतुर एक पे रहना, या गोला बोला या चतुर बोला, गा
1: एक चतुर।

मैं हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा जा, जा।

0: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहुं सुदर्शन।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी

0: जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: Meet again. Ajeeb ittefaq. I mean, if I'm not mistaken, ye hamari dusri mulaqat hai. But I haven't seen you around. Anyways, it was nice to meet you.
2: Kaun hai aap?
1: Is kanis ko, mera matlab hai is nachis ko. Raj.

तू अब जाएंगे कितनी दूर, भाई बस्तूर भाई बस्तूर।

0: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

ऊपर वाला मर्द टांगे वाला, मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त ऊपर वाला।